मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: दमक जाता है। फूल, कलियां, पौधे, पत्ते, अंगड़ाई लेते टहनियों से आपस में कुछ यूं खेलते हैं कि सतरंगी आसमान में अपने पंख पसारे, परिंदे भी उड़ान भर लेते हैं। और हवाओं की रफ्तार ये संदेश देती है कि सफर की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बस आगे बढ़ना है। मंजिल की राहों में हर बाधा को बस पार कर जाना है। और आपके इस सफर में आपके हर कदम पर देने आपको शुभकामनाओं का उपहार। नमस्ते लखनऊ की एक और अंक के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया की खबरें, हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार

0: ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 700

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में सबसे पहली मुलाकात किसान भाइयों के साथ। कार्यक्रम है कृषि चर्चा। आज का विषय उन्नत मत्स्य पालन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: शुभ प्रभात। विविधीकृत खेती की बात जब हम करते हैं तो पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ कुक्कुट पालन को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो वर्ष भर हमें आय देता है। मछली पालन करने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि तालाब का निर्माण, वहाँ की मिट्टी की स्थिति और मिट्टी के अनुसार ही उसकी लवणीयता या क्षारीयता की जांच करा करके करना बेहतर होता है, जिससे कि उत्पादन मत्स्य का हमें बेहतर मिल सके। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है, यह हम सभी जानते ही जानते हैं। जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है, एक ऐसी सोच होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक माना गया है। विभिन्न जल स्रोतों में, चाहे तीव्र अथवा मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हो या फिर प्राकृतिक झीलें, तालाब या मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हम जरूर पाएंगे कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता तो है ही है, साथ ही साथ हमारी आय का साधन बेहतर बनाता है यह। मछली एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है। इसके उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग निरंतर प्रयत्नशील भी है। उत्तर प्रदेश के अपने ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार के तालाब, पोखरे और जल प्रणालियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसमें वैज्ञानिक रूप से मत्स्य पालन अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके लोगों को पोषक और संतुलित आहार उपलब्ध तो कराया ही जा सकता है, अतिरिक्त आय भी ली जा सकती है। मत्स्य पालन के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अपना निजी तालाब हो अथवा निजी भूमि या पट्टे का तालाब, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में मत्स्य पालन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हो, वह उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय में संपर्क करें। पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन के लिए पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय संपर्क किया जा सकता है। तालाबों, प्रस्तावित तालाबों की भूमि का मृदा जल के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निःशुल्क किया जाता है, इसलिए जरा सा भी हिचकिचाहट न रखें बल्कि उसकी जांच कराएं और इसके विधिवत जानकारी इच्छुक व्यक्ति को दी भी जाती है, जैसे अन्य तरह की मिट्टी जाँच होती है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा भूमि या तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। मृदा जल के परीक्षणों उपरांत कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार निदान मत्स्य पालन हेतु इच्छुक जो व्यक्ति हैं उनको बताया भी जाता है विभाग द्वारा। यदि भूमि या तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर संस्तुति सहित प्रोजेक्ट बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भी भेजा जाता है, जिससे वित्तीय स्थिति के बारे में ज्यादा सोचना न पड़े। बैंक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है। मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी एवं मत्स्य पालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ब्लॉक या तहसील स्तर पर क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी जो होते हैं उनके या जनपदी के साथ साथ मंडलीय कार्यालय से संपर्क कर भी प्राप्त किया जा सकता है। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग, मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति या जो पालक है मत्स्य पालक, उनके द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर कृषि मेलों, प्रदर्शनियों में विभागीय योजनाओं एवं मत्स्य पालकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है, इसलिए सचेष्ट रहें। कहीं आसपास इस तरह के मेले या प्रदर्शनी लग रहे हैं तो उसमें हिस्सा लें, बेहतर जानकारी भी मिलेगी और जो छूट या फिर अन्य सरकारी सुविधाएं हैं त्वरित रूप से वहां निस्तारित भी की जाती हैं। मत्स्य विपणन के विषय में जानकारी संबंधित जनपदीय कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। उपयुक्त तालाब का चुनाव करना चाहिए। मई जून के महीने में विशेष रूप से यह कार्य संपादित कर लेना चाहिए। नए तालाब के

0: निर्माण के लिए उपयुक्त जल स्थल का चयन करने के पश्चात मिट्टी पानी की जांच भी कराएं। तालाब सुधार निर्माण के लिए भी मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार का निर्माण या फिर कहें कि उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। अवांछनीय जलीय वनस्पतियों की सफाई के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, अगर नहीं है तो भी आप स्वतः इसे करें, बेहतर स्थिति बनती है। 1 मीटर पानी की गहराई वाले 1 हेक्टेयर के तालाब में 25 क्विंटल महुआ की खली के प्रयोग के द्वारा या फिर बार बार जाल चलवाकर अवांछनीय मछलियों की निकासी भी कर लेना चाहिए इसी समय।
1: उन्नत मत्स्य पालन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। आकाशवाणी लखनऊ से यह है नमस्ते लखनऊ का सफर। अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के विचार।
2: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
3: महात्मा गांधी ने मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा पूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खाना खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती, नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में ही डालने की बात कही तो वे बोले कि यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहाँ तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, लेकिन केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, लेकिन स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जेल से छूटने के बाद मैंने ये परिवर्तन भोजन में तुरंत किया, भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। ये तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खाने से ब्रह्मचारी को लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं उन्हें तुरंत छोड़ ना सका था, दोनों चीजें मुझे प्रिय थी। यद्यपि शस्त्र क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्त स्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था, दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो नहीं मानी। आखिर उसने कहा कि दाल और नमक छोड़ने का तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी, मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा ये ख्याल गलत है, मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े, तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ, वो कह उठी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई, अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा, मुझे तो इससे लाभ ही है। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है, इसलिए तुम मुझसे आग्रह न करो, फिर मेरे लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी और इन 2 पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो नहीं ही रही, आप बहुत हठीले हैं, किसी की बात मानते ही नहीं। ये कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली, क्षीण शरीर फिर पनपने लगा। स्वयं उस पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक नहीं रही। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए और दक्षिण अफ्रीका में तो उनके परिणाम अच्छे ही आए। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग

0: लाभी है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

बापू के विचार। अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब समय है ईश्वर के सिमरन का। कार्यक्रम है आराधना।

राहु केतु की ना ही गम्य, तुला शनिश्चर होए है जेरो, जान की नात सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिस मनुष्य के जीवन में भगवान श्री राम का आश्रय होता है उसे राहु केतु जैसे ग्रह बाधित नहीं कर सकते और शनि जैसा कठोर ग्रह भी उसका सेवक बन जाता है। जब स्वयं जानकीनाथ श्री राम किसी के सहायक हो जाते हैं।

भगवान श्री राम के आशीर्वाद में जब कोई भक्त उनकी शरण में आता है तो उसके भाग्य को बिगाड़ने की शक्ति ना किसी ग्रह में रहती है, ना किसी मनुष्य में और ना ही किसी विपत्ति में। प्रभु की कृपा से उसका जीवन स्वतः ही मंगलमय हो जाता है।

नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत धाता, हित पर लोक लोक पितुमाता।

कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलियुग में भगवान का नाम ही आधार है, केवल नाम सुनने से जपने से ही मानव भव सागर से उतर जाता है।

प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए बस ईश्वर है वहीं।

माता रानी की भक्ति में इस गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों को सुना वो है पंडित डीवी पलुस्कर, लता मंगेशकर, हरिओम शरण, सादत हुसैन खान और तृप्ति शाक्या।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ में अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशक सतीश भाटिया, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 6:55 हुए हैं। समय है संस्कृत में समाचारों का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में अब बातें सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय खरबूजे के गुण। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाले फलों की जरूरत बढ़ जाती है और जब बात होती है गर्मियों के सबसे खास फलों की तो खरबूजे का नाम जरूर आता है। खरबूजा सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत से भरपूर भी होता है। ये फल न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि शरीर को अंदर से हाइड्रेट करके ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज हम बात करेंगे कि खरबूजा हमारी सेहत के लिए क्यों है खास और इसे अपने आहार में शामिल करके हम किन किन फायदों का आनंद उठा सकते हैं। खरबूजा देखने में जितना आकर्षक होता है इसके अंदर मौजूद रस और मिठास उतनी ही खास होती है। ये फल मुख्य रूप से पानी और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। गर्मी के दिनों में जब शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है तो पानी की कमी हो जाती है जिससे थकान, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में खरबूजा एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है क्योंकि इसमें लगभग 90% पानी होता है जो शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को तरोताजा बनाए रखते हैं और थकान को दूर करने में सहायक होते हैं। खरबूजा सिर्फ पानी ही नहीं देता बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो इसे सेहतमंद फलों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते भी हैं। खास तौर पर विटामिन सी जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर दिल की सेहत की बात करें तो खरबूजा हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनके लिए खरबूजे का सेवन एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय हो सकता है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों से बचाने में मदद भी करता है। खरबूजा त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन त्वचा को निखारने और धूप से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं। गर्मियों में जब तेज धूप से त्वचा झुलसने लगती है तब खरबूजा एक प्राकृतिक उपाय के रूप में काम करता है। ये त्वचा को भीतर से हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को कम करता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में सहायक होता है। पाचन तंत्र के लिए भी खरबूजा बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार अपच की शिकायत होती है वे अपने आहार में खरबूजे को जरूर शामिल करें क्योंकि ये आंतों की सफाई करने और पाचन प्रक्रिया को सुधारने का भी काम करता है। जो लोग वजन घटाने की सोच रहे हैं उनके लिए खरबूजा एक आदर्श फल है। ये कम कैलोरी वाला और पूरी तरह से वसा मुक्त फल होता है जिसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अतिरिक्त भूख नहीं लगती है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये मीठा होने के बावजूद शरीर में फैट नहीं बढ़ाता बल्कि उल्टा मेटाबॉलिज्म को तेज करके कैलोरी बर्न करने में सहायक बनता है। गर्मियों में अक्सर शरीर में पानी और खनिज तत्वों की कमी के कारण गर्मी लगना, हीट स्ट्रोक और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में खरबूजा एक नेचुरल कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं और हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद भी करते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में चक्कर या थकान महसूस होती है वे रोजाना एक कटोरी खरबूजा खाकर राहत महसूस कर सकते हैं। खरबूजे को खाने के कई तरीके होते हैं। इसे ऐसे ही काटकर खाया जा सकता है, जूस बनाकर पिया जा सकता है या फिर इसे फलों के सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। इसमें नींबू और काला नमक डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि श्रोताओं एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि खरबूजे को खाने

के तुरंत बाद पानी न पिएं, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है और अपच या गैस की समस्या हो सकती है। इसे हमेशा खाली पेट या भोजन के कुछ देर बाद खाना सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, खरबूजा सिर्फ एक मीठा फल नहीं है, बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और पोषण प्रदान करने वाला एक बेहतरीन आहार है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नीना।

0: विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: खरबूजे के गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेंगे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे नात और कव्वाली रात्रि 8:10 पर। आज के कलाकार होंगे उस्ताद सआदत हुसैन खान। इसके साथ ही लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी विंध्यवासिनी त्रिपाठी। इनके स्वर में अवधि लोक गीत सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोक रंग में और दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे प्रवीण कुमार शुक्ला का काव्य पाठ, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। आज शाम 7:31 पर लेकर आएंगे अंग्रेजी कार्यक्रम। इंग्लिश प्रोग्राम के अंतर्गत सुनेंगे डॉक्टर शिवा राकेश की टॉक मिस्टिक वुमेन इन इंडिया अक्का महादेवी। हमारी शाम की सभा के आरंभ में 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें आज की बात का विषय होगा एवरेस्ट से आगे युवाओं के सपनों की ऊंचाइयां और चुनौतियां। साथ ही जीके और करियर विषय पर सुनेंगे क्विज शो नई उड़ान। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें विभिन्न विषयों पर सामयिक चर्चा के साथ हमारी सेहत के अंतर्गत जानेंगे जल प्रदूषण, स्वास्थ्य और जन जागरूकता के बारे में। शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम लोकायतन, जिसमें आज सुनेंगे डॉक्टर जयशंकर राय की वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन। इसके साथ ही होगी चर्चा और सुनेंगे लोकगीत। खेती किसानी कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। आलेख और वाचन राजवीर रतन का होगा और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। इसके साथ ही कार्यक्रम में सुनेंगे लोकगीत और होगी चर्चा और जानकारी की बातें। आज दोपहर 1:15 पर महिलाओं के अपने कार्यक्रम अपराजिता में सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो अपराजिता, जिसका विषय होगा क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट।

हेलो अपराजिता, कार्यक्रम में क्लाइमेट एक्शन मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे पर्यावरण संरक्षण व संबद्ध समाज सेवी अनुराधा गुप्ता। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता उन्नत बीज का चुनाव। इस विषय पर राकेश प्रताप सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश गुफ्तगू सुबह 9:30 पर। जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:15 पर। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिले की हलचल। और अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, आज का विषय लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इन सभी कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं, आपकी पसंद के फिल्मी गीत भी हम समय समय पर लेकर आएंगे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, जिसमें शामिल होंगे आपके पत्र, ईमेल और फोन कॉल्स। तो ये थी जानकारी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह के 7:10 हुए हैं, थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारी भारतीय सभ्यता में सनातन धर्म और योग परंपरा प्राचीन काल से ही नहीं बल्कि युगों युगों से हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रतिपादन करती आ रही है। ये भारतीय वेद पुराण और उपनिषदों में उल्लेखित श्लोक और मंत्र ही हैं जिन्होंने आदिकाल से संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को शांति प्रेम और सद्भावना की भावना से जीवों और प्राणियों के बीच एक सार्वभौमिक सूत्र में बांध रखा है। एक ऐसी ही अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक है लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व और इस संसार के सभी प्राणी सुखी और स्वतंत्र हों। और यही वो श्लोक है जो आज विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र जिसका उच्चारण शांति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार के लिए किया जाता है और जो हमें सिखाता है कि हमारी सोच और कर्म ऐसे हों जो दूसरों के जीवन में भी सुख और स्वतंत्रता लाए। दोस्तों, आज के आधुनिक जीवन शैली के परिप्रेक्ष्य में जहां आपसी संबंध मानवीयता सामाजिकता आत्मसम्मान सुख दुख कल्याण शांति और स्वतंत्रता सर्वत्र प्राणी जीव की परम कामना बन चुके हैं, ऐसे में ये श्लोक एक शक्तिशाली मंत्र है जो इस समस्त ब्रह्मांड में लोक यानी स्थान या क्षेत्र को साझा करने वाले सभी मनुष्य और प्राणी के सुखिनों यानी सुख और स्वतंत्रता के लिए एक प्रतिज्ञा और कर्तव्य परायणता का बोध कराता है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, दोस्तों ये श्लोक ये मंत्र ये प्रतिज्ञा एक ऐसी प्रार्थना है जिसका प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि यदि हम स्वयं सुख और दुख से मुक्ति चाहते हैं तो सभी प्राणियों और वस्तुओं के साथ हमारे संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी होने चाहिए। दूसरों को दुखी करने से सच्चा या स्थायी सुख नहीं मिल सकता। दूसरों की स्वतंत्रता छीनने से सच्ची या स्थायी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यदि हम कहते हैं कि हम प्रत्येक प्राणी जीव जंतु को सुखी और स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो हमें अपने हर कार्य को हर विपरीत प्रश्न की कसौटी पर खरा उतारना होगा। हम कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खरीदते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारा व्यवहार खान पान रहन सहन यहाँ तक कि हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते हैं, इन सभी भावों क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक और समान बनाना होगा, क्योंकि ये दुनिया हमारा जीवन हमारे अपने कर्मों से ही बनता है। जब हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शब्दों का जाप करते हैं, बोलते हैं या केवल सोचते हैं, और यदि हम इस ग्रह पर अपने साथ रहने वाले सभी जीवों जिसमें हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले जानवर भी शामिल हैं, उन सभी प्राणी की अवधारणा भी निहित है, हम उसी प्रकार की दुनिया का निर्माण शुरू कर सकते हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं।

दोस्तों, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और हमारी अपनी खुशी और मुक्ति का संबंध इस श्लोक और मंत्र को समझने के मार्ग से ही निर्मित होता है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने लिए कुछ मांगते हैं तो ये याचना हो जाती है, लेकिन जब आपके अंदर सभी के कल्याण की मांग हो

तो वो प्रार्थना हो जाती है। और इस प्रभु के द्वार पे तो बस प्रार्थना ही सुनी जाती है। तो आइए इस संपूर्ण विश्व, इस समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव जंतु प्राणी वस्तु के सुख और स्वतंत्रता के लिए हम सब आह्वान करें, अनुष्ठान करें और इस कालातीत मंत्र के साथ आध्यात्मिक भाव से प्रभु से प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः गो ब्रह्मेण शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।

इस मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ मंगलमय हो और आप संपूर्ण सृष्टि में शांति, प्रेम और सद्भावना का निर्माण कर सके। विविधा कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा मीडियम वेव के मीटर पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसके पहले ये संदेश।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

0: ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और

0: हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फरुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ के अंक में समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। आज के कलाकार कृष्ण चंद्र गुप्ता, इनके द्वारा प्रस्तुत है विचित्र वीणा वादन राग बिलास खानी तोड़ी में। मध्य लय और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता द्वारा विचित्र वीणा पर राग बिलास खानी तोड़ी। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, रात्रि 10:30 पर भी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कृष्ण चंद्र गुप्ता द्वारा विचित्र वीणा वादन का आनंद उठा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से नमस्ते लखनऊ का ये अंक भी अब यहीं समाप्त होता है।

0: आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं हिंदी समाचार पत्र का समाचार प्रभात। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

0: योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश

अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और

साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिण

0: ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओ, एक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश https://padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे
2: कट वन टेक वन
3: 5, 6, 7, 8
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन
4: Ladies and gentlemen, hold your heart, hold your breath, the super show begins!
0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। आपके साथ ढेरों फिल्मी बातें करने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। हाँ हाँ, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इतना भी ज्यादा नहीं कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे। परेशानी से हमें याद आया, दिन ब दिन हम अपने पर्यावरण के साथ जो असंतुलन करते जा रहे हैं वो परेशानियों का कारक बन सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसके लिए आवश्यक है पर्यावरण संतुलन में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। आज सुबह की न्यूज में हमने ये पढ़ा था कि आने वाले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा तो ये जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है। सोचिए, अगर अभी नहीं चेते, अभी ध्यान नहीं दिया, अभी रोकथाम के लिए जागरूक नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में क्या होगा। वैसे हमारे बरेली के आसपास का मौसम तो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों कर रहा, हल्की फुल्की बूंदों ने, ठंडी हवाओं ने बरेली का मौसम सुहाना बना दिया। आपके यहाँ का मौसम क्या कह रहा है, बता सकते हैं? कैसे बताएंगे, चलिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव की तरह फिल्मों में भी, कहानियों में भी, स्क्रिप्ट में भी, पर्दे पे भी, पूरी 3 घंटे की फिल्म में कई बार कम की भी होती है, कुछ ज्यादा की भी होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जैसे हमारी और आपकी जिंदगी में आते हैं। वैसे जो फिल्में होती हैं वो ऐसा कई बार लगता है कि हम उनको साथ, आप उनके साथ अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है ना। तो रील और रियल लाइफ दोनों में वैसे बहुत अंतर होता है। हाँ, अंतर होता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों जो शुरुआत हो रही है वो अपने प्यारों के साथ, यानी फिल्मी फ्राइडे के सितारों के साथ। हमने पिछले

हफ्ते आपको एक गाना सुनवाया था, गाना सुनवा के आपसे पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, आपसे ये पूछा था कि फिल्म का नाम आपको बताना है, और लाइनें ये सुनवाई थी आपको।

यही तो हम कहते हैं फिल्मों की बातें होती हैं और फिल्मों में इल्म भी छिपा होता है। हर फिल्म का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ये समाज का आईना होती है और किसी भी बात को लेकर, किसी भी विषय और ऐसे संवेदनशील विषयों को लेकर भी फिल्में बनाई जाती हैं। बहुत सारी फिल्में होती हैं, आपने देखा होगा कोई फिल्म मनोरंजन के लिए जिसमें हास्य फिल्म है, तो कोई बहुत गहरी बात कहने वाली फिल्म है, कोई फिल्म आपके जहन में आपके पटल पर यूं अंकित हो जाती है कि वर्षों तक उस फिल्म का नाम जैसे ही आपके दिमाग में दिल में आता है, सारा कुछ आपके मस्तिष्क पर चलचित्र की तरह चलने लगता है। चलते चलते हमें याद आया, चलना जिंदगी है, रुक जाना मौत की निशानी है। लेकिन दोस्तों, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। हाँ, हम बढ़ेंगे वहां जहां पहले सही जवाब के बाद बाकी जवाब सही मिले हैं, यानी अपने प्यारों के नाम की ओर। तो मेरे प्यारों, फिल्मी फ्राइडे के सितारों, तैयार हो जाइए। वैसे ज्यादा जवाब तो नहीं दिए दोस्तों ने, कुछ ही दोस्तों ने जवाब भेजे थे, ऐसा क्यों किया आपने? हां जी, हां जी। तो सुपर स्टार से तो हम अपनी स्टूडियो से उन्हें कॉल करेंगे, बात करेंगे, मगर सितारों के नाम पढ़ते हैं। पहले सही जवाब के बाद जितने भी राइट आंसर मिले हैं वो आप सब हैं। मोहम्मद कलीम जख्मी रेलवे रोड गंज डंडवारा से, अजीत भावसार बीरम गांव से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से, गणेशपुर गंज डंडवारा एटा से एम फारूक शेख, बीपी गौतम एटा रोड गंज डंडवारा से, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौर, मास्टर बिठल सरोज शेख काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, पटियाली रोड गंज डंडवारा से एम खलील कुरैशी, पश्चिम थोक गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला और तिलक राज अरोड़ा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई। हाँ, बधाई।

0: This is 100.4 FM.
1: ये 100.4 FM आकाशवाणी बरेली है और आप इस समय सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो नाम फिल्मी फ्राइडे है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, कार्यक्रम में जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब अगर आप सबसे पहले भेजेंगे तो सुपरस्टार बन जाएंगे, बाकी के जितने भी रहेंगे वो सब राइट आंसर वाले दोस्त स्टार कहलाएंगे। तो भी रेडी, तैयार हो जाइए आप भी हमारे साथ आज के सवाल के लिए। और सवाल आज इतना आसान रहेगा लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल तो आसान होगा हाँ, और इसलिए कहते हैं कि प्रोग्राम को जरा गौर से सुनिएगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों रिकॉर्ड भी कर लेते हैं जैसे कि बाद में सुन ले, कहीं सवाल प्रोग्राम से ही तो ना पूछा गया है। हाँ, तो देखते हैं आज हमारे कितने दोस्तों के दिमाग की चकर घिन्नी बनती है। चलिए अब हमारे साथ पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के कौन है? जी हाँ,
2: स्टार है, सुपरस्टार है।
1: कार्यक्रम में हम अपने सुपरस्टार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे और बधाई आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की।
3: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना

0: नाम और पता बता दीजिए।
1: मैं डॉक्टर डीएस बच्चन बोल रहा हूँ सर, गणेशपुर गंजनवारा से।
0: जवाब क्या भेजे थे आप? हमने गाने के बीच की लाइनें सुनवाई थी, फिल्म का नाम पूछा था।
1: हाँ, गाना आपने बीच से जो है लिया था, और फिल्म 101 डेज के नाम से आई थी एक फिल्म।
0: 101 डेज
1: हाँ, 101 डेज के नाम से आई थी,
0: बोल थे,
1: और ये
0: लगता नहीं दिल
1: गाना।
0: मेरा क्या किया जाए, चलो चाय
1: हाँ
0: पी जाए।
1: जी, यहाँ से शुरुआत होती है इसके गाने की।
0: हाँ तो
1: और
0: ज्यादा ज्यादा सोचना तो ना पड़ा, ढूंढना तो ना पड़ा गाना।
1: नहीं, गाना दरअसल वो सिनेमा जाए, वो जो लाइन आपने सुनवाई थी, वो तो जो है बहुत पॉपुलर थी ना, वो
0: अच्छा
1: जहन में बनी हुई थी।
0: अच्छा
1: अच्छा, 100 डेज के बाद 101 डेज, तो वो जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था
0: हाँ
1: इसमें। ये
0: हाँ
1: फिल्म आई 100 डेज, फिर आ गई 101 डेज,
0: हाँ
1: तो दोनों फिल्मों में एक तरह सा वो रहा, तो वो याद भी थी, और ये गाना जो था वो काफी पॉपुलर भी रहा था। ये बोल जो सुनाए थे आपने बीच
0: जी
1: वाले
0: जी
1: सिनेमा वाले, वो
0: हाँ
1: जहन में थे,
0: हाँ
1: शुरू
0: अच्छा
1: का
0: अच्छा
1: नहीं ध्यान में था, लेकिन वो जहन में थे, वो वाले बोल।
0: एक चीज तो है, 101 दिन, जो 100 डेज जो फिल्म थी वो 1991 में आई थी, और
1: जी जी
0: 101 डेज ये
1: जी जी
0: 1992 में आई थी।
1: वो लगातार कंटिन्यू आई ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो उसका जो है खुमार उतना नहीं था, जब तक ये आ गई, तो
0: ये आ
1: जहन में
0: गए।
1: रहता है कि ये क्या बनाने की जरूरत पड़ गई इसे, अभी 100 डेज आई, अब
0: अच्छा
1: 101 डेज
0: एक चीज और भी है डॉक्टर डी एस बच्चन साहब,
1: जी।
0: कि 100 में मुझे लग रहा है शगुन वाला नहीं बन रहा था, इसलिए उन्होंने 101 कर दिया।
1: 101 कर दिया, चलो कुछ तो चेंज किया, वरना बहुत फिल्में तो ऐसी हैं, कई नाम से चार चार छह छह पांच पांच आई हैं,
0: हाँ ये तो
1: बड़ा
0: है।
1: कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वाली है, क्या है, किस टाइम
0: हाँ
1: की है।
0: ये भी सही कहा आपने। और हम अपने दोस्तों को बता दें कि जो 100 डेज फिल्म थी जो 1991 में रिलीज हुई थी, वो जैकी श्रॉफ वगैरह थे उसमें, और माधुरी
1: जी जी
0: दीक्षित थी, जय और भी कलाकार थे, लेकिन जो 101 डेज वाली फिल्म थी इसमें जितेंद्र और नसरुद्दीन शाह वगैरह थे, अनु अग्रवाल और अविनाश
1: जी
0: बादवा
1: जी
0: वगैरह,
1: जी
0: आयशा
1: जी
0: जुल्का भी थी इस फिल्म में। तो ये बताइए कि फिल्मी फ्राइडे सुन रहे हैं हर हफ्ते? ज्यादातर
1: जी जी ज्यादातर सुनते हैं सर।
0: सुनते हैं। प्रोग्राम में कोई कमी नजर आती है आपको?
1: कमी तो कोई नहीं है, लेकिन ये है ना कि वो आप जो सवाल इस तरह के जब पूछते हैं, जैसे पिछली बार एक शरारत फिल्म की पैरोडी पूछी थी आपने, तो वो पैरोडी जो थी वैसे सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसे ढूंढना बड़ा टेढ़ा काम था,
0: क्यों?
1: कभी जहन से गुजरे ही नहीं वो पैरोडी, कभी सुनी ही नहीं। एक
0: अच्छा
1: इत्तेफाक था कि हालांकि इतना सुनते हैं, सुनते सुनते जो है इस एज पे आ गए, लेकिन जो है वो गाना का वो कैप पैरोडी नहीं सुनी कभी भी।
0: अच्छा आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर चुका है,
1: जी
0: और
1: जी
0: ऐसे में आपका क्या ख्याल है, क्या क्या कहते हैं आप?
1: गाने का जो कार्यक्रम है, या जो प्रोग्राम है, या जो प्रस्तुति है, या जितने तरह के प्रोग्राम है, वो ज्ञानवर्धक भी हैं और मनोरंजक भी हैं। और दूसरा, ये जो बरेली क्षेत्र है,
0: जी
1: जब ये आकाशवाणी शुरू हुई थी, तो बड़ा जो है वो था, हम जो है ऊपर, आप ताज्जुब करोगे कि हम ट्रांजिस्टर ऊपर ले जाके जो है उसमें और एक एरियल अलग से लगा के तो सुना करते थे, वो
0: अच्छा
1: दौर याद है हमें। जी,
0: अच्छा
1: रामपुर सही सुनाई देता था, लेकिन बरेली सुनाई नहीं देता था सही, तो बरेली सुनने के लिए जो है हम ऊपर जो है ट्रांजिस्टर ले जाके छत पे, और वहां से भी उसमें एक तार जोड़ के जो है उसकी कुछ क्लियर हो जाती थी आवाज, तो सुना करते थे हम वहां से। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं।
0: डॉक्टर डी एच बच्चन साहब, जो आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है,
1: जी,
0: क्योंकि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव जो होते थे वो अपने
1: जी
0: ट्रांजिस्टर पे
1: जी
0: आसानी से क्लियर सिग्नल मिलते थे, लेकिन
1: जी
0: एफएम की एक निश्चित सीमा होती है, दायरा होता है कि इतने एरिया में
1: जी
0: ये आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा, और उससे ज्यादा रेंज में अगर आप उसको सुनेंगे तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता था, जिसमें कोई तार वगैरह है, एंटीना बड़ा लंबा
1: हाँ
0: करना
1: जी
0: पड़ता
1: जी
0: था। तो ऐसे इस बात से और इस परिस्थिति से हमारे जाने कितने श्रोता हैं जो गुजरे होंगे।
1: अरे सर, एक ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, उस टाइम जो दूरदर्शन था वो चित्रहार आया करता था, ये आता था, तो उसके लिए एंटीना जगह जगह घुमाने के लिए उसे जो है जरा डिस्टर्ब हुआ और एंटीना घुमाना शुरू कर दिया, और वो ही दौर ये आकाशवाणी के साथ था।
0: जी जब
1: ये
0: एफएम
1: दौर की बात बता रहा हूँ मैं।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे जब आपने आकाशवाणी बरेली के
1: हाँ
0: कार्यक्रम सुनना चाहिए तो
1: जी,
0: अच्छा। वैसे निजी जीवन में रेडियो का क्या महत्व है आपके जीवन में, और आकाशवाणी का खास तौर पर क्या महत्व है?
1: रेडियो का तो इतना महत्व है, इसकी जगह तो कोई ले ही नहीं पाएगा, ये तो इतना महत्व है, इसलिए महत्व है कि आप जो है इसके साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे, ताज्जुब भी करेंगे कि मैंने

0: एजुकेशन ली है, तो मैं अपनी पढ़ाई भी करता जा रहा हूँ और उधर प्रोग्राम भी चल रहा है,
1: अच्छा,
0: दोनों काम एक साथ हो रहे हैं।
1: अगर अगर आपसे ही
0: ऐसा
1: पूछा
0: नहीं
1: जाए
0: है,
1: कि आकाशवाणी आप कितने वर्षों से सुन रहे हैं?
0: मैं आकाशवाणी, आप अंदाजा लगाइए, मैं 1971 से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से।
1: 1971 से,
0: जी,
1: एक लंबा समय आपका हो गया,
0: जब
1: लगभग
0: मैं 9th
1: 50
0: क्लास में पढ़ता था उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं आपके लिए।
1: 56 साल के आसपास हो
0: हाँ
1: रहा है।
0: जी। और एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, जब ये FM आया तो FM के आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि जो क्लियरिटी थी,
1: जी
0: या जैसे आप बोलते हैं तो आपकी सांसें भी कभी कभी सुनाई देती हैं। अगर कोई चीज आप सिप कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए आप चाय पीने लगे वहां स्टूडियो में बैठ के,
1: जी
0: तो चाय की सिप जो है सुनाई दे जाती है, हम लोग सुन लेते हैं, हमें अंदाजा लग जाता है कि आप कुछ खा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने
0: हाँ,
1: सही कहा
0: ये FM पे होता है,
1: जी।
0: वैसे उस पे मीडियम पे शॉर्ट पे जो है ऐसा नहीं सुनाई देता, उस पे तो बहुत डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन इस पे FM पे जो है बिल्कुल एक एक चीज क्वालिटी होती है। जैसे आजकल कैमरे आ गए हैं तो
1: जी
0: उनमें आपके जो है बाल, ये शेविंग के एक एक बाल साफ दिखाई देगा, वैसे ही FM पे जो है जब आप बोलते हैं तो उसका एक एक धुन, एक एक लफ्ज, एक एक सांस आपकी जो है हम तक पहुंचती है। आप अंदाजा लगाइए आप कितना क्लियर है।
1: इसीलिए तो कहते हैं कि आकाशवाणी आपके दिल के बहुत करीब है।
0: जी।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके और आपके अनुभव सुनकर और आकाशवाणी के लिए आपका प्यार देखकर सुनकर। हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
0: एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, गाना तो खैर बताऊंगा मैं आपके लिए, कि
1: बिल्कुल।
0: आज इत्तेफाक देखिए कि मेरी जो है मैरिज एनिवर्सरी का दिन भी है और
1: अरे
0: मैं
1: वाह,
0: सुपरस्टार भी हूँ, इसलिए मुझे बड़ी
1: एक गाना सुना था आपने,
0: खुशी
1: एक गाना सुना है आपने, मेरे सैया
0: कौन सा सुनाए।
1: सुपरस्टार,
0: जी,
1: है ना? चलिए, तो सुपरस्टार बनने की आपको फिर से मुबारकबाद। अब गाना बता दीजिए।
0: गाना जो है एक अलीबाबा 40 चोर फिल्म आई थी,
1: हाँ
0: उसमें मोहम्मद रफी साहब ने एक गाना गाया था
1: हाँ
0: अपनी आवाज में, बड़ा इमोशनल कहना चाहिए, जज्बाती था और प्रेरणादायक भी था, और उस गाने में असलियत, जीवन की असलियत छुपी हुई,
1: बिल्कुल
0: बनाए जा बिगाड़े जा के हम तेरे चिराग हैं,
1: ठीक है।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना था, इसको सुनवा दीजिए।
1: एक बार फिर आपको मुबारकबाद फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की और आपकी पसंद का गाना ये रहा, लीजिए सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था। हाँ
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।

0: मेरा बटुआ गिर गया।
1: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो। नाम तो मालूम ही है, फिल्मी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे सुबह 8:15 से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव रहता है। प्रोग्राम में आप स्टार या सुपर स्टार बन सकती हो, इसके लिए क्या करना है, प्रोग्राम सुन रहे हैं बड़े गौर से 100.4 FM की ओर से फिल्म माय फ्राइडे विद द डोज ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स एंड सुपर एंटरटेनमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्राइंग पैन निकाल ले रहे हैं, अरे भैया फिल्म फ्राई करनी है हमें, तो हमने फ्राइंग पैन निकाल लिया। लगाने के लिए तड़का हो रहे हैं हम तैयार, क्योंकि ये है तुम्हारे भी बस का हमारे भी बस का टोटल फिल्मी चस्का। और आज की जो फिल्म है चांद मेरा दिल, गाना नहीं फिल्म का नाम है, वैसे गाना भी है चांद मेरा दिल, चांद नहीं हो तुम। चांद मेरा दिल, कलाकार लक्ष्य अनन्या पांडे, आस्था सिंह, परेश पाहुजा, अंकुर पोदार, आशीष दुबे चांदनी। ये एक रोमांस और ड्रामा टाइप की फिल्म है। डायरेक्शन किया है विवेक सोनी ने। 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की फिल्म है। दोस्तों आमतौर पर आम का मौसम चल रहा है, आने वाले दिनों में ढेर सारा आम होगा, डट के खाइएगा अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए तो। आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों के हैप्पी एंडिंग वही मानी जाती है जब आखिर में हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर विवेक सोनी की चांद मेरा दिल की इस असल कहानी से ली गई ये फिल्म पारंपरिक सुखांत के बाद शुरू होती है, जब प्यार शादी की मंजिल तक पहुंचता है और फिर शुरू होता है असली जीवन। ये तो सब जानते हैं जो भी गुजरते हैं इन परिस्थितियों से, है कि नहीं दोस्तों। बच्चे, जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, समझौते और रोजमर्रा की चुनौतियां, इसी सफर में इंसान को सचमुच आटे दाल का भाव पता चलता है। और यही फिल्म एक अहम सवाल उठाती है, क्या जिंदगी की इन कठिन सच्चाइयों के बीच प्यार वैसे ही जिंदा रह पाता है जैसा फिल्मों में दिखता है। दरअसल कहानी का यही नया और यथार्थवादी नजरिया चांद मेरा दिल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर उभरता है। कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। आरव लक्ष्य अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है, उसकी चांदनी यानी अनन्या पांडे से वीडियो कॉल पर बातचीत होती है जिसे साफ हो जाता है कि दोनों अब साथ नहीं हैं। इसी बीच हैदराबाद में होने वाले कॉलेज रीयूनियन का जिक्र आता है। आरव चाहता है कि चांदनी वहां आए लेकिन वो इनकार कर देती है। रीयूनियन के दौरान आरव पुरानी यादों में खो जाता है और कहानी 2017 के हैदराबाद पहुंच जाती है जहां वो और चांदनी इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है लेकिन चांदनी की प्रेगनेंसी उनकी लव लाइफ को अचानक मोड़ दे देती है। परिवार के विरोध के बावजूद आरव और चांदनी शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते का असली इम्तिहान शुरू होता है। बच्चा, पढ़ाई, एग्जाम, प्लेसमेंट और जिम्मेदारी।

तालियों का बढ़ता दबाव आरव और चांदनी के रिश्ते पर असर डालने लगता है। इसी बीच टेंशन के बीच एक ऐसा पल आता है जब आरव गुस्से में चांदनी पर हाथ उठा देता है। ये घटना चांदनी को भीतर तक तोड़ देती है क्योंकि उसका अपना बचपन घरेलू हिंसा के ट्रामा में बीता है। वो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है। अकेले पड़ चुके आरव को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन क्या वो अपनी पत्नी और बेटी का प्यार और भरोसा दोबारा जीत पाएगा? यही सवाल इस फिल्म का भावनात्मक केंद्र बनता है। आगे के लिए हम ना बता रहे, इसके लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां बड़े वाले पर्दे पे फिल्म दिखाई जाती है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेक सोनी की कहानी में एक ताजगी और नयापन है जो इंटरवल तक फिल्म को मजबूती से संभाले रखता है। मगर अच्छी बात यह है कि यह कोई टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं बनती, बल्कि कम उम्र में शादी, जिम्मेदारियों के दबाव और टूटते सपनों की कहानी कहती है। फिल्म टॉक्सिक रिश्तों और घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छूती है। फिल्म का सबसे इफेक्टिव पहलू यह है कि चांदनी महज एक बार हाथ उठाने पर घर छोड़ देती। किसी के लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसका बचपन घरेलू हिंसा के ट्रॉमा में बीता हो, यह असहनीय बन जाता है। यहीं पर भावनात्मक परत फिल्म को प्रासंगिक बनाती है। नायक नायिका के इमोशनल ब्रेकडाउन और गिल्ट वाले सीन्स भी बहुत असर छोड़ देते हैं। इंटरवल के कहा बाद जो कहानी थोड़ी बिखरती है, स्क्रीन प्ले कमजोर पड़ जाता है, ड्रामा धीरे धीरे तैयार होता है, उसका क्लाइमेक्स आते आते खत्म हो जाता है। भैया बहुत अच्छा एक्टिंग तो सही की है, लेकिन आप सोच रहे होंगे देखें क्यों ना देखें, वैसे आपकी अपनी मर्जी है, देखो या ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। मगर प्यार की एक नई कहानी जो सिर्फ रूमानी ख्वाब नहीं बुनती, लक्ष्य और अनन्या की फ्रेश जोड़ी जो रिझाती है, चांद मेरा दिल आपके लिए एक अच्छी वन टाइम वॉच साबित हो सकती है। वैसे थारी आपकी अपनी मर्जी, देखो ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। आप सवाल पूछेंगे, सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सवाल ये है आज इस कार्यक्रम में, ना ना ना वो वाला सवाल ना पूछ रहे हैं, बदल दे रहे हैं सवाल को। सवाल ये है, ये फिल्म का नाम बताओ।

0: क्या
1: जी हाँ, मोहब्बत है क्या? बताओ इस फिल्म का नाम, ये कौन से फिल्म के गाने की लाइनें हैं? अपना जवाब भेजिए। सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस देकर अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब मिल जाने चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा आप लिख सकते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भा।
2: Me Friday. Cut one. Take one. 5, 6, 7, 8.
1: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। आइए सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए, बीना शर्मा और सखियों के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप लोग गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे

0: तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए दिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू

0: उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
1: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
0: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
1: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानिया पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानिया में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: फिल्म मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जिद लेला ही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया है।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: ठीक ठीक।

कसूर पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और हमारे आज के आकाशवाणी के दीवाने हैं विमल वर्मा जी।
1: मैं विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, ईशरपुर, जिला पीलीभीत से आकाशवाणी परिवार के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, नित नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। यूं तो आकाशवाणी के कई केंद्र भारत

0: जो बात आकाशवाणी बरेली में है वह किसी अन्य केंद्र में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम उम्दा और लाजवाब किस्म के होते हैं। अगर मैं आकाशवाणी से अपने लगाव या जुड़ाव की बात करूं तो मैं लगभग सन 2008 से जुड़ा हुआ हूं, और आकाशवाणी बरेली से जो मुझे प्यार मिला वो बहुत ही मेरे लिए सुखद पल के बराबर है। आकाशवाणी बरेली का जो प्रातः की सभा में कार्यक्रम आता है भक्ति संगीत, उससे हमें अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाता है, जिसमें युवाओं को अपने करियर संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, जो बच्चों के लिए बेहद मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही साथ कहानियाँ, चुटकुले आदि भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सुनने को मिलते हैं। और हमारी माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, या यूं कहें गृहणियों के लिए जो कार्यक्रम नारी संसार पेश किया जाता है वो एकदम लाजवाब होता है, क्योंकि घर में रहने के कारण हमारी महिलाएं हैं या बहनें हैं अपना घरेलू काम भी करती हैं, और साथ ही साथ उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अच्छा रहता है, इसमें हमें अपने स्वास्थ्य के रखरखाव से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो आज के समय में हमें स्वस्थ मनोरंजन भी दे रहा है, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी दे रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आकाशवाणी परिवार से हमें हमेशा प्यार और स्नेह मिलता रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
1: आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, FM 100.4 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी बरेली से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित किया जाएगा और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है भाई, हम बताई देते हैं। आकाशवाणी बरेली की पेज पर आइए, आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, हम सुनवाएंगे आपकी पसंद के फिल्मी गाने। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा जो पेज है उस पेज पर आइए और पोस्ट तो आज बहुत जल्दी आपके लिए पब्लिश कर दी गई है। हाँ, आपसे एक निवेदन है, प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट शामिल होगा, इसलिए आपसे निवेदन है बार बार कमेंट न करें और सिर्फ टेक्स्ट वाले कमेंट ही हम शामिल करेंगे। तो कोई भी पिक्चर मैसेज कमेंट के साथ अटैच न करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों 213 कमेंट मिल चुके हैं, यानी कि आज के आपकी पसंद कार्यक्रम का आगाज हो रहा है 213 यानी 213 कमेंट के साथ। और यकीन मानिए, प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा। 10:58 तक भी अगर आपका कमेंट मिलता है तो शामिल होगा, बशर्ते वो पहले शामिल ना हुआ हो। गाने तो कुछ ही कमेंट पर आधारित प्ले कर पाएंगे, बाकी धुआंधार कमेंट कर...

और हमारे साथ जुड़ जाओ। आज के आपकी पसंद कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म अर्पण के इस गीत के साथ। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मगर इस गीत को जिन दोस्तों ने सुनना चाहा है उनका

ना चाहा है उनका कमेंट पहला है। जी हाँ, पहला कमेंट आज के आपकी पसंद का। कौन दोस्त हैं? चलिए एक बार आप सबके कमेंट ओपन हो जाएं और हम फिर प्रोग्राम को एक्सप्रेस बना देंगे। हाँ, तो आप कहाँ हैं? आओ जल्दी से। आकाशवाणी बरेली के संग गीत संगीत के विविध रंग आपकी पसंद। अर्पण फिल्म का गाना सुनना चाहा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर पनीलाल सागर आशीष कुमार अमर सिंह हितेश सागर बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना भारती ओमपति भारती खनक शगुन सारांश आयांश आदित्य वर्मा शिवांश और प्रथव सिंह। अब करते हैं शामिल आप सबको मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर, सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक नामदेव हर्षित शर्मा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा कोयल मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा, मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरवी शाह अश्विन शाह मंगला भीन शाह राजेंद्र जी शाह मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नवाज बेबी चाहत और सादिया दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। कमेंट करते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर आरती गौरी और ओम सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती अभय गुजराती और भी कमेंट हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा। आप हैं ग्राम उमराटाली खामगांव से गजानन सालोकर जी सुरेश भिटे पाटिल मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी और राजू माठे गजानन माठे संजय ज्ञानेश्वर माठे प्रकाश दांडगे और इनका पूरा परिवार जलगांव आमोद खामगांव महाराष्ट्र से। भीष्मराज जी हैं बुलंद शहर से और आप हैं बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया नारंग। हांडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से राधे श्याम शर्मा इंदिरा सार्थक शर्मा और इनके सभी साथी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा और पूजा परिहार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर निर्मला नावकर विशाल नावकर मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष महेरकर। ये कमेंट हमें मिला है लहूडंडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत मुनेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन सुधीर नूतन भुवनेश्वरी देवी करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति सुमन देवी और आप हैं छविराम सिंह राजपूत कहां से हैं भाई जगह का नाम लिखा आपने ना जी ना बिल्कुल ना लिखा है। गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा मंजू विश्वकर्मा नितिन विश्वकर्मा सावन कुमार सचिन और शक्ति हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत मालती भगत राहुल और ऋषि बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से आप हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र के सभी साथी ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। हयात कॉलोनी अरेरिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकबल नफीसा प्रवीण और इनका पूरा परिवार। कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय प्रवीण सोनी कलावती सोनी जगदीश जौहरी। आप हैं गुजरात गांधीग्राम से एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या अरब और एस के खुराना। बड़ी घड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं। आप हैं आदर्श नगर मलूर पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश शर्मा मैंडी सौरभ साइना और निवान शर्मा। बांडी वाली फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया योगेश बगड़िया रजत और गरिमा बगड़िया। राजीव कुमार शाह के पटियाली कासगंज से हैं बंडू लोहार पोपलघट माया शिवांश चंद्रकला देवीदास पोपलघट हिंदराज रेडियो श्रोतसंघ तालुका निवासा कोपटी महाराष्ट्र से। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशुताशु अर्णव आनंद सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से मुन्ना भगत गुड्डी भगत बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से। प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली कंवर कॉलोनी खरगोन मध्य प्रदेश से हैं और कमेंट करते हैं गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद मोहम्मद अदीब अब्दुल हन्नान जीनत जावेद नाहिदा रानी आयत मोहम्मद इंतजार और इनके सभी साथी। और ये कमेंट मिला है आजाद नगर अक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का
बठिना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण।

अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र वर्मा सूरज कुशल वर्मा मोहम्मद फरमान मोहम्मद सरमान मोहम्मद इल्फान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून मुरादाबाद दूलापुर से बीजना मुरादाबाद यूपी से राजवीर सिंह यादव कुणाल हर्ष मनीष अंशिका यादव यूनुस खान और सोफिया खान एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता धीरज पंकज कुमार प्रिंस प्रशांत कार्तिक निर्भय गुप्ता और इनका पूरा परिवार कोठा मक्खन बरेली से अबरूज अंसारी और फारूक अंसारी काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिल्लू बिठल सुरोशी सुषमा परिधि और मायरा सुरोशी आप हैं कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनिता और राहुल भाबिस्ट्री किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास आशा देवी और इनका पूरा परिवार गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी रतन बाला मौर्य मुकेश मौर्य प्रिंस प्रियांशी पुष्पा गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य गली सेकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से बोरखेड़ा पित्रमल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक मूणत चेतन नाटा और इनका पूरा परिवार गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला राठौर विशाल निशा और इनका पूरा परिवार कमेंट करते हैं दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय आप सबके नाम फिल्म अर्पण से ये वाला गाना लीजिए सुनिए।

जी हाँ, आकाशवाणी बरेली से आपकी पसंद का कार्यक्रम इस समय जारी है। 213 कमेंट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस समय 228 कमेंट आ चुके हैं। तो चलिए अगला गाना आपको फिल्म स्मगलर से सुनवाते हैं। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की, संगीत निर्देशन किया है गणेश ने और शब्द रचना की है इंदिवर साहब ने। इस गीत को पसंद करने वाले आप सब हैं, आप हैं बीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार और इनका पूरा परिवार, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले और इनका पूरा परिवार, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टली जालना मराठवाड़ा से, दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और इनका पूरा परिवार, और आप हैं सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिफ, कमर मोहम्मद, कामरान मोहम्मद, शहबाज अहमद, नाज प्रवीण, नाजिज परवीन और मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शाकिब, रूही प्रवीण, खुशबू और मोहम्मद जैद, और आप हैं सलामत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक कुमार, राजकुमार बोडाना और इनका पूरा परिवार, उच्चपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या और अन्नू गोस्वामी का कमेंट है, और नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चौदह बार हैं नवापारा अभारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुष वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और इनके सभी साथी भाई राजकुमार बोडाना, सुदाबा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगदाब और इनके सभी साथी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, और अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और उनके सभी साथी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं। कमेंट हमें किया है आपने भी, आप हैं गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सारिका सुतार और बड़ी गभी चौराहा वाराणसी से आप हैं अरुण कुमार मालवीय, मालवीय परिवार के सभी साथी, और एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, बिलराम गेट खासगंज, दीदार रेडियो श्रोता संघ से कमेंट करते हैं, और सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से हैं और कमेंट किया है सदाशिव थोरात, कविता श्रेया, बंटी थोरात और इनके परिवारीजनों ने, ग्राम देवगांव पूर्णा महाराष्ट्र से, और कमेंट आपका भी मिला है राजकोट से, जमीन कुमार जैन, हितल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा कमेंट करते हैं, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, आजिया, नाजिया, आफिया।

इब्राहिम सद्दाम अदीब हसन गांव कुमार हिडा सहारनपुर से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनका पूरा परिवार, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके सभी साथी, और आप हैं जलालपुरा सहारनपुर से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यस, लवेश और मुनेश देवी प्रजापति, और इमरान शेख जीशान वारसी करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान साहब, और सिंधौली के ये साथी हैं इमरान शेख और जीशान वारसी जी, और छबीरपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश और गायत्री कश्यप हैं, और ग्राम शंकरपुर उसामा बदायूं से पुष्पेंद्र यादव, अमन सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत श्री और इनका पूरा यादव परिवार, और आनंद सनोज केशव यादव हैं श्यामनगर नवादा बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, और ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा रियांश, सृष्टि और इनका पूरा मेहर परिवार भटुनी, मंदसौर, मध्य प्रदेश से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता ओखला संगम बिहार दिल्ली से कमेंट किए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो का कमेंट है, और आप हैं चौराहल जिला भजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात और कदीर चौधरी, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह दूलापुर उत्तर प्रदेश से, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, और आप हैं सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी शर्मा और इनका पूरा परिवार, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और मुस्तफा खान पैराडाइज कॉलोनी से हमें कमेंट करते हैं, जगह का नाम कहाँ का है, सादुल शहर से राजकुमार रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, सादुल शहर राजस्थान से कमेंट किए हैं, और चर डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जयकिशन, योगेश बासु, हिमा और राधिका साहू कमेंट करते हैं, भगवान सिंह यादव, अर्पित यादव, देव सिंह, मजरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से, चक 15 PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन और इनके सभी साथी, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत चुलबुली रानी और इनका पूरा परिवार, सतबीर सिंह विजारेनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जु और नव्या विजारेनिया सिरसा खानिया ढाणी हरियाणा से कमेंट किए हैं, और आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट से निप्पी सानी और इनके सभी साथी, रजौनी महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार, और आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी और अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट और इनका पूरा परिवार है, कश्मीर शालार पहलगांव से पीरजादा मीराजुद्दीन और इनके सभी साथी, दरियापुर बाबली सिद्धार्थनगर से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और मधुकर येले, और कमेंट करते हैं डॉक्टर अरुण चंद्र शर्मा, रेणुकर शर्मा और इनके साथी, विराटनगर नेपाल से हमें कमेंट मिला है आपका, जय जिनेन्द्र, श्रोतासंग परमणि महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगई और इनका पूरा संगई परिवार, नई बस्तीगंज डोंडवारा से मोहम्मद यासीन हासमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हासमी, तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, और आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, कमेंट करते हैं पटना पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी और इनके सभी साथी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और प्रकाश डोड़े, मंदाकिनी डोड़े, अनंत गणेश डोड़े, ज्ञानेश्वरी और इनका पूरा परिवार, ग्राम संकनपुरी तहसील परतपुर जिला जालना महाराष्ट्र से, और वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, और ये जो कमेंट मिला है गंज डंडवारा से मास्टर खिलू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमना अफरीदी, और कमेंट करते हैं जामानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, कमेंट करते हैं गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव शेठी, करणपुरी, इस्माइल टुटेजा और इनका पूरा परिवार, तेलंगाना निजामाबाद से हमारे ये साथी हैं कौन कौन है, शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके सभी साथी, महारे दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अशफ अब्बासी और अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू कमेंट करते हैं, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी,
आप है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा वकार हैदर कनीज सकीना हसीना दिलशाद वसीम फातिमा और इनके सभी साथी धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण

बांटे संदीप और अमूल्य बांटे बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर और कमेंट मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिजना हर्षित और खुशी गोस्वामी का और आप हैं भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार मोहम्मद जावेद राणा राहत अली और वकील अहमद कमेंट करते हैं प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रांजलि सोहम सदानंद विराज अंशुमन ओबी सुभाष सदानंद नीरज विराज और इनका पूरा परिवार सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा और हमारे ये जो साथी हैं टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज पंजाब से भाकर रेहाना खान और इनके सभी साथी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबिये राधिका गजबिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये और कमेंट करते हैं समता नगर कांस्टी से लक्ष्मण जगताप शेयर शिंदे निशांत जगताप मानिश्री शिंदे अहल्यानगर सालवड़गांव से हमारे ये जो साथी हैं वो कौन हैं बंधु हरिभाऊ किरण वीर आकोट से विनायक बिंडे और इनके साथी नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग पुनाराम देवांगन कृष्णा देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं गुरमीत सिंह नेताजी साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशान देवांगन लखन लाल देवांगन सावित्री बाई पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमर सिंह महेश्वरी देवी सोनू मोनू राहुल रश्मि प्रियंका सृष्टि बन्नी अरुष सौर्य दिनेश और इनके सभी साथी हैं और आप हैं उनैल उज्जैन मध्य प्रदेश से भीरूलाल बख्तरिया धाकड़ भोला बख्तरिया प्रवीण रियांश और प्रतीक बख्तरिया कमेंट करते हैं मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायवर से पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह ऋषभ सिंह और इनका पूरा परिवार और आप हैं महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंद कौर मनु और इनका पूरा परिवार और रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान कमेंट करते हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं रामचंद्र मखीजा काफिर भाई और इनके सभी साथी अश्वनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधिका भाविक राधे भाविक ढींगरा और इनका पूरा परिवार आशु चुग के साथ पंचकुला सेक्टर 9 से और सदानंद यादव विवेकानंद नितेश ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म का नाम स्मगलर गाना है ये लीजिए सुनिए

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म अनीता से, लता मंगेशकर के और सखियों की आवाजें, राजा मेहदी अली खान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। सुनना चाहते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री मेहत्रे, अंजलि करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीपी कुल थे। शामिल करते हैं आप सबको। आप हैं रघुवीर नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नाया, नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और उनके सभी साथी, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरगेरियत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द, राहुल और विजेंद्र जयजान। आप हैं आर्यनगर कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरशी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। पुराना शहर कटरचांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से आप हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। रावर करनाल से विनोद, लखन पाल और इनके सभी साथी हैं। आप हैं स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरुईत रमेश साहू, तारा विद्या।

जितेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, सुनीता देवी, अरे स्टीवन लाल, चंद्रहास, हीरेंद्र कुमार, त्रिलोक कुमार और रणजीत सिंह साहू, दीपेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप और इनका पूरा परिवार, अटल रेडियो शतसंग सांकरा सोमनी राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से, सेक्टर 5 सूर्यनगर, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्बी और हिमांश, आप हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से, बेचीलाल गंगवार, गुडी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, ईला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित और महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी, रॉबिन भाई और इनके सभी साथी, मोहम्मद हाफिजुर रहमान, हबीब मलिक, अलील मलिक, अली रहमान पंजाब भाकर से, और आप हैं गांव खोकरावाली से, विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी शगुन बाराशा, गणेशपुर गंजनवारा से एम फारूक शेख, शेख समा परवीन और इनके सभी साथी, बोर्ड सरानाला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, शाजीनगर देलगूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, कमेंट करते हैं मौर्य बस्ती सुरखा बरेली से राम गोपाल मौर्य, सुनीता कृष्णा पायल मानसी और इनके साथ ही, दिनकर सालवे, अजय राजपुरे, एकनाथ पवार और भाऊ साहब, जवराई महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा और इनका पूरा नामदेव परिवार, चार भाटा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम, सत्यार्थ और ईवी, आप हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और इनका पूरा परिवार, ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, कांठ रोड लदावली से, मजनू कटीला से, कमल बालूजा, सागर बालूजा और ये तो पहले भी कमेंट शामिल हो चुका है, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, बीके हितेंद्र पाल, हितेंद्र दास जी हैं आसाम से, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदरकर, आप हैं हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, हिंदू पार्वती, हिमांशु गोदारा, अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष, आकर्ष और सोन वर्षा, खानपुर चुन्नार, मिर्जापुर से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी बामिका और वाणी थांडी, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत यूपी से, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी भाविया, निवेश कुमारी, नियति कुमारी और इनका पूरा पूरा परिवार है, साथ में और भी दोस्त है, कौन कौन है चलिए शामिल करते हैं आप सबको, आप हैं ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके सभी साथी, और ये कमेंट हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरन निशा, सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी को, और आप हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु लाड़ी, शालिनी तिवंशी, वाणी खेड़ा, अरबी खेड़ा, जीवन सिंह बोकर इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद और इनके सभी साथी, गढ़ी कोटा पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया मोहम्मद, इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा अंसारी, आयशा उमर अंसारी और समीना अंसारी, बदायूं रोड बेहतरी रेलवे फाटक कॉलोनी चंदोसी संभल से आमिन अली और इनके सभी साथी, शनी बाजार कस्बा उगहती से प्रभाकर गुप्ता, अवदेश सचिन देव गुप्ता, प्रियल कायरव गुप्ता और इनके सभी साथी, और आप हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद माहिनूर अंसारी, शमीम समा अंसारी, नसरीन अंसारी, ग्राम करेली जिला बरेली से, और ये कमेंट मिला है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन अंसारी का जैन मंदिर वाली अली कुराबली से, और हमारे ये साथी है बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कार्तिक, निर्भय गुप्ता उगहती बदायूं से, और रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके सभी साथी, आधार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा और इनका पूरे परिवार, घीसू दिलबारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ कुणाल दिलबारे राजपुर मध्य प्रदेश से, सिंधौली मीरगंज बरेली से ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं कमेंट, और बहेड़ी से आप हैं अंजुबाई, खालिदा बेगम और इनके सभी साथी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु खोरवाल,
पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और आप हैं मोल्ला गड़िया बरेली मस्जिद के पास से कैशर शमसी, अजीम सलीम, रजिया शमसी और बेबी, और आप हैं मदार चौक उदयपुर जिला बरेली से नाजिम अली, वसीम अली, फुरकान अली, खालिद अली।

आसिम अली, हुसैफ अली, जीसान अली, इश्तियाक गुड्डू, अदीबा फातिमा, जैब नूर और इनका पूरा परिवार। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता हेवराले, प्रतीक हेवराले और इनका पूरा परिवार। और आप हैं एयरपोर्ट नगर वंदना नगर, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ, खड़ से ललिता, आशा रानी, संजना परी, खड़ से आराध्या, खड़ से वैष्णवी, देविका चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनका पूरा परिवार। और आप हैं निसार अहमद अंसारी, मेजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन बन्ने और पप्पू भाई अंसारी नाज रेडियो क्लब करेली से, और मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बीटू भैया, सादरानी, हीरा कौसर, मौला हलवाइयान, शेरकोट बिजनौर से, बरवट बकाल बुलढाणा से, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे कमेंट करते हैं, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, बबीता, पूजा, नंदिनी, शोभा रघुवंशी, ललित, नारायण और इनके सभी साथी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा और इन कुणाल मेहरा कमेंट करते हैं, राजधानी रायपुर से नीलू बेग, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, इनके सभी साथी, और सेक्टर 18 जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा, डॉक्टर ईशानी और इनके सभी साथी, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा, और ये कमेंट जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य का, कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम बाकी, अब्दुल गनी और इनके सभी साथी, चकबन फोर बीएसबी, गंगानगर से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क, प्रदीप और इनके सभी साथी, और आप हैं राजेश अशुरवा साबले साहब, कहां से जगह का नाम आपने नहीं लिखा, और रतलाम मध्य प्रदेश तहसील आलूट, मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालूद के साथी हैं, विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, बंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा परिवार। और रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर का कमेंट मिला है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तनबी बोत। और आप हैं ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा से हसमुख हसान, हसमस इनाया, शानूर फलक, ताज मोहम्मद अबानूर और इनके सभी साथी, कुलदीप कुमार गांव ब्रिजपुर किनवावर जिला मैनपुरी से, और सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन गांव कुमार हिडा सहारनपुर से, होली चौकोत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनका पूरा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और आप हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुतरा पंचाला और इनके सभी साथी, कस्बा मीरगंज बिजलीगढ़ से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री, और गनगोला दातागंज से अशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, सबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ, ईशान आजम और अरहान खान कमेंट करते हैं, गांव लोहेडी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक और इनके सभी साथी। और आप हैं गांव वीर किठाई दरियाबाद बाराबंकी से श्यामू चौहान और इनके सभी साथी, और माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, से एम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन कमेंट करते हैं, अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा साहू, खुशांत निशांत साहू, कर्मा चौक लोहारी डीए कवर्धा से, और महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, राजमाता नगर बुलढाणा से कमेंट मिला है, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, कल्पना, अर्चना, नंदिनी, चांदनी कुमारी का। और आप हैं बीकानेर राजस्थान से कैलाश चंद्र सोनी, गोविंदा, उत्तम कुमार सोनी और इनका पूरा परिवार। और आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान। आप चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, कदमा जमशेदपुर से, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, और गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनबर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और मंगल जनागल, राही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, चक 5MD पतरोड़ा से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, शारिक अली खान, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से हैं। और आप हैं चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश, अधीरा इंगले और इनका पूरा परिवार। और ये जो खुर्जा यूपी से कमेंट मिला है, आप हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम, राम हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े और इनके सभी साथी। नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, हिफ्जा नूरी, नन्हे नत्थू, शौकीन भाई अंसारी और इनके सभी साथी। और आप हैं पुरानी भिलाई 3/14 पदम नगर से छत्तीसगढ़ के श्रोता, डॉक्टर नौशाद एम एस सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान एम एस सिद्दीकी, शहनवाज एम एस सिद्दीकी और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। और ये कमेंट हमें मिला है अब्दुल गफूर कौसर साहब का,
और फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला

प्रसाद खरवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा खरवा और आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने और इनका पूरा परिवार, गांधीनगर गुजरात से जी के परिवार, ज्योत्सना परमार, दीपल हर्ष और कमेंट इटर रोड गंजडंडवारा से आप हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, मैम कलीम जख्मी, डॉक्टर डीएच बच्चन, आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विज्ञति, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी, श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी से कमेंट करते हैं। और ये जो कमेंट हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके सभी साथी। और आप हैं कौन कौन साथी हैं? जगदीश धाकड़, नाइमर रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी से। हमें मलूपुर जुगन गली शेर खान मस्जिद के पास से आप हैं बेबी अनम, इमरान, हानिया, अब्बास और इनके सभी साथी। आइए सुनते हैं आप सबके नाम फिल्म अनीता से ये गाना।

क्या हुआ दोस्तों, आपके कमेंट तो खत्म हो गए। हाँ, 258 कमेंट आए हैं अब तक, जिसमें जो 257 हमने पूरे कर दिए और अभी भी 12 मिनट बाकी थे कार्यक्रम में। तो जिन दोस्तों ने कमेंट नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, गारंटी है 10:59 बल्कि 58 मिनट तक मिलने वाले सभी कमेंट शामिल किए जाएंगे।

आकाशवाणी बरेली से इस समय आपकी पसंद सुन रहे हैं। देखिए ना, अजीब संयोग है, अब सिर्फ एक ही कमेंट बाकी है और उसी कमेंट से हमें गाना प्ले करना होगा। चलिए आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का नाम है धरती और मोहम्मद रफी से आपकी आवाज है, मगर कमेंट किन दोस्त ने किया है? हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े और इनका पूरा परिवार। और एक कमेंट और मिल चुका है अभी, माँ भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम पोस्ट अकटोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप हैं सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार साहू, देवेंद्र कुमार साहू, गजेंद्र कुमार साहू, रवि कुमार, राघवेंद्र भावना, यशदीप साहू और इनका पूरा साहू परिवार। क्या आपका कमेंट अभी तक शामिल नहीं हुआ है तो कर दीजिए, कमेंट हम शामिल कर लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो चलिए धरती फिल्म का गाना आपको प्ले करते हैं।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस समय आप आपकी पसंद सुन रहे हैं। दोस्तों 266 कमेंट हमारी नजरों के सामने हैं। चलिए हमारी कुछ दोस्त हैं गली सिकलापुर वाले दोस्त, आपका कमेंट तो पहले ही शामिल हो चुका है और कुछ एक और दोस्त हैं उनके भी कमेंट शामिल हो चुके हैं, तो रिपीट कमेंट ना करें। तो हम ये जो अगला गाना आपको लोफर फिल्म से सुनवाएंगे, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और इस गीत को पसंद किया है आप सबने। आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, अनिता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े। इसी गाने में शामिल करते हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, शालू गौतम और इनका पूरा परिवार। और कोई साथी हैं जो छूट रहे हों? आप हैं गांव वड्डा खाना कोट विला जिला पंचकूला से अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, बंतो, रुल्दी, खदीजा, सुहाना, रिजवाना, जावेद, परवेज, जाहिदा और रिजवान खान। और कस्बा खेवलड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम गंगवार, अंकुश मौर्य, राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार। कौन कौन साथी हैं? चंदूलाल पटवा और विनीत कुमार पटवा जी हैं। कहां से जगह का नाम तो लिख देते इतना जल्दी काहे का सर। चलिए गाना सुनते हैं लोफर फिल्म से।

तो दोस्तों अब चलना पड़ेगा, जैसे कि आपसे हमने वादा किया था 10:58 तक जो भी कमेंट मिलेंगे सब शामिल होंगे। आज का ये सफर हमने तय किया 268 कमेंट के साथ, और कार्यक्रम में काफी समय बाकी भी रहा था, यानी कि अगर आप 300, 400, 500 कमेंट भी करते तब भी सबके कमेंट शामिल होते गारंटी से। फिलहाल आप सबके इस प्यारे साथ के लिए बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन AIR एप और रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़ा साहब का कैसा कुंडली मारकर बैठा है जोड़ा साहब का, ये कहीं भी दिख जाता है तो जाड़ों में भी आदमी को पसीना आ जाता है। दमूरे
2: जी उस्ताद,
1: जो पूछेगा बतलाएगा।
2: बतलाऊंगा।
1: इंसान का उल्लू बनाएगा?
2: नहीं बनाऊंगा।
1: किसी का बैंड बजाएगा?
2: नहीं उस्ताद।
1: अरे नहीं उस्ताद, अच्छा मुर्गा बनाएगा?
2: नहीं उस्ताद।
1: जमूरे तू आजकल मेरी बात नहीं सुनता तो क्या सुनता है
2: उस्ताद? मैं आजकल 100.4 है।

0: FM सुनता जो इंसान को इंसान बनाता,
1: मतलब
0: न उल्लू न मुर्गा न किसी का बैंड बजाता, 100.4 FM इंसान को सिर्फ इंसान बनाता।
1: बच्चा लोग बजाओ ताली।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं मित्रों, आइए अब सुनते हैं सब रंग। आरंभ में आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी, स्वर दिया स्वास्थ्य मेहुल्ले। आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सबरंग में। आइए अब सुनते हैं एल्बम असर से एक गीत जिसे गाया है मनहर उदास जी ने। तो लीजिए सुनिए

सब रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर। ये एल्बम बेवफाई का आलम से अगली पेशकश अगम कुमार निगम और तुलसी कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए।

अलीशा चिनोय और साथियों की आवाज़ों में एल्बम मेड इन इंडिया के इसी पॉप सॉन्ग के साथ आज का सब रंग यहीं पर संपन्न होता है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIRF पर। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल

0: मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी।

0: गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था, लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहें। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के

0: स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति चौधरी साहब की प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनकी स्मृतियों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अनेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। पूर्वांचल का जौनपुर जिला कैंसर के रेड जोन में आ गया है। यहां पिछले 3 महीने में कैंसर के 284 संदिग्ध मिले हैं। सभी में मुंह के कैंसर के लक्षण हैं। इन सभी के पीछे कारण देशी नशा दोहरा का सेवन है। ये खराब सुपारी से बना वो नशा है जिसके बेचने पर रोक लगी है। फरवरी और मार्च 2026 में जिले के सरकारी अस्पतालों में लगाए 175 शिविरों में 8070 लोगों के मुंह की जांच की गई। इनमें से 284 लोग संदिग्ध पाए गए जिनको जांच के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रभारी सीएमओ प्रभात सिंह ने प्रशासन से दोहरा की बिक्री पर रोक लगाए जाने की अपील की है। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक बड़े अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 गर्भवती महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हसनपुर क्षेत्र में स्थित गांव चक्की मड़ैया सतैड़ा में टीम ने एक मकान पर छापा मारा। टीम ने मौके से अवैध रूप से लिंग परीक्षण कर रहे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। सीएमओ डॉ योगेंद्र सिंह ने बताया कि दलालों के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा की महिलाओं को यहां लाया जाता था। जांच में सामने आया कि भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 35 से

35,000 रुपए तक मोटी रकम वसूली जा रही थी। मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक के लिए भी आधिकारिक बोली पेश कर चुका है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके फेवरेट प्रोग्राम का और वो प्रोग्राम है स्वयं सिद्धा, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर शुक्रवार स्वयं सिद्धा में हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने दम पर सक्सेस हासिल की और साथ ही बन गई प्रेरणा का स्रोत औरों के लिए। तो दोस्तों हम बातें शुरू करें उससे पहले मैं सोच रही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचा दूं, तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है, हम सब एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जी, तो प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना शान की आवाज में, छोटी छोटी तमाशे पानी जैसे बताशे। जी हाँ, इतना बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, हम कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं स्वयं सिद्धा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में उन कामकाजी महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो अपने कार्य के साथ साथ घर को भी एक बहुत ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संयुक्त करती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य पे एक कड़ी आप सुन रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। जिसमें हमारी आकाशवाणी की ही कुछ ऐसी स्वयं सिद्ध महिलाएं हैं, जैसे श्रीमती शारदा लाल जी और श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी। तो चलिए, एक कड़ी है जो बची है, आज आप तक आखिरी श्रृंखला है ये पहुंचानी है, और जिसमें बात करी है इन दोनों से ही। जी हाँ, श्रीमती शारदा लाल जी से, श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी से ममता उपाध्याय जी ने। तो चलिए सुनते हैं उस श्रृंखला की एक आखिरी कड़ी। तो कुछ यादें और कुछ बातें।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। सुनिए और आनंद लीजिए।

0: इन्हा जी की तरफ चलते हैं और कुछ उनके अनुभव खजाने से निकालते हैं, कुछ और मोती हीरे क्या निकालेंगी आप?
1: कंसर्ट की बात बताएं
0: जी
1: तुम्हें,
0: जी जी
1: वाकई के नैयर साहब पी माथुर जी के सामने पहले कंसर्ट बहुत होती थी, खुद अपनी बात बताते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट के लिए बहुत बार हमी को जाना पड़ता था। तो उसमें ये था कि अब छोटी वाली बात बताते, पहले ये होता था कि भाई आज जाना है अनाउंसमेंट के लिए, अब आज ये साड़ी पहनी, अब हफ्ते में तीन अगर कंसल्ट हो गई या दो हो गए या महीने में चार पांच, तो चार पांच साड़ियां चाहिए। अब शुरू शुरू में आया है कहाँ इतनी साड़ियां, आज इनसे मांगो कल तो हम लोग आपस ही में आशा दी थी वो अपनी साड़ी कभी देती, आज तुम ये पहन ले
0: जी जी
1: तो उस तरह से हम लोग करते थे। और कंसर्ट्स में नैयर साहब के समय में बहुत अच्छे कंसर्ट्स हुए और बहुत ही अच्छा लगता था। अभी तो हम लोग नए स्टूडियो में, उस समय जब हम आए थे तो पुराना स्टूडियो था, वहाँ स्टूडियो नंबर 2, 5 और 1 नंबर स्टूडियो हुआ करता था। 1 नंबर स्टूडियो जो था तो उसमें ये छोटी मोटी, जैसे अभी कंसर्ट की बात करी इन्होंने या बिस्मिल्लाह खान साहब की रिकॉर्डिंग, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वहां पर होती थी।
0: जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है अब वो,
1: अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया गया है
0: जी,
1: जिसे
0: हाँ,
1: उसमें हाँ। तख्त पड़ा हुआ था बड़ा सा, 2-4 पड़े होंगे, मतलब स्टेज टाइप का वैसे था, और सामने कालीन और वो सब बिछी रहती थी वहां पे। उस समय मलका पुखराज आई थी, नैयर साहब ने बुलाया था।
0: अभी तो मैं जवान हूँ,
1: अभी तो मैं जवान, मलका पुखराज जी आई थी और नैयर साहब ने हमसे कहा था कि एक तो वो पवार साहब ने मूर्ति बनाई थी बेगम अख्तर जी की, तो बेगम अख्तर जी की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था। शाम को उन्होंने कहा नीना मूर्ति के ऊपर तो कुछ पढ़ना चाहिए, हमने कहा जी पढ़ना तो चाहिए, तो इसका कवर अब तुम बना के लाओ। फिर हम और उस समय म्यूजिक पैक्स, यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, तो हम दोनों गए हजरतगंज, वहां से कपड़ा खरीद के लाए, रात में बैठ के हमने कवर सिला, सुबह आकर के मूर्ति पे ढका, नया साहब को पसंद आया। फिर जिस समय मलका पुखराज आई थी, क्या बताएं हम ममता, कि मतलब क्या वो थी, उनकी बेटी थी, दामाद थे, इतने खूबसूरत, खूबसूरती की बात तो अलग रख लो, लेकिन जो गाया उन्होंने, और लास्ट में तो फिर एक फरमाइश हुई, पूरा स्टूडियो खचाखच भरा था 1 नंबर, और लास्ट में उनकी कि अभी तो मैं जवान हूँ, उसके बाद जो उन्होंने अभी तो मैं जवान हूँ आज तक हमारे कान में।

0: ऐसे ऐसी कंसर्ट्स होती थी। या तीजन देवी, तीजन देवी जब आई उस समय, जिस समय आकाशवाणी ने उनकी कंसर्ट करी थी तो उस समय अनाउंसमेंट उनका हम ही ने किया था, रविंद्रालय में था वो
1: जी।
0: होटल था आकाशवाणी के पास में, उसी में रुके तो दिन में म्यूजिक पर्सन थे, नीना चलो उनसे डिटेल्स ले लो चल के। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग जीना चढ़ के ऊपर गए, उस समय जीना चढ़ के ऊपर गए।

0: नहीं समझ सकते हैं आपकी कितनी सिंपल थी वो। तो एक उनके ग्रुप के 6-8 लोग थे, उस समय तो हमने सोचा ये तीजन देवी जी इनका मतलब प्रोग्राम क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जिस समय स्टेज पे अनाउंसमेंट किया और जो वो आई है ममता, मतलब क्या कहें कि आज भी सांस रुक जाती है।
1: वो पंडवानी,
0: क्या पंडवानी उन्होंने, और क्या मतलब इतना जबरदस्त वो प्रोग्राम था कि हम कह नहीं सकते।
2: अच्छा
3: दानी ले कहे हे मित्र, आप मन ऐसे ढंग के लड़ाई करा तो जैसे 10 दिन के लड़ाई भी उसमें पिता मा लड़के 10,000 राजा ले मार के और विजय संग बजा के शिविर लौटी, पर पांचों भाई पांडव

0: अपनी खुशनसीबी इसको कहेंगे कि बेगम अख्तर जी जो थी उन्होंने लाइव आइटम दिया था, सुबह 8:30 बजे का था, अभी तक हमें चमक याद है वो
1: जी जी।
0: और हम थे, दो नंबर स्टूडियो था जो पुराना वाला हमारे स्टूडियो में, उसमें एक तरफ म्यूजिक का होता था, एक तरफ शाम में प्रोग्राम ग्रामीण चलते थे, उसमें था उनका।
1: आप अभी भी भाव विभोर हो जा रही हैं।
0: अरे
2: ये पहुंच गई
0: आ करके पुराना ड्यूटी रूम जो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठी, और मुन्ने खान साहब तबला उनके साथ बजाते थे, गुलाम सबीर कादरी उनके साथ सारंगी बजाते थे, तो वो दोनों खड़े, और मुन्ने खान क्या हाल है, इस तरह से उन्होंने बात

0: पता नहीं सकते कि कैसे कैसे लोगों से मिले, कैसे कैसे आर्टिस्ट हमने देखे, मतलब कितनी विनम्रता थी, कितने अच्छे थे वो लोग कि क्या ही बताए।
1: कला साहित्य है, संगीत हाँ, है, राजनीति,
0: वैसे ही साहित्य के
1: अंदर लोग यहाँ आते हैं।
2: ममता जी हम लोग के पास
0: के नैयर का वो याद है विद्या निवास,
2: हाँ, विद्या निवास, अरे वाह
0: कितना खचाखच जबरदस्त, यहाँ गैलरी में गद्दे बिछे थे।
2: देखिए विद्या निवास को लेकर के मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तब मैं रामपुर से आई थी
1: जी।
2: तो बड़े सहम के मैं लखनऊ में कदम रख रही थी, विद्या निवास मिश्र को आना था, बड़ी मतलब मन में उत्सुकता हुई कि उनको देखने की बड़ी इच्छा थी। बहरहाल उस समय नैयर साहब ने बताया कि आप लोग सुनने आइएगा, और नंबर एक स्टूडियो इतना भर गया कि मैं कहीं उसमें जा ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं जगह मिली। बहरहाल उनको देख करके हम लोग इतने क्या अभिभूत हुए कि हम बता नहीं सकते हैं। सिल्क का कुर्ता पहने, जैकेट, बड़ा सा माथे पर टीका, गोरा रंग, पान से रंगे होंठ, अद्भुत उनका व्यक्तित्व। और जब वो बोलने लगे तो हम लोग स्तब्ध सुनते रहे।
0: और पहले समय का बंधन नहीं होता, जब बोल रहे हैं जितना ही वो तो उतना बाद में आप वो देखे जाएंगे, चाहे
2: उसको एडजस्ट करते रहिए,
0: एडिट करिए, चाहे आप जिसको कहते हैं ना धारावाहिक रूप में प्रसारित करिए, चाहे कुछ भी करिए,
1: हाँ।
0: तो इस तरह से होते थे प्रोग्राम। और इतने रसिक श्रोता भी थे, इतने साहित्य प्रेमी श्रोता भी थे कि सब उसमें आते रहते थे
1: जी।
0: और ममता एक बात

0: और बताएं, अब शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल लेकिन फिर भी
1: बिल्कुल बिल्कुल अभी बहुत
0: इसलिए बोल रहे हैं कि सुनने वाले भी कहेंगे, तुम भी कहोगे, शायद जो यहाँ पर है वो भी कहेंगे कि पुराने स्टूडियो ही कर रहे हैं अभी तक उसी से जुड़ी हुई। जबकि जब नया स्टूडियो ये बना तो सबसे पहले जब यहाँ की टेस्टिंग हुई तो यहाँ भेजे गए कि भाई जाओ वहां से अनाउंसर्स बूथ से जा करके प्रसारण करो, तो यहाँ से प्रसारण किया। फिर आया इसका इनॉग्रेशन डेट कि इसका इनॉग्रेशन किया था उस समय प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, 26 नवंबर 1978 की बात है।
1: जी जी,
0: वो प्रोग्राम जो था ऑडियंस के सामने था, अनाउंसमेंट हमें करना था कि, और उस समय के जो डीजी थे चटर्जी साहब हुआ करते थे वो आए थे, और वाधवा साहब थे वो डीडीजी थे। सुबह से उन्होंने इतनी रिहर्सल करवाई थी कि शाम तक जब एंड परफॉर्मेंस का टाइम था उस समय तक ये लगा। फिर बाद में उनका अब जाओ, मैं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, 26 नवंबर 1978 की बात है।
1: जी जी,
0: वो प्रोग्राम जो था ऑडियंस के सामने था, अनाउंसमेंट हमें करना था कि, और उस समय के जो डीजी थे चटर्जी साहब हुआ करते थे वो आए थे, और वाधवा साहब थे वो डीडीजी थे। सुबह से उन्होंने इतनी रिहर्सल करवाई थी कि शाम तक जब एंड परफॉर्मेंस का टाइम था उस समय तक ये लगा। फिर बाद में उनका अब जाओ चेंज करो और फिर आओ साड़ी वाड़ी पहन के। पहले तो वही बात है ना कि लिमिटेड चीज होती थी, अब देखा तो जो साड़ी हमने पहनी वो तो पीछे वाले रंग से मिल रही थी स्टेज के क्योंकि मैरून सी हमारी भी साड़ी थी और मैरून सा पीछे का पर्दा भी था। फिर अरे क्या, फिर जल्दी से घर से ब्लू कलर की साड़ी मंगाई, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के जब आए प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आ करके हम ड्यूटी रूम में बैठ गए दोनों पैर ऊपर उठा करके क्योंकि मैं पैरों में इतना दर्द। तब तक के माथुर जी थे उस समय, वो अंदर आए ड्यूटी रूम में, उनका वाह बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, कल इसकी छुट्टी करो ये रेस्ट करेगी, बहुत मेहनत करी
1: समझते थे।
0: वरना तो रिहर्सल के लिए भी आजकल जरा सी इतनी सी होती तो पूरा पूरा दिन दे दिया जाता है रिहर्सल के लिए, पहले नहीं मिलता था। ड्यूटी तो आप कर ही रहे हो अपनी
1: ड्यूटी के साथ
2: ममता जी, आकाशवाणी में बोलना ही एक काम नहीं है, आकाशवाणी से जो कुछ हम बोलते हैं उसमें हमारी संवेदना जुड़ी होती है, वो संवेदना जो होती है
0: वो बहुत
2: महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कहा नीना जी ने कि अगले दिन उनको छुट्टी दे दो, ये कोई छोटी बात नहीं है,
0: बहुत बड़ी चीज होती है।
2: अगर संवेदना से रहित हो जाए तो जीवन बड़ा व्यर्थ हो जाए।
1: जी जी, और रेडियो में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत संवेदनशील होते हैं क्योंकि आप यदि भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जो आप
2: कार्यक्रम कैसे करेंगे,
1: और जो बोल रहे होते हैं उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी तभी वो सजीव शब्द बनते हैं, वरना अक्षर है।
2: एक बात और ममता जी, मैं ज्यादा तो नहीं
1: जी, देखिए अभी नीना जी ने कहा था कि जब पहले बड़े महानुभाव आते थे जब वो बोलते थे तो उनको रोका नहीं जाता था, उसका धारावाहिक बना दिया जाता था या उसको किश्तों में बजाया जाता था।
2: आप हम लोगों को रोक नहीं रहे हैं,
1: मैं आपकी बात को किश्तों में बजाऊंगी, आप बोलती रहिए,
0: काम की बातें चुन लेना
1: ये सब बातें काम की है।
2: पिक्चर में अगर हॉरर सीन ना हो तो पिक्चर बेकार, मानती हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हमारे काम में भी हॉरर सीन आए हैं।
1: अच्छा,
2: मैं कार्यक्रम करती थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के, तो क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातचीत करके रिकॉर्डिंग करके लाना, ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं लखीमपुर गई, काम हो गया, एक बस मुझे मिली जो मुझे सीतापुर तक ले आई, और हमने सोचा सीतापुर से तमाम बसें जाती हैं, हम चले जाएंगे घर। हम सीतापुर आ गए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरा हो गया, कोई बस नहीं। उसके बाद एक सज्जन वहीं टहल रहे थे, सिगरेट हाथ में दबाए, हम अपने मन में सोच रहे थे आज तो शारदा तुम गए काम से। खैर बहरहाल, पान वाला जो बैठा था अपनी गुमटी में वो हमको देख रहा था, वो भी पता नहीं क्या सोच रहा था। बहरहाल हमने पान वाले से पूछा कि भैया आप कोई बस नहीं आ रही बहुत देर से, तो उसने कहा दीदी यहाँ अब कोई बस नहीं आएगी, अब सब बसें यहाँ से निकल गई हैं। तो उन सज्जन ने आके हमसे कहा कि देखिए मैं आपकी वजह से यहाँ टहल रहा हूँ, आप अगर उचित समझें, अगर आपको ये सही लगे तो मेरे साथ चलिए, पास में मेरे एक मित्र का घर है, आप वहाँ रुकिए, सवेरे आप चली जाइएगा। अब आप सोचिए कि मेरी मना स्थिति क्या होगी। हाँ। क्या सोचा होगा मैंने, मैंने कहा आप तो लगता है ये पिक्चर का जबरदस्त सीन आ रहा। बहरहाल
1: आपके मन में बहुत सारे
2: बड़े सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमने कहा हमें अब विश्वास तो करना पड़ेगा इनके ऊपर। उनके साथ हम गए, दरवाजे पर बड़ा बड़ा

0: लिखा था, घंटी मत बजाइए, यहाँ दिल का मरीज रहता है। अब आप सोचिए,
1: अब तो और भी शास्त्री जी की हालत बेकार,
0: अब और मेरी हालत बेकार,
2: उनकी दिल की अंदर घंटी बज रही होगी कि अब होगा।
0: बहरहाल मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल एक सज्जन ने दरवाजा खोला, उनको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां से आएंगे, इनकी बस कोई उनको मिल नहीं रही है, तो उन्होंने कहा आप आइए अंदर आइए। इतनी देर में उनकी वाइफ भी आ गई और 1:30 बजे रात में हमने उनके साथ खिचड़ी खाई और सवेरे 6 बजे की बस हमने पकड़ के लखनऊ आके दम लिया। अब आप सोचिए पूरी घटनाक्रम है मेरा।
1: शारदा जी के ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि ये फील्ड में बहुत जाती थी।
0: बहुत लोग कहते थे कि ये महिला अपने घर में कब रहती है।
2: मतलब रेडियो का प्रसारण सिर्फ माइक्रोफोन के सामने ही नहीं होता है, सिर्फ स्टूडियोज में ही नहीं होता है, उसके पीछे जो फील्ड का वर्क है।
1: स्टूडियो तो सबसे बाद में आता है, सीधी बात, जहाँ पर हम हैं वो बाद में आता है। हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना पका पकाया सामान आ जाता है, बस वो हमें आप लोगों को परोस देना है। हाँ। ये काम हमारा होता है और इनका काम सारी जगह से क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं।

0: होती है।
1: मतलब रेडियो का प्रसारण सिर्फ माइक्रोफोन के सामने ही नहीं होता है, सिर्फ स्टूडियोज में ही नहीं होता है, उसके पीछे जो फील्ड का वर्क है।
2: स्टूडियो तो सबसे बाद में आता है, सीधी बात, जहाँ पर हम हैं वो बाद में आता है। हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना पका पकाया सामान आ जाता है, बस वो हमें आप लोगों को परोस देना है, ये काम हमारा होता है। और इनका काम सारी जगह से क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं
0: उनकी सुन लेगा तो हमसे कहेगा कि तुम जाओ अपने महके चली जाओ, हमारे साथ मत रहो, आप हमारा नाम मत बताइएगा, ऐसे ऐसे लोग।
1: हाँ, और वो समय आपने देखा और उन जो महिलाओं की स्थिति रही होगी, उनका जो दुख रहा होगा, उसको आपने अपने कार्यक्रमों में लाए होंगे आप, है ना, और वो लोगों तक जब श्रोताओं तक पहुंचा होगा तभी वो कार्यक्रम जो है वो उनके दिल को भी छुआ होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम ने आपको भी छुआ था तभी आपने उसे बनाया। अब जो बातचीत हम आगे करेंगे आप दोनों से, उससे पहले शादा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ममता जी दीदार का आप कोई भी गाना बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तमाम गाने ही गाने हमारे आसपास हैं।
1: तो हम सुनते हैं गीत को, उसके बाद फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: वो भौजी हैं, हम नंद हैं, वो सास हैं, सुमित्रा जी, उस जी। तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम।
1: जब मैं रेडियो में आई हूँ उससे पहले ये परंपरा थी कि लोग अपना नाम नहीं बताते थे, उसके बाद नाम बताने शुरू हो गए और लोग जानने लगे इनका नाम ये है।
0: जैसे कृष्णा मिश्रा जी दाई बहरे बाबा रमई काका, हाँ, थे
2: जी,
0: उनका चंद्रभूषण त्रिवेदी नाम
2: जी,
0: था ना,
2: जी, हाँ।
0: तो उनका नाम नहीं, वो रमई काका,
2: हाँ,
0: बहरे बाबा ये था उनका
2: जी।
0: और वैसे ही दाई का, वैसे ही वो अर्जुन लाल जी,
1: अर्जुन लाल जी थे।
0: और
1: ये तो हम लोगों से भी बहुत पुराने समय
0: बहुत
1: के लोग हैं,
0: लेकिन आए आए तो थे ना, देखा तो
1: हमने, देखा उनको,
0: सबसे मिले
1: मिले उनसे, उनके कार्यक्रम सुने हम लोग। जैसे दाई ने जोर से कहा तो वो दाई से काका पलट के कहते कि अरे इतनी जोर से कहे बोलती हो, कहा हम इतने बहरे हैं
2: जी, बहरे बाबा का
0: नहीं, हमने तो मतलब लाइव उनके आइटम्स ऑन ड्यूटी रहे हैं
2: जी जी जी।
0: लोकायतन में एक दिन फिक्स था उनका, बहरे बाबा का आने का महीने में
2: जी।
0: ममता पुरानी और नए स्टूडियो की बात कर ली, चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि नए स्टूडियो में आने के बाद, फिर उसके बाद हम गए FM स्टूडियो,
2: अच्छा
0: इसी में बना, बहुत पहले वो लाइब्रेरी हम लोगों की हुआ करती थी, वहाँ पर FM स्टूडियो बना और FM का प्रसारण शुरू हुआ लखनऊ से
2: जी।
0: और उसमें भी अनाउंसर हम ही थे, हम और हमारे साथ में एक दिलीप थे, हम ही दोनों की ड्यूटी उसमें शुरुआत से
2: जी, जी।
0: तो ओपनिंग अनाउंसमेंट FM का हम ही ने किया था और जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ था वो प्रेक्षागृह में हुआ था
2: जी।
0: गन्ना संस्थान था,
2: FM रेनबो की बात कर रहे हैं।
0: हाँ, और ड्यूटी हम ही लोग करते थे पूरा, सुबह की हमने करी, शाम को दिलीप ने करी, दो ही अनाउंसर थे उसमें, हम ही लोगों ने ट्रेनिंग
1: शुरुआत हुई थी उसकी,
2: जी, जी,
0: उसकी शुरुआत
2: का जो, जैसे आज FM रेनबो और जो प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम है उनके थोड़ा स्वरूप में चेंज होता है, थोड़ा सा बोलने के ढंग में भी बदलाव रहता है, तो क्या आप लोग भी कुछ अलग ढंग से FM के प्रोग्राम पेश करते थे? या
0: उस समय तो स्क्रिप्टेड ही होता था। हमें अभी तक याद है कि FM इनॉग्रेशन हुआ, शाम को हुआ, फिर सुबह हमारी ड्यूटी थी, पहले भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम था तो सुबह सुबह ले शिव का नाम वाला भजन हमने बजाया था, कंपेयरिंग के साथ, पूरी कंपेयरिंग के साथ, आधे घंटे का, एक घंटे का था कुछ, अर्चना नाम था उसका कार्यक्रम का
2: जी जी।
0: तो इस तरह से होते थे और स्टाफ के ही लोग कर रहे थे शुरू में,
2: अच्छा।
0: ये कैजुअल अनाउंसर बाद में सब तैयार,
2: आरजेज आए वो बाद में आए। कभी श्रोताओं से कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हो, या कई बार लोग कहते थे कि वो बाहर अनाउंसर निकलते थे तो रात को भी श्रोता जो होते थे वो बाहर मिल जाते थे?
0: इसमें एक बार बताएं तुम्हें, एक बार हम गए थे, अनाउंसमेंट था आकाशवाणी का, नहीं था वो बाहर का, था लच्छू महाराज जी का
2: जी,
0: बहराइच में, उस समय गीत सुमन प्रोग्राम होता था और वो गीत सुमन प्रोग्राम हम करते थे, उसकी लिसनिंग अच्छी थी,
2: तारीफ,
0: हाँ, कंपेयरिंग के साथ पूरा करते थे, गाने बजाते थे, फिल्मी गानों पर आधारित होते थे ये। तो वहाँ पर बहराइच में क्या हुआ, कथक डांस का प्रोग्राम था और भी बहुत कुछ थे, तो एकदम बड़ा शोर मचा, किसी को पता लग गया कि गीत सुमन वाली नीना श्रीवास्तव
2: अच्छा
0: बोल रही, अब वो अनाउंसर को सामने लाओ, नया नया वक्त था वो, बताया ना 72-74 वाला समय था
2: जी,
0: वो
2: जी,
0: तो डर भी लगा, अरे बाप रे इतनी सारी भीड़ और इतना तेज शोर। तो उस समय जो DM थे वहाँ पे शायद सेठी साहब थे, शायद नाम इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक हमें याद है सेठी जी थे। उन्होंने कहा एक बार प्लीज आप अपने अनाउंसर को पर्दे के बाहर ले आए, और हम कहाँ आने वाले, वो पीछे स्टेज से निकल के गाड़ी में बैठे और अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ,
2: मतलब वो क्रेज जो आज लोगों के मन में फिल्मी कलाकारों के लिए होता था
1: उस समय, हम लोग थे
0: पहले उद्घोषकों के लिए, अनाउंसर्स के लिए या रेडियो से जुड़े लोगों के लिए होता।
1: आकाशवाणी कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई तो जब सभा समाप्त होती थी तो बाहर लोग खड़े रहते थे मुलाकात करने के लिए, तो हमारे स्टेशन इंजीनियर ने ये सख्त हिदायत दे रखी थी चपरासी को, गार्ड को, कि कोई भी अंदर नहीं आएगा और शारदा जी से कोई मिलने अगर आए तो वहीं उसको वापस कर दीजिए वहीं वापस कर दिए। और जब 15 मिनट बीत जाते थे तब हम गाड़ी में बैठ के अपने घर तक आते थे। ये उस समय था, ये उस समय रेडियो का क्रेज था, ये उस समय रेडियो का महत्व था जिसे हम लोगों ने देखा और समझा और उसको अनुभव भी किया
2: जी, जी।
1: तो नीना जी के पास ये खजाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे ख्याल से आज हम लोगों ने जो बातचीत की है तो शायद आधी पर्दी रह गई है, अभी बहुत सा बाकी
2: बहुत
1: है,
2: सारे अभी पर्दे खुलने
0: बाकी। ममता एक अपने प्रसारण का जो एक जिसको कहेंगे इंसिडेंट,
2: हाँ।
0: वो जरूर हम तुमसे शेयर करेंगे कि एक बार SOS खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं, पहले 6 बजे 6:05 एसे आते थे,

0: सखियों बचपन के दिन तो यूं भी भुलाए नहीं भूलते, और बचपन या उसके बाद की उम्र में तो बचपन और भी याद आता है। बचपन से याद आया कि अक्सर हमें घर में हमारे पुकारो नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि गोलू, रोलू, पिंकी, टिंकी, और आकाशवाणी में भी स्टॉक कैरेक्टर के नाम रखे जाने की परंपरा रही है। तो शारदा जी और रीना जी, ये बताइए कि आप लोग इस समय में क्या इस तरह के नाम रखे जाते रहे हैं?
1: पहले तो यही होता था ना, भौजी है, ये वो हाँ। है, वो उस तरह से सब
0: एक पात्र का नाम हुआ पात्र का नाम। आप क्या बनती थी शारदा जी?
2: मैं तो सिर्फ अपने नाम से ही जानी जाती थी।
1: शारदा जी तो अपने नाम, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी थी वो भानुमती भौजी थी, या अम्बेश्वरी श्रीवास्तव थी वो अम्बे जी थी, पनघट का नाम होता था अम्बे भौजी, नंद हम बनते थे शुरू में।
0: अच्छा,
1: इस तरह से आपस में ही सबका हो जाता था कि

0: तो वो करते थे हम लोग, 10 मिनट का होता था, बीच में न्यूज थी फिर उसके बाद 5 मिनट
1: अभी भी प्रसारित होते हैं।
0: तो वो हमने किया उसी में, कभी कभी ऐसा होता था कुछ ऐसे लोग आते थे, ड्यूटी ऑफिसर ने जैसे ही दिया बीच में दे देते थे कि उन्होंने कहा कि ये कर दो, जैसे ही एंट्री हुई तो हाँ। हमने फेडर ऑफ किया अपना, ये इसको कर दो, वो किया। और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन हमारा ऑफ हुआ, हम बाहर निकले, हमारी ड्यूटी जब खत्म हुई बाहर निकले तो एक बूढ़ी औरत थी और एक उनके साथ में लड़का था, वो एक छोटे से जैसे आजकल 250 ग्राम का डिब्बा होता है ना, तो उसमें पेड़ा या लड्डू कुछ ऐसा था, वो लेकर के स्टूडियो के उससे बाहर हम निकलते उस जगह पे बैठी हुई थी। उनका बिटिया तुमने कर दिया, हमारी वो मिल गई, मतलब वो तुरंत हुआ, इमिडिएटली हुआ और तुरंत वो ट्रेस आउट हो गया था। वो वाकई मतलब इसके पहले तक तो हम इतनी अहमियत नहीं देते थे। उस दिन हमें ये खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं का जो असली महत्व था, उसके पहले तक वो सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्म था जिसे हमें बोलना था
1: जी।
0: चार बोलने होते थे तो चार इधर बोले चार उधर बोले, उतना तक का एक काम रूटीन वर्क था। लेकिन उस दिन के बाद से उसकी अहमियत पता लगी
1: जी जी।
0: वो क्षण हमें आज तक याद
1: वो
0: है।
1: आपको बहुत सुखद क्षण लगा होगा कि आपकी एक उद्घोषणा से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया किसी को और परिवार मिल गया। तो सच में रेडियो जो में काम करना है वो सिर्फ एक कार्य नहीं है, एक कर्तव्य है हमारा। और कितनों का हम मनोरंजन करते हैं, कितनों के दिलों तक पहुंचते हैं, कितनों को सूचना पहुंचाते हैं, कितनों की जानकारियां बढ़ाते हैं, और जैसा कहा कि कितनों को हम मिला भी देते हैं, जोड़ते भी हैं। हम सब रेडियो से जुड़े हुए जो प्रसारण कर्मी हैं वो अपने काम को शिद्दत के साथ करें और आप लोगों से प्रेरणा लेकर करें कि कितना आप लोगों ने जो काम किया मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया और
0: इंजॉय करके करें। सबसे बड़ी बात है कि अपने काम को इंजॉय करें, जो हम आज भी कर रहे हैं। जैसे लोग बहुत होते अरे भाई ये नौकरी का वक्त ऐसा, लेकिन उसको तो हम लोग स्वर्णिम काल अपना
2: समझते हैं। नौकरी को नौकरी का
0: क्योंकि यहीं पर तीज है, यहीं पर त्योहार है, यहीं पर बर्थडे है, यहीं पर सब कुछ हम लोगों का हो जाता था।
1: तो अभी भी आप लोगों के पास तो मुझे लगता है कि जो यादें हैं वो बहुत सारी होंगी,
0: बहुत बहुत ढेर सारी।
1: यदि हम अलग अलग बिंदु पर टच करें छेड़े तो आपके पास नए नए
0: बहुत सारी
2: उब जाएगी सुनते सुनते।
1: हम नहीं उबेंगे, श्रोता भी नहीं उबेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विराम तो देना ही होगा अपने कार्यक्रम को। हमें जो हमने आपसे बातचीत की, नीना श्रीवास्तव जी, शादालाल जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपनी उन यादों को हमारे सामने रखा कि कब से रेडियो से प्रेम हुआ, कैसे कैसे आपकी यात्रा उनमें चली। पूरी यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही और रेडियो अभी भी आपके दिल में
2: जी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां मैंने अपने जीवन के इतने लंबे वर्ष गुजारे,
0: श्रेष्ठतम
2: है वो श्रेष्ठतम है
1: जी।
2: और लोग अक्सर अपनी नौकरी को, अपने काम को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहना
0: मैं
2: चाहती
0: नहीं हम हम कभी
2: हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।
0: आज भी हमें घर लगता है
2: कहीं कोई किसी किस्म से किसी प्रकार का कोई अफसोस हुआ हो। बहुत खुशी और बहुत सम्मान लेकर के हम लोग यहाँ से निकले
1: जी। तो आपने अपने काम को पूजा माना और उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जो ड्यूटीज दिए गए वो
2: काम को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहना
0: मैं
2: चाहती
0: नहीं हम हम कभी
2: हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।
0: आज भी हमें घर लगता है
2: कहीं कोई किसी किस्म से किसी प्रकार का कोई अफसोस हुआ हो। बहुत खुशी और बहुत सम्मान लेकर के हम लोग यहाँ से निकले
1: जी। तो आपने अपने काम को पूजा माना और उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जो ड्यूटीज दिए गए वो आपने निभाए और अभी भी आप रेडियो से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं और हम अपनी यादों को आगे
2: फिर साथ रहेगा
1: जी जी। रेडियो कहीं नहीं जाएगा हम सबके जीवन से। और आप दोनों स्टूडियो में आई और हमसे जो बातचीत की, यादों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: जी 11:45 का वक्त और अभी आपने एक खास श्रृंखला सुनी जो आज की आखिरी श्रृंखला थी आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में। जी हाँ, और अब मेरा मन कर रहा है कि एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मैंने लगा के रखा है वो भेजें आप तक। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।
1: Days are lucky because schools are giving additional water breaks. Sounds good, right? But nowadays, schools are off, summer vacations. So please make sure that your children are well hydrated. They are having water.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: जी 12:52 का वक्त, और दोस्तों देखिए अभी हम लोग ने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, इश्क बिना क्या जीना यारो। और सही बात तो है कि अगर इश्क नहीं है तो क्या है जीना। तो इश्क जितने, अगर आपने इश्क करा है किसी से तो बिल्कुल उसको इस शिद्दत से निभाइए। और इस प्यारे से गीत के बाद हम आपका एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। तो आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी ने सुना कि हम लोगों ने बात करी स्वयं सिद्ध महिलाओं से, तो दोस्तों कहते हैं मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बहाना ढूंढता है तो कोई रास्ता। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हाल ही में राष्ट्रपति जी से पद्मश्री लिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और वो है भारत की शेरनी हरमनप्रीत कौर भुल्लर। तो अभी बातें तो और भी आपसे करने के लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें।

तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं और ये जो गाना है ना उसके बाद हम बात करेंगे कि हरमनप्रीत ने क्या क्या किया।

तो 12:57 का वक्त, और देखिए ना आपके साथ ये जो ना साथ होता है आपका, बिल्कुल टाइम हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे चुटकियों बजाते ही टाइम निकल जाता है, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हरमनप्रीत कौर भुल्लर की, जिनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ था। घर में क्रिकेट का माहौल नहीं था, लड़की होकर लड़कों के साथ खेलने पर कई ताने भी सुनने पर हौसला इतना बुलंद था कि इन तानों का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। क्रिकेट का जुनून इतना था कि क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए घर से 30 किलोमीटर दूर एक एकेडमी जाती थी। बचपन में वीरेंद्र सहवाग की फैन थी, अनेक बाधाओं को पार करके क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान दिया, और उसी योगदान और नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपने दौर की सबसे प्रभावशाली और दमदार क्रिकेटरों में शामिल हरमनप्रीत कौर ने भारत को पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब दिलाया, और हरमन का एक सक्सेस मंत्र है जिसपे हम सबको भी अमल करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो हमें बस उसको कोशिश करना है, प्रयास करना है, और देखिए सफलता

एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो हरमन का जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि लोग हमेशा आपको जज करेंगे, लोग हमेशा आपको जज करेंगे, उन्हें इग्नोर करो, आगे बढ़ो और बेस्ट दो, वही करो जो तुम करना चाहते हो। तो इतनी प्यारी प्यारी बातों और इतनी इंस्पिरेशनल बातों के साथ अब समय कह रहा है कि प्रोग्राम स्वयं संध्या को वाइंड अप करना होगा यहीं पर। लेकिन अगला प्रोग्राम होठो पे तेरी बात में भी मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त शिखा। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत। आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत आप सबको सुनवाते हैं फिल्म पलकों की छांव से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, गुलजार के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत निर्देशन किया है और इस गीत को पसंद किया है गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मास्टर अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और इनके सभी साथी। इसी गीत में आप सबको भी साथ लेते हैं। आप हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी साथी। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रेफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार। तो आइए आप सबके नाम फिल्म पलकों की छांव से ये गीत।

0: जैसे
1: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं। आइए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म दो बदन से लता मंगेशकर की आवाज है और इस गीत को सुनना चाहते हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सोनिया अलकालका और इनके सभी साथी। इसी गीत में साथ लेते हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी। आप हैं मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके सभी साथी। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम और इनके तमाम हम नवा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार है पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो आप सबके नाम करते हैं दो बदन फिल्म से ये गाना।

अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आइए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम बॉम्बे टू गोवा और लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं एडवोकेट वानिस अली खान, शहबाज खान, शेमू खान, लियाकत रूबी और शहनाज खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। इसी गाने में आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं कासम कॉलोनी सनावत से, यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना और इनका पूरा परिवार। भाटापारा दतरंगी से हमारे साथी हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झाबेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा से यह गाना।

दोस्तों, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय अनुरोध गीत सुन रहे हैं। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें इस गीत को सुनना चाहते हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेना खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अनिल वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, आरोही इशिका और अंजलि श्वेता वर्मा। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनमदीबाद दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी और इनके सभी साथी, आसमा खातून अंसारी और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गाने में आपको भी साथ लेते हैं। आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से और डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर गोडवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी और भारत यादव ककराला बदायूं से हैं। ये पत्र हमें मिला है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रेम श्रीकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धार्थ गवाणकर, प्रणीता अर्जुन और टुकटुक, बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर और परी। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गाना।

दोस्तों अनुरोध गीत में आइए, अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम जीने की राह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी ने की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत को पसंद करते हैं जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल संगम, वैभव आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। इसी गीत में साथ लेते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, हाइशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुजताबा खान, रऊ भाई, शहीद भाई। गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवारीजन। ये पत्र हमें मिला है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का, पाकिजा रेडियो शतसंग वैष्णव कॉलोनी सनावत से। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफा कतरानी, तबस्सुम रुखसार, मोहम्मद आसिफ और इनके तमाम हम नवा। तो आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह से ये गीत।

फिल्म दाग से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आपको साथ लेते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और इनके सभी साथी। आप हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। पंचकूला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक, धींगड़ा और इनका पूरा परिवार। आप हैं दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सबके नाम फिल्म दाग से ये गाना।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर इस समय अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी सुनना चाहते हैं फिल्म कुली से यह गीत। आशा भोसले, शबीर कुमार और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और दोस्तों को भी साथ लेते हैं, रामचंद्र मखीजा, काफिर सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा और इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से।

अनुरोध गीत आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम है और आप इसके लिए पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001। अगला गाना जिसकी झलक अभी आपने सुनी फिल्म का नाम दाता। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें। असद भोपाली के शब्दों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और

सुनना चाहते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत में आपको भी साथ लेते हैं। कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, आप कहाँ से हैं? जगह का नाम आपने नहीं लिखा है। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी, माला, कमल सिंह, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू, शानू, बब्बन, मनु काना और हरिप्रिया ठाकुर। हमारे ये साथी चरडोगरी पपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू और इनका पूरा परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सबके नाम फिल्म दाता से ये गाना।

0: يخلي
1: بس تميس
2: ये आकाशवाणी बरेली एफएम 14.4 मेगाहर्ट्ज़ भरे समय आप सुन रहे हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम अनुरोध गीत है। फिल्म का नाम देश प्रेमी किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गीत सुनना चाहते हैं आप सब। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, इसी गाने में शामिल करते हैं आप सब। बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और इनके सभी साथी। आप है अस्तपुरा जिला मऊ, यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी और साजिद अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आजाद। आप सबके नाम फिल्म देश प्रेमी से ये गाना।

0: जाए पट्टी
1: क्या
0: है परेशान
1: हाथ छोड़।
0: आई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: चीकू
1: तब तो छोड़।
0: अरे एक बार पकड़े तो छोड़ते नहीं, उठा बोले जाते जालिम।
1: हट जा नहीं तो मारूंगी।
0: हल्लू हल्लू मार।

अनुरोध गीत में आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म दावा का ये गाना। विनोद महेंद्र के बोल, जतिन ललित का म्यूजिक डायरेक्शन। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सर गली सिगलापुर बरेली से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा और गौरव मौर्य। आपका पत्र हमें मिला है जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, ग्राम हिंगड़ी आलोट से, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार और पीयूष कुमार।

और अब दोस्तों आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम दलाल। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें बोल अनजान के धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, और आप सबके नाम करते हैं आज का ये आखिरी गाना। आप हैं छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक बरेली सी। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, खेमकरण, लक्ष्मी देवी, अंतु और इनके परिवारीजन। इसी गीत में आप सबको शामिल करते हैं एटा रोड, गंज डंडवारा, उत्तर प्रदेश, बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डीएच बच्चन और इनके सभी साथी, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, दीपल और हर्ष, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से आप हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने, बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा करवा। यह आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

और अब दोस्तों हमें भी चलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सफर रहा वो खूबसूरत रहा होगा, आपको आनंद आया होगा कार्यक्रम सुनकर। और हाँ, कुछ देर के लिए सही आप अपनी टेंशन को भूल गए होंगे। चलिए हम आप सबके सुख की कामना करते हैं। आज का ये सुरीला सफर यहाँ तक आपने तय किया अपने रेडियो हम सफर गजेंद्र के साथ। आगे का सफर आप तय करेंगे शीशपाल राजपूत जी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनिरुद्ध गीत गजेंद्र सिंह यादव के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीलम वर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब सुनते हैं सपना दीक्षित के स्वर में ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली जिसको गाया है जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आई श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

0: अदा पौडवाल की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 होने को हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई आपका कॉल।

0: लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं मेरे
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ,
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी, मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत।
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ, बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और
0: जी
1: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी

0: तो
1: देखकर
0: मैंने
1: आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग
0: नाड़ी
1: का पता लगा लेती हैं।
0: हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
1: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
0: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का

0: कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
0: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
1: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
0: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
1: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
0: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
1: अच्छा।
0: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
1: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
0: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
1: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
0: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं भी, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं
1: जी
0: ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं, और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े,
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा। जी
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर, लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी।
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है
0: ये बताइए कि गीत
1: जी।
0: कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम
1: हाँ
0: नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहां से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज उसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: माँ, माँ।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा
1: जी
0: रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वहां से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02224-0022-28670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02-2-400-24662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02-2-28670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का, वक्त की मार रिश्ते।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बज चुके हैं और ये समय है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने का। आज आकाशवाणी के दीवाने जो हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिनकी विचार हम आपको सुनवाएंगे, उनका नाम है सतीश अनेजा। आइए सुनते हैं उनके विचार।
3: नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब हूँ। आकाशवाणी बरेली का मैं बिल्कुल नियमित श्रोता हूँ और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही आकाशवाणी बरेली का बहुत दीवाना है, प्रोग्राम सुनता है और बड़ी खुशी महसूस करता है। सुख की अनुभूति होती है जब हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसका श्रेय तो सब उद्घोषकों को जाता है जिनकी मधुर वाणी होती है और वो हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज स्पेशल मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को, स्टेशन डायरेक्टर जी को, जो भी आकाशवाणी पर कर्मचारी काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, सबको मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा और परमात्मा से दुआ करूंगा भी ये हमारा जो मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है और ये सफ़र जितना 90 साल किया है तो ये सफ़र आगे भी बरकरार रहेगा, ये मुझे आशा है, क्योंकि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज मैं आपके सामने कुछ अपनी बात भी कर रहा तो ये भी मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है और हम आकाशवाणी के जरिए हमारे जो श्रोताओं में जो आपसे रिश्ते बने हैं उसका श्रेय भी आकाशवाणी को जाता है, क्योंकि कोई श्रोता किसी का नाम कहीं से आता है, किसी का कहीं से आता है, हम सोशल मीडिया के दूसरे से एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो हमारे ऐसे लगा लो रिश्ते बन चुके हैं और रिश्ते भी इतने मजबूत हैं, जो खून के रिश्ते हैं वो पीछे रह गए और हमारे जो रेडियो के परिवार के रिश्ते हैं ये आगे आ गए। तो इन सबका जो क्रेडिट है, सबका जो श्रेय है, जो स्पेशल और स्पेशल आकाशवाणी को जाता है और उसमें आकाशवाणी बरेली का बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ के जितने भी उद्घोषक हैं उनकी बहुत मीठी वाणी है, उनकी पेशकश प्रस्तुति बहुत अच्छी है जिसकी हम कायल हैं और बिल्कुल मैं उनको भी सलाम करूँगा, उनकी मेहनत को सलाम करूँगा और उनकी निष्ठा को सलाम करूँगा जो हम हफ्ते बनाए हुए हैं और बड़े शिद्दत से वो प्रोग्राम पेश करते हैं और शिद्दत से हम सुनते हैं। परमात्मा हमारा ये साथ ऐसे बनाए रखे और एक बार फिर से मैं सभी को, सभी श्रोताओं को भी और आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को सलूट मार के सलाम दूंगा और सलूट मार के बधाई दूंगा भी ये सफर हमारा ऐसे चलता रहे और परमात्मा हमारे अंग संग रहे और हमारा आकाशवाणी का नाम और भी विदेशों में भी गूंजे। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी की दीवाने और इस कार्यक्रम में मेहमान थे सतीश अनेजा, जिनके विचार आपने सुने। ये कार्यक्रम था आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR बरेली CBS

0: aibareli@gmail.com, एक बार फिर से सुन लीजिए aibareli@cbs.gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:05 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम एक विषय रखते हैं, उस विषय पर बात करते हैं हमारे श्रोताओं से और जानते हैं उनके विचार। और इसके साथ ही एक मौका और मिलता है हमारे श्रोताओं को जिनकी फोन कॉल नहीं लग पाती हैं, उनके लिए आकाशवाणी बरेली पेज पर हम इस विषय को अपलोड करते हैं और इस विषय पर कमेंट्स के माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता अपने विचारों को लिख भेजते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय हमने रखा, आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं, भूल जाने पर क्या करते हैं। साथियों, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई आजकल यूज़ कर रहा है, आपके मोबाइल में, आपके एटीएम में और आपका ईमेल आईडी है, सबके लिए पिन की ज़रूरत है, पासवर्ड की ज़रूरत है। साथियों, ये बहुत और इसको गोपनीय रखना बहुत आवश्यक है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसी विषय पर हमने आज बातचीत की कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं और भूल जाने पर क्या कर सकते हैं। तो इस बातचीत को आपको सुनवाएंगे, साथ ही शामिल करेंगे उन साथियों के विचार भी जिन्होंने हमें लिख भेजा है हमारी फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर इस विषय पर। तो पहले आपको सुनवाते हैं जो फोन पर बातचीत हुई हमारी श्रोताओं से। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं?
3: जी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब हूँ मैं इस टाइम।
2: सतीश अनेजा जी, क्या हाल चाल है आपके?
3: आपकी दुआओं से बिल्कुल बहुत अच्छे जी, बागो बाग है, बहुत खुश है।
2: बिल्कुल खुश रहिए और मस्त रहिए। बिल्कुल, ये बताइए चंडीगढ़ में कैसा है मौसम आजकल?
3: चंडीगढ़ में वैसे तो कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन कल से ठंडी हवाएं चल रही है चंडीगढ़ में, आज भी ठंडी हवा चल रही है।
2: अच्छा, सही है, ठंडी हवा।
3: धूप में भी जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी ज्यादा।
2: क्या बात है, तो मौसम सुहावना मौसम है कहने का मतलब।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: अच्छा सतीश अनेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं और भूल जाने पर क्या करते हैं।
3: सबसे पहली बात तो जो मेरे पासवर्ड या पिन होते हैं वो हमारे कोई बिल्कुल विशेष उसके अंक होते हैं, जिस तरह बर्थडे का संदेश हो गया, कुछ और हो गया
2: जी।
3: बाकी मैंने अपने मोबाइल के अंदर एक नोटबुक भी बना रखी है स्पेशल, और उसके अंदर मैं जब कोई भी पासवर्ड जब मैं अपना नया डालता हूँ तो उसके अंदर मैं नोट कर देता हूँ कल वो भूलना
2: जी,
3: वो बिल्कुल महफूज और सेफ रहते हैं वो
2: जी। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, लेकिन यह है कई बार किसी और के हाथ में मोबाइल लग जाए तो आपके पासवर्ड भी जा सकते हैं।
3: नहीं, ऐसा नहीं होता जी, फोन को फेस लॉक भी लगा होता है और हाँ, पासवर्ड लॉक फोन को भी लगा होता है, तो मेरा फोन तो मेरी घरवाली भी नहीं उठा सकती।
2: क्या बात है, नहीं ये बहुत जरूरी है आजकल सभी के लिए, है ना?
3: क्योंकि आजकल सर गोपनीयता जो है ना सबसे बड़ी आपकी जिंदगी में सार्थक होती है।
2: बिल्कुल,
3: आपने कोई भी चीज सार्वजनिक करती तो उसका
2: जी जी उसका दुरुपयोग हो सकता है
3: जी, जी, हाँ जी, हाँ जी।
2: तो सतीश अनेजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं को समझ में आएगी और जो ऐसा नहीं करते हैं वो भी इस बात पर ध्यान देंगे, है ना?
3: बिल्कुल।
2: और अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं आज?
3: गीत सर एक फिल्म दाग का गीत है, नी मैं यार मनाना।
2: ठीक है सतीश,
3: लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज का गीत गाया हुआ है।
2: ठीक है सतीश अनेजा जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: रामगोपाल मौर्य जी आपने कि इस तरीके के कोई विशेष नंबर अगर हम लेंगे तो हम उसको नहीं भूलेंगे, है ना। और एक चीज और भी है कि समय समय पर पासवर्ड हमको बदलते भी रहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर,
0: है ना, कुछ निश्चित समय अंतराल पे, तो ये भी बहुत जरूरी बात है। और आप बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: सर गीत सुनवा दिया, आज फिल्म का नाम है पृथ्वी और गीत के बोल है जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया।
0: ठीक है रामगोपाल मौर्य जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं?
1: नमस्कार सर, मैं रामगोपाल मौर्य, मौर्य बस्ती सुरखा बरेली से बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार रामगोपाल जी, क्या हाल चाल है आपके? अपने बारे में बताइए कुछ।
1: बिल्कुल सर, दुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद है और आपके साथ, अपने काम के साथ और कहीं ना कहीं रेडियो के साथ
0: जी
1: आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो रामगोपाल मौर्य जी बिल्कुल आनंद लेते रहिए और ईश्वर की कृपा जो है बनी रहे हमेशा आप पर और सभी पर, है ना
1: जी सर।
0: तो आनंद लेते रहिए, आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। और ये बताइए कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं और अगर भूल जाएं तो क्या करते हैं?
1: बिल्कुल सर, आज आपने जो ये टॉपिक रखा है, शायद कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी आती है, प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करने में बहुत ही आरामदायक या कहें तो बहुत ही लाभप्रद सवाल है आज का ये टॉपिक
0: जी,
1: कि हम अक्सर अपने पिन कोड या पासवर्ड को भूल जाते हैं। इसके लिए मेरा मानना है आप किसी स्पेशल बर्थ यानी कि जन्मदिन या कोई ऐसी डेट जिसको जो कि आप नहीं भूल पाते
0: जी जी जी,
1: या अपना किसी प्रिय का फोन नंबर या अपना पर्सनल नंबर, इस तरह के आप कोई भी पासवर्ड या पिन बना सकते हैं
0: जी,
1: जो कि आपको ऑटोमेटिकली याद ही रहेंगे, कभी भी अन्यथा नहीं भूलेंगे
0: जी। बिल्कुल ठीक बात कही है।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ।
0: सुल्तान रजा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है जिस पर हम आपसे बात करेंगे, वो है आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं, भूल जाने पर क्या करते हैं।
1: पासवर्ड जो है वो हमने एक कॉपी बना रखी है, छोटी डायरी है
0: जी,
1: वो पर्स में पड़ी हुई है, उससे शॉर्ट टर्म लिख रखा है, किसी को पता लगे कि पासवर्ड है इनका।
0: जी बहुत जरूरी है, मैं अभी यही कहने वाला था जी।
1: तुमने क्या लगे हैं उसके नंबर
0: जी, तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड याद रखते हैं।
1: याद रखते हैं, और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मिस हो गया अगर
0: जी
1: और नहीं खुला
0: जी,
1: तो बस जाते हैं फोन वाले के पास, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है
0: जी,
1: तो वो फिर खोलना पड़ता है, उसके पैसे दे के खुलवाते हैं।
0: अच्छा, और कुछ सारी चीजों में तो ये रहता है कि उसको वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, तो उस पे दोबारा से आप अपना नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, है ना।
1: ऐसा भी कर सकते हैं
0: जी, तो ठीक है सुल्तान रजा जी, बहुत अच्छी बात है। और पासवर्ड तो आजकल बहुत जरूरी है ही, है ना, अपनी चीजों को, अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। और साथ ही जरूरी ये भी है कि अपने पासवर्ड को लीक होने से कैसे बचाएं, किसी दूसरे के हाथ ना लगे,
1: हम अपने पासवर्ड को किसी को शेयर ना करें।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो अपना खास दोस्ती के नाम,
0: बिल्कुल
1: पासवर्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि पासवर्ड ने यूज कर लिया तो इस बारे में कहीं ना कहीं हम
0: हाँ तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सुल्तान रजा जी, और अब बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको।
1: गीत सर सुना रही है, जो गीत है मेरी ईद हो गई, चांद नजर आ गया, मुबारिका मुबारिका जो है।
0: ठीक है सुल्तान रजा जी, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी हम मौलागढ़ नई बस्ती खोजीपुरा बड़े
0: तरन्नुम अंसारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और आज के विषय के बारे में आपको फिर से बता देते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं, भूल जाने पर क्या करते हैं।
1: जी सर, वैसे तो हम अपने जैसे पासवर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं
0: जी,
1: इसलिए सरल नंबर डालते हैं और भूल जाते हैं, तो बहुत से टाइम में अपने आप की खोजते हैं, याद करते हैं कि क्या था क्या नहीं था, फिर घर में भी पूछ लेते हैं अपनी बहनों से, भाइयों से उन्हें पता होता है तो वो बता देते हैं, कभी भी भूलना।
0: आप अपने पासवर्ड जो है अपनी बहनों को शेयर कर देती हैं?
1: जी सर, हम बहन भाई आप एक दूसरे से शेयर कर देती हैं।
0: अच्छा,
1: अगर हम भूल जाए तो आपको याद रहे तो आप।
0: लेकिन ये तो बहुत वैसी पासवर्ड तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: जी सर, लेकिन घर में तो कर देना चाहिए क्योंकि घर में तो बहुत जरूरी है।
0: खैर, बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को आपका भरोसा है और इस तरीके से आप ये विश्वास बना रहे एक दूसरे के ऊपर, बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको शेयर करना ठीक नहीं होता है ना, तो आपने अच्छी बात कही, आपने कार्यक्रम में हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: जी सर, फिल्म का नाम है नसीब अपना अपना, ऋषि कपूर वाली, और गाने के बोल है जिंदगी की झूमती गाती बहारों में सनम मैं रहूं तुम रहो।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं सना खान बोल रही हूँ बरेली से।
0: सना खान जी आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आपसे ये जानना चाहते हैं सना खान जी कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं।

0: हैं, भूल जाने पर क्या करती हैं?
1: जी वैसे तो मुझे पासवर्ड याद है और भूलती तो हूँ नहीं, मुझे पासवर्ड तो याद ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है सारा खान जी कि आप अपने पासवर्ड इतना याद रखती हैं कि आप भूलती नहीं हैं और इतना विश्वास है आपको अपने आप पर। तो कुछ ऐसी ट्रिक हमें भी बता दीजिए जिससे हम भी ना भूलें पासवर्ड।
1: अपने दिमाग में और दिल में बसा कर रखो तो कैसे भूलेंगे आप पासवर्ड अपना।
0: अच्छा, तो आप कोई विशेष नंबर यूज करती होंगी पासवर्ड में जिससे मुझे लगता है कि नहीं भूलती होंगी?
1: जैसे मेरे घर में फैमिली है, मैं उनके नाम से पासवर्ड रख लेती हूँ, जैसे जो भी नाम होते हैं मेरे घर में मैं उनके नाम से पासवर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जो घर में फैमिली है मैं उनके नाम लेती हूँ तो वो पासवर्ड ही याद रहता।
0: बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी ट्रिक आपने निकाली हुई है, तो अच्छी बात है सना खान जी। और अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: जी मैं सुनना चाहूंगी सन ऑफ सरदार मूवी का सॉन्ग रानी मैं राजा।
0: ठीक है सना खान जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। कौन से श्रोता हमारे साथ हैं? जी नाम बताइए अपना।
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरजीत जी क्या हाल चाल है आपके?
1: काफी अच्छा, आप बताइए आप कैसे?
0: जी सब अच्छे हैं यहाँ भी। और अमरजीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं, और भूल जाते हैं तो क्या करते हैं फिर?
1: सर जैसे कि हम अपना

0: मोबाइल का या कोई अन्य चीज का पासवर्ड है, हम जैसे कि आजकल तो फोन में लगा ही रहे हैं
1: जी,
0: और बाकी सर हम जो है ज्यादातर याद ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब हमारे याद होगा तो हम कभी भी उसको डाल के खोल सकते हैं। खासतौर के हम एक डायरी में अपने पास जो हमारी डायरी होती है सर, उसी में एक्स्ट्रा लिख के रखते हैं, क्योंकि एक चोट को सर हम किसी भी अन्य पासवर्ड को डाल के भूल गए तो जब हमारी डायरी में लिखा हुआ होगा तो वो हमेशा याद रहेगा सर, कभी भी देख लेंगे
1: जी। कुछ पासवर्ड तो ऐसे होते हैं कि जो आप लिख सकते हैं डायरी में, लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं छोड़ा जा सकता, किसी और के हाथ अगर लग जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: तो इसमें सर ऐसा था जैसे कि ईमेल आईडी पर भी डाल सकते हैं सर अपनी जी, डाटा जो भी है।
1: हाँ, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमरजीत जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: सर मुझे आज गीत सुनना है, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, हमने निकला है फूल फूल।
1: ठीक है अमरजीत जी, आपको सुनवाते हैं, आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता आप ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं?
2: जिला मदानियों कस्बा दातागंज से मोहम्मद आसिफ खान बात कर रहा हूँ। सर पूरी आकाशवाणी टीम को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ।
1: आसिफ खान जी आपको भी सपरिवार ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या हाल चाल है आपके आसिफ खान जी?
2: सर बहुत बढ़िया है, ईद मना रहे हैं, बहुत अच्छी हाल चाल है।
1: बहुत खुशी की बात है, ईद मनाइए और खुश रहिए। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मोबाइल में हम लोग पासवर्ड रखते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी जिनमें पासवर्ड की बहुत आवश्यकता होती है, भाई एटीएम है उसमें भी पासवर्ड की जरूरत है, ईमेल आईडी उसमें भी जरूरत है, तो कई बार हम ये पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये बताइए आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं और भूल जाने पर क्या करते हैं?
2: सर भूल जाने पर सर जैसे हमारा नंबर का आखिरी कुछ अंक होते हैं, नंबर के आखिरी हम याद रखते हैं।
1: हाँ,
2: या हमने कहीं लिख के रख लिया, इस तरीके से हमें याद रहता है सर।
1: जी आपके कहने का मतलब है कि आप जो है अपने पासवर्ड कहीं लिख के रखते हैं किसी विशेष जगह और ऐसे पासवर्ड बनाते हैं जैसे अपने मोबाइल के शुरू के अंक हैं या आखिरी अंक हैं, तो जिससे आपको याद रखने में आसानी होती है।
2: जी, जी,
1: है ना? ठीक है आसिफ खान जी, ये तरीका भी अच्छा है कि ऐसे डिजिट हम पासवर्ड में बनाएं, ऐसे पासवर्ड बनाएं जो हमको याद रहेंगे, जैसे मोबाइल का नंबर है तो वो याद रहेगा, तो
2: जी, जी,
1: अच्छी बात है, याद रखने का ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आसिफ खान जी आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
2: अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना परवरदिगार आलम बेकसूर रहम।
1: ठीक है आसिफ खान जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। साथियों अभी आपने सुने जो हमारे श्रोताओं ने फोन कॉल पर अपनी बातचीत अपने विचार साझा किए और अब उनकी बारी है जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर अपने विचार लिख भेजे हैं। साथियों आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पर कि आप अपने पासवर्ड या पिन कैसे याद रखते हैं, भूल जाने पर क्या करते हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर अपने विचार लिख भेजे हैं, शामिल करते हैं आपको। ये हमारे श्रोता हैं उत्तरा दिवाकर जी, पता तो नहीं लिखा है और बस बताया कि गूगल में सुरक्षित रखते हैं। एक और हमारे श्रोता विनेश कुमार निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से लिखते हैं कि अपना पिन और पासवर्ड अपनी मेमोरी में रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। और मेमोरी में रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन हर कोई मेमोरी में नहीं रख पाता है, भूल जाते हैं कई बार, तो उनको समस्या आती है। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ जी और इनके साथी लिखते हैं कि पहले तो आपको नमस्कार, और लिखते हैं खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन पासवर्ड नहीं भूलते, वो हमेशा पासवर्ड और पिन अपने दिमाग में रखते हैं क्योंकि सुबह उठकर रात के भिगोए हुए बादाम खाते हैं। क्या बात है, आप बादाम खाते रहिए और अपनी मेमोरी को ऐसे ही तेज करते रहिए, रामकुमार रेवाड़ जी। और लाल मोहम्मद अंसारी जी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लिखते हैं कि हम अपना कोई भी पिन या पासवर्ड अपनी डायरी पे लिखते हैं ताकि कोई भी चीज़ वक्त आने पर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, आसानी से मिल जाए। गंगा सिंह रावत जी लिखते हैं मैं पासवर्ड और पिन को 5-6 महीने में बदल देता हूँ, मैं गाड़ी के नंबर और डेट ऑफ बर्थ को पिन नहीं बनाता, मैं एक डायरी में इनको नोट करके रख लेता हूँ, भूल जाने पर तुरंत नया पासवर्ड और पिन बना लेता हूँ। अच्छी बात है, ये भी ठीक है कि आपने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ और गाड़ी के नंबर को पिन नहीं बनाता, क्योंकि इसका अंदाज़ा कई बार लगाया जा सकता है। और ये हमारे श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी लिखते हैं मेरे साथ ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि कोई पासवर्ड भूला हूँ, और जो पासवर्ड याद रखना मुश्किल होता है उसे एक कागज़ में लिखकर फाइल में या ईमेल आईडी के ड्राफ्ट फोल्डर में सुरक्षित रखता हूँ। वैसे पासवर्ड भूलने पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है जिसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर फीड करके या मोबाइल नंबर डालकर OTP से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप का पिन भूलने पर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करके नया पिन सेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो हमारे अन्य श्रोताओं के भी ये काम आ सकता है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

श्रोताओं 5:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम लकी 3 कलाम ए शायर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:45 पर। युवाणी का समय रहेगा 6 का। हमारे ग्रामीण साथियों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा की जाएगी सड़क पर सावधानी से चलें इस विषय पर। साथियों की क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, विषय रहेगा तेज आंधी बारिश से हुए नुकसान के संबंध में। हमारी टीम पहुंचेगी ग्राम मोहम्मदपुर पथरा बरेली के ग्रामीण साथियों से बातचीत होगी। बातचीत करेंगे कृष्णवीर सिंह। 7 आपको सुनवाएंगे परिचर्चा, विषय है खेती बाड़ी एवं उन्नत पशुपालन। अनुरोध गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:31 पर। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। श्रोताओं कल प्रातः 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली। आठ का समय रहेगा लोकगीतों का। 9 हम आपको जोड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 का। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 10:05 पर। कार्यक्रम सबरंग सुन सकेंगे आप कल दिन के 11 से। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत। आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 1 से। जनमंच, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2 बजे। प्रतिभागी होंगे क्षितिज गेरा और ऋतिक राज सक्सेना।

कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रसारित किया जाएगा कल शाम 4:05 पर। 5:05 का समय रहेगा कार्यक्रम भजन संध्या का। हेलो बरेली, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह कल शाम 6:00। किसान वाणी, हमारे ग्रामीण साथियों का मनपसंद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी भूमि सुधार के उपाय इस विषय पर। साथ ही आकाशवाणी गांव में किसान के साथ होगा और सुनिएगा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार और सवाल। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 7:00 से, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। साथ ही सुनवाएंगे आपको क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

श्रोताओं अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा का गाया ये भजन।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। अभी आपने जो भजन सुना उसका स्वर दिया था हरिओम शरण ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर गाया ये भजन।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल के गाए इसी भजन के साथ भजन संध्या का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम लकी 3 का।

श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी पसंद के गीत लिख भेजिए। साथ ही ये लिखना ना भूलिएगा कि ये गीत आपको क्यों पसंद है। और हमारा पता है कार्यक्रम लकी 3 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली और हमारा पिन कोड है 243001। तो इस पते पर आप भी अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे इस लकी 3 कार्यक्रम में। अब पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमारे पहले लकी श्रोता जो हैं, ये हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य। इन्होंने अपनी पसंद का गीत लिख भेजा है और बताते हैं कि एक भक्त मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा है भगवान के सामने और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपने सबकी सुनी, अगर आप मेरी भी पुकार मेरी विनती भी अगर आप सुन लें तो मैं समझूं आप मेरे भगवान हैं और मुझ पर आपकी कृपा है। और इसलिए ये सुनना चाहते हैं इस लोफर फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी विनती सुनो तो जानू मानू तुझे मैं राम। इस विषय पर ये हमने आपको बताया कि इनको ये गीत क्यों पसंद है, कि ये भी भगवान से विनती कर रहे हैं और यदि इनकी विनती सुन ली जाएगी तो ये मानेंगे कि आप मेरे भगवान हैं और मुझ पर आपकी कृपा है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हमारे अगले लकी श्रोता हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई। लकी थ्री कार्यक्रम में आपने पत्र लिख भेजा है और अपने पसंद का एक गीत बताया है। फिल्म का नाम है सगाई और गीत के बुने खाक में मिला तो क्या फूल फिर भी फूल है, गम से हार कर बैठना आदमी की भूल है। क्या बात है। इस गीत को सुनने की वजह बताते हैं आप कि ये गीत क्यों पसंद है। आगे लिखते हैं, इंसान को परेशानी में कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए।

क्योंकि ना रहती है चांदनी हर दिन, ना अंधेरी ही रहती है। जो किस्मत जागती है वो दिन में भी दिन सो भी जाती है। दुख सुख तो इंसान के साथी हैं, ना हमेशा दुख रहता है ना हमेशा सुख, ये आते जाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बातें लिखी हैं कि ना दुख हमेशा रहता है ना सुख हमेशा रहता है, और ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, आती जाती रहेंगी हमेशा। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि डटकर इनका मुकाबला करना चाहिए। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी थ्री। दो लकी श्रोताओं के पसंद की गीत हम आपको सुनवा चुके हैं और ये तीसरे हमारे लकी श्रोता हैं परौली जिला बदायूं से रामरक्ष पाल मिश्र जी। ये लिखते हैं कि मैं सोच शब्द पर गीत सुनना चाहता हूं और गीत इन्होंने अपनी पसंद का बताया है फिल्म ब्लफ मास्टर से। गीत के बोल हैं, सोचा था प्यार हम ना करेंगे। इस गीत को सुनने का कारण इनका यह है कि लिखते हैं, प्यार किसी के सोचने से नहीं रुकेगा। किसी में अच्छाइयां हैं

दोष नहीं है तो फिर प्यार हो ही जाएगा। गीत बहुत अच्छा है, सुनने की बहुत इच्छा है इस गीत को। तो ठीक है राम रक्षपाल मिश्र जी, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज का लकी थ्री कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सभी ने हमें पत्र लिखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोता हमें पत्र लिखना चाहते हैं, लकी थ्री कार्यक्रम में सहभाग करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर से हम अपना पता बताए देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम लकी थ्री द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और हमारा पिन कोड है 2430001। अब कार्यक्रम में अधिक समय नहीं है, तो हमें दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लकी थ्री 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कलामे शायर।
1: हजरात, आज की आकाशवाणी बरेली से नशर की जा रही, आज इसमें जो शोराए कराम शिरकत कर रहे हैं, आइए मैं उनके अस्माए ग्रामी से पहले आपको रोशनास कराता हूँ। मैं नाचीज मोहम्मद अहमद खान बरेलवी, मेरे साथ में है जनाब लईक अहमद खान लईक साहब फरुखाबादी। आइए बाकायदा आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाता है। मैं इन चार मिसरों के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ कि

0: और लंबी उम्र की आरजू, कुल मिलाकर जिंदगी से क्या मिला? कुछ भी नहीं।
1: कुछ भी
0: कुल
1: नहीं।
0: मिलाकर जिंदगी से क्या मिला? कुछ भी नहीं। और देखिए कि एक खुददारी के लिए आती हैं हजारों मुश्किलें, एक खुददारी के लिए आती हैं हजारों मुश्किलें, और बीमारी ये लग जाए तो दवा कुछ भी नहीं, और बीमारी ये लग जाए तो दवा
1: तो
0: कुछ भी
1: दवा
0: नहीं।
1: कुछ भी
0: अब
1: नहीं।
0: बुरा वक्त आने से पहले संभल जाओ दोस्तों, बुरा वक्त आने से पहले संभल जाओ दोस्तों, तेज रफ्तारी से अपना कोई वास्ता नहीं, तेज रफ्तारी से अपना कोई वास्ता नहीं। अब देखिए कि चलना संभल के, ये टाइटल पे लिखा है कि हंसा मैं तो आंखों में आंसू छल के,
1: क्या बात है।
0: हंसा मैं तो आंखों से आंसू छल के, लगे गुदगुदाने मुझे ख्वाब कल के, लगे गुदगुदाने मुझे ख्वाब कल के,
1: वाह।
0: है बदले से तेवर हमारी गजल के, है बदले से तेवर
1: हमारी
0: हमारी गजल के, जवां हम हुए हैं मुसीबतों में पल के, जवां हम हुए हैं मुसीबतों में पल के, और जमाने के पत्थर सताने लगे हैं, जमाने के पत्थर सताने लगे हैं, मुसीबत में डाला है पेड़ों ने फल के, मुसीबत में डाला है पेड़ों ने फल के, और पतंगे पढ़ेंगे कसीदा तुम्हारा, पतंगे पढ़ेंगे कसीदा तुम्हारा, दिए की तरह देख लो तुम भी जल के, दिए की तरह देख लो तुम भी जल के, और यहाँ बदगुमानी के कांटे बिछे हैं, यहाँ बदगुमानी के कांटे बिछे हैं, ये दौरे सियासत है चलना संभल के, ये दौरे सियासत है चलना
1: चलना
0: संभल
1: संभल
0: के,
1: के। वाह।
0: लईक गुल चिरागों को रोकने के खातिर, लईक मक्ता है देखिए कि लईक गुल चिरागों को रोकने के खातिर, हवाओं में देखे हैं तेवर बदल के, हवाओं में देखे हैं तेवर बदल के, हवाओं ने देखे हैं तेवर बदल के। अब मेरे साथी जनाब अमन जी आपके
1: आइए
0: सामने
1: हजरत,
0: पेश है खिदमत।
1: सोचता हूँ कि मैं भी इस सफर में जनाब लईक साहब के साथ चंद कदम तक चलकर देखूं। एक मतलब से आगाज करता हूं कि पहले खुद अपने आप को पहचाना कीजिए, पहले खुद अपने आप
0: क्या
1: को
0: बात है,
1: पहचाना कीजिए,
0: क्या बात है अमन साहब, क्या बात है, वाह वाह,
1: फिर दूसरों के ऐबो हुनर जाना
0: क्या बात
1: कीजिए।
0: है,
1: शुक्रिया कि पहले खुद अपने आप को पहचाना कीजिए, फिर
0: वाह
1: दूसरों के ऐबो हुनर जाना कीजिए। एक मतलब और याद आता है, वो भी अर्ज कर देता हूं कि जिंदगी जुर्म के एहसास से डर जाती
0: क्या
1: है।
0: बात है, जिंदगी जुल्म के एहसास से डर जाती है,
1: जिंदगी जिंदगी जुर्म के एहसास से डर जाती है, अपने आमाल पा जब अपनी नजर जाती
0: क्या
1: है।
0: बात है, जिंदगी को आईना दिखाया आपने, वाह वाह वाह,
1: जिंदगी जुर्म के एहसास से डर जाती है, अपने आमाल पा जब अपनी नजर जाती है। और चार मिसरे और समाप्त कर लें कि शोर बरपा है आबगीनों में,
0: क्या बात है,
1: शोर शोर बरपा है आबगीनों में, दिल नहीं लगता अब सफीनों में।
0: क्या बात,
1: इसलिए काट दी आस्ती हमने,
0: इसीलिए काट दी आस्ती अपने,
1: इसलिए काट दी आस्ती हमने, सांप पलते हैं आस्तीनों में,
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह
1: सांप पलते हैं आस्तीनों
0: वाह वाह
1: में।
0: वाह वाह,
1: चार मिसरे और हाजिर करता हूं, फिर उसके बाद एक मुकम्मल गजल।
0: बेशक,
1: मतलब यूं अर्ज किया कि वफा के नाम पर अब ये भी सौदा कर लिया जाए,
0: क्या बात है, वफा के नाम पर अब ये भी सौदा कर लिया जाए,
1: वफा के नाम पर अब ये भी सौदा कर लिया जाए, चलो फिर से जमाने पर भरोसा कर लिया
0: क्या बात
1: जाए।
0: है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूबसूरत,
1: वफा के नाम पर अब ये भी सौदा कर लिया जाए, चलो फिर से जमाने पर भरोसा कर लिया जाए। परिंदो जीस्त का अपनी तहफ्फुज है इसी सूरत।
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: शायरी इशारे और कनायों का नाम है, शेर समाप्त करें कि परिंदो जीस्त का अपनी तहफ्फुज है इसी सूरत, किसी मजबूत डाली पर बसेरा कर
0: क्या
1: लिया,
0: बात है, बहुत खूबसूरत,
1: किसी मजबूत डाली
0: किसी
1: पर
0: मजबूत
1: बसेरा
0: डाली पर
1: कर लिया
0: बसेरा कर
1: जाए।
0: लिया जाए,
1: एक गजल के चंद अशआर और समाअत मुलाहजा फरमाएं। मतलब यूं कहा है कि अंधेरों में जो खुद बैठा हुआ है, अंधेरों में वो खुद बैठा हुआ है, उजाला जो सभी को बांटता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: समर जाओ हमारे पास आकर, हमारा दिल मुकम्मल आईना है, कि हमें माजी हमारा याद आया,
0: क्या बात है,
1: हमें माजी हमारा याद आया, किसी ने फिर हमें अपना कहा है।
0: क्या बात है,
1: जरूरत थी कहाँ बरसा कहाँ पर, जरूरत थी कहाँ
0: और बरसा
1: बरसा
0: कहाँ
1: कहाँ
0: कहाँ पर,
1: पर, ये बादल भी सियासी हो गया
0: क्या
1: है।
0: बात है, वाह वाह, ये बात,
1: जरूरत थी कहाँ बरसा कहाँ
0: हाँ
1: पर,
0: पर
1: ये बादल भी सियासी
0: सियासी
1: हो
0: हो गया,
1: गया
0: क्या बात
1: है,
0: है,
1: ये बादल भी सियासी हो गया है। और आखिरी शेर कि खुदा महफूज रखे उस बशर को,
0: खुदा
1: खुदा
0: महफूज रखे
1: महफूज रखे उस
0: उस
1: बशर
0: बशर
1: को,
0: को,

0: जहां में जो भी दुश्मन अमन का है, खुदा महफूज रखे उस बशर को।
1: क्या बात।
0: जहां में जो भी दुश्मन अमन का है, आजाद अगर इजाजत हो तो ये गजल के दो तीन शेर तरन्नुम से समाप्त कर लें। मतलब यूं अर्ज किया है कि

0: वाह वाह वाह वाह,
1: हम खुद फरेब जलवैम काम आ
0: नहीं, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मंत्र।
1: हम खुद फरेब जलवे इमका में आ गए। और शेर समाप्त कर लें, वो

0: आज की ये शेरी नशिश्त वक्त पूरा हुआ चाहता है, इसलिए यही इख्तिताम पजीर होती है। और जिन हजरात ने आज की नशिश्त में शिरकत की है, एक मरतबा फिर उनके अस्माए गिरामी से आपको रोशनाश करा दूं। जनाब लईक खां साहब लईक फरखाबादी और ये नाचीज मोहम्मद अहमद खान नुबरी।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कलाम ए शायर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम युववाणी का।

कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी कर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। साथियों नमस्कार, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त शीशपाल। साथियों कार्यक्रम युववाणी में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आज का सवाल कुछ खास है। आज तो कुछ खास तो आज यही है कि आज आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे यानी शीशपाल के साथ, और आज का सवाल हम आपसे पूछे लेते हैं, आप उत्तर

सोच कर रखिएगा, इसका उत्तर हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तो आज का सवाल है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत।

0: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। साथियों, चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो है कुछ खास है आज। तो साथियों, आपको बता दें कि आज खास क्या है। आज खास है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है। ये बहुत खास है अपने आप में। साथियों, आपको इसके बारे में बता दें कि संयुक्त

0: भागी बने।
1: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। साथियों चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो है कुछ खास है आज। तो साथियों आपको बता दें कि आज खास क्या है। आज खास है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है। ये बहुत खास है अपने आप में। साथियों आपको इसके बारे में बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने वाले सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक विभिन्न देशों में युद्ध, हिंसा और अशांति से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे संघर्ष को रोकने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों में से एक है। भारतीय सैनिकों ने अनेक मिशनों में अपनी बहादुरी और सेवा भावना का परिचय दिया है। इस दिन उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये दिवस हमें शांति, सहयोग और मानवता के महत्व का संदेश देता है तथा विश्व में भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। साथियों, हमने आपसे पूछा था आज का सवाल और इसका उत्तर हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। सवाल एक बार फिर से आपको बताए देते हैं। सवाल है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और इसके बाद बात हुई कुछ खास है आज इस विषय पर। और अगला सेगमेंट हमारा है नजरानाए शाम। नजरानाए शाम में साथियों आपको सुनवाते हैं हम कव्वाली और गजलें। तो आइए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ।

साथियों, कल आपके मोबाइल पर भी अलर्ट आया होगा, कल भी आज भी, कि अगले कुछ घंटों में आपके इलाके में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेज़ तूफान के झोंके आ सकते हैं और तेज़ बारिश व ओले गिरने की भी संभावना है। साथियों, कल बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, आज भी ऐसा अलर्ट आया और आगे भी आशंका अगर ऐसी रही तो आएंगे, तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। साथियों, बहुत से साथियों को देखा मजाक उड़ाते हुए या कहते हुए कि अरे भाई आया नहीं और मैसेज तो इतना बड़ा आ गया, लेकिन ये भेजा जाता है हमारी सुरक्षा के लिए कि हम सब लोग सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो इसको जब भी ऐसा अलर्ट आपके मोबाइल पर आता है तो गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप सुरक्षित स्थान पर पहुँचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। उम्मीद है आप सबने इसका जवाब निकाल लिया होगा, सोच लिया होगा, तो इसका जवाब हम बताए देते हैं। इसका सही जवाब है चेन्नई। साथियों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। और अब कार्यक्रम में समय अधिक नहीं है, तो अब दीजिए मुझे यानी शीशपाल को कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मौसम थोड़ा सा बदलू है तो कहूँ ना कहूँ जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बस राहत मिली है। और कार्यक्रम लेके आज उपस्थित हैं हम आपके बीच में, थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे और आपके मनोरंजन के लिए मधुर मधुर लोकगीत भी आपको सुनवाएंगे। साथियों थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे कि इस समय मौसम भी खराब हो जाता है वो अचानक से, और वैसे भी सड़क पर जब भी चलें तो सावधानी से चलें। आज जब हम रास्ता में आ रहे तो हमने देखी कि एक साथी घास की गठरिया रख के सिर पे और मोटरसाइकिल से चला के आ रहे हैं, तो उन्हें एक हाथ से ही हैंडल को थामे हो और एक हाथ से अपनी गठरिया को पकड़े हुए है। तो कितनी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अचानक से कभी भी दुर्घटना होने की संभावना हो सकते कि ना हो सकते, आप बताओ जा बात। तो जाहे कि हमें पूरी सावधानी के साथ ही सड़क पर चलने हैं, चाहे तो बात है मोटरसाइकिल चलान की या फिर इस समय जो मौसम अचानक से खराब हो जाते हैं वो, तो जो पूरा ध्यान रखें कि रोड पर जब भी चल रहे हैं तो आप पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। जरा सोचें कि हम पेड़ के नीचे खड़े हैं तो सुरक्षित हैं, जरा सी असावधानी भवन पे ही अगर तेज हवा आई तो आप देख रहे हो कि पूरी डूंगी की डूंगी टूट के आपके ऊपर गिर सकेगी। तो बहुत ही सावधानी रखन को समय है, जब सावधान रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। साथियों बातचीत आपसे करत रहेंगे लेकिन अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक लोक भजन, शकुंतला श्रीवास्तव।

कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सब साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप सबको आपके अपने साथी कृष्णवीर सिंह की राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन कल से जब

साथियों, अभी आपने सुनो जो मधुर लोक भजन शकुंतला श्रीवास्तव के स्वर में। और भैया बहनों, शुरू में हम बात कर रहे हैं आपसे कि जो मौसम लगातार बदल जाता है, वो अचानक से बहुत तेज आंधी, बहुत तेज बारिश, या कहूँ कहूँ तो कल ओले भी पड़े हैं। और बात करें, आप सब ने अपने मोबाइल पर देखो होगा कि रात में 10 बजे के आसपास एक अलर्ट भी आया है कि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश या आंधी और फिर संग में ओले।

0: पड़ने की भी संभावना है। तो ये सब सावधानी की बातें हैं, आपको वो अलर्ट देख के सावधान हो जाने हैं, और आपके अपने जो भी कहीं अगर बाहर हैं, कहूँ से आ या जा रहे हैं, तो आप उनको जरूर समझाएं कि भैया इस तरह से आपको सावधान देने हैं, ऐसे अलर्ट मोबाइल पे आओ है। तो ऐसी ही एक बातचीत आज हमें गाँव में पहुंची और हमने वहां पर जाके करी है। तो कौन से गाँव पहुंचे हैं, क्या क्या बातचीत भई है, चलो आपको सुनवा रहे हैं। ग्रामीण साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय भीषण गर्मी का समय चल रहा है और आज 29 तारीख है मई महीने की। ये जो समय है इसमें नौतपा के बारे में हम सब जानते हैं, नौतपा का समय चल रहा है। नौतपा में यही है कि 9 दिन का ऐसा समय जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इस बार ये समय जो है वो है 25 मई से 2 जून तक का समय। गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन कल से मौसम बदला है थोड़ा सा, और मौसम बदला है तो बहुत तेज आंधी और बारिश भी कुछ क्षेत्रों में हुई है। मोबाइल पर सभी के एक अलर्ट भी रात में आया था कि बहुत तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने की भी संभावना व्यक्त करी गई थी। तो हमारे जो ग्रामीण साथी हैं, किसान साथी हैं, उन सब ने सावधानी बरती है। तो यही सब जानने की किस तरह से मौसम बदला है और क्या नुकसान जब बार बार आंधी आती है और तेज बारिश होती है तो उससे होते हैं, यही सब जानने हम एक गांव में पहुंचे हैं अपने ग्रामीण साथियों से बातचीत करने। तो गांव का क्या नाम है, उससे पहले हम ये बताएं कि एक पागड़ का पेड़ है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से ग्रामीण साथी बैठे हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पर कितनी भी ज्यादा गर्मी होती होगी फिर भी एक राहत रहती है यहाँ पर, क्योंकि पाकड़ का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है अपने आप में और छाया उसकी बहुत घनी होती है। तो एक साइड से यहाँ पर जो किसान साथी हैं, ग्रामीण साथी हैं, उनके पशु भी बंधे हैं, और यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है, होम्योपैथी का चिकित्सालय भी है। तो ये बहुत सब चीजें यहाँ पर हैं, यहीं पर हैं हमारे साथ ग्रामीण साथी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका?
1: हमारा नाम राजू है
0: जी। राजू जी, आप बताइए कि इसी गांव के निवासी हैं?
1: जी,
0: कौन सा गांव है ये?
1: ग्राम मोहम्मदपुर पथरा।
0: ठीक है, तो आप बताओ कि जो गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, और कल से जब मौसम थोड़ा सा बदला है, तो कैसा महसूस हो रहा है?
1: थोड़ी राहत मिली है, गर्मी कम हुई है, आज हवा भी चल रही है, पसीना कम आ रहा है, ज्यादा पंखे की आवश्यकता नहीं है, खुले में बैठ सकते हैं।
0: सही बात है। अच्छा, अब तक जो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो किस तरह से आपकी दिनचर्या थी, किस तरह से ध्यान रख रहे थे अपना?
1: ध्यान क्या रख रहे थे, जब कोई काम होता था घर से बाहर निकलते, बंदा अंदर लेटे रहते, या फिर पेड़ के नीचे छायादार वृक्ष के नीचे बैठते।
0: छायादार वृक्षों का होना कितना जरूरी है आप गांव में?
1: बहुत जरूरी है, जैसे पीपल का पेड़ है, पाकड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ऐसे पेड़ जरूरी है।
0: तो अगर हम बात करें आपके गांव की, तो किस तरह के पेड़ ज्यादा हैं आपके गांव में?
1: हमारे गांव पाकड़ भी है, नीम भी है, बरगद भी है, पीपल भी है।
0: अच्छी खासी संख्या में पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, हम घूमे हैं एक दो गली आपके गांव की। तो गांव का जीवन तभी अच्छा लगता है जब गांव में वो सभी चीजें हों जिनसे गांव को जाना जाता है ना। अब धीरे धीरे गांव में भी पेड़ों की संख्या कम हो रही है।
1: हाँ, आंधी से काफी नुकसान हुआ है, काफी पेड़ उखड़ गए थे, पिछली बार आंधी आई थी, कम से 7-8 पेड़ उखड़ गए थे बड़े बड़े।
0: और क्या परेशानी हुई जब आंधी आई या तेज बारिश हुई तब से?
1: बारिश का 2 मकान की दीवारें गिर गई, एक भैंस के चोट लग गई।
0: अच्छा, तो काफी नुकसान हुआ है। और जब जब बहुत तेज आंधी आती है तब कहीं ना कहीं जो विद्युत व्यवस्था है, बिजली की सप्लाई है, वो भी प्रभावित होती है, कई जगह खंभे टूट जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ गांव में आपके?
1: गांव में खंबे भी उखड़ गए थे, तार भी टूट गए थे, बिजली की सप्लाई तो अभी तक नलकूपों की नहीं हो पाई है, काफी समस्या है, फसलें सूख रही हैं। गांव की तो जुड़ चुकी है, गांव में आ जाती है करीब बत्ती, करीब 10 घंटे, कभी 9 घंटे, दिन में नहीं हो रही है सप्लाई, दिन में 2 घंटे 1 घंटे हो रही है बस।
0: अच्छा, रात के बारे में बताइए, जो रात बीती है मौसम कैसा रहा था आपके यहाँ? बारिश हुई थी तेज या नहीं हुई थी ज्यादा तेज?
1: बारिश होती नहीं होती, हवाएं चली थी, पर वो भी हवा हल्की थी, मतलब ठंड रही थी बस।
0: अच्छा,
1: हाँ, नींद सही आई।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा रहती है तो हर कोई ये शिकायत करता है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और मौसम जब सुहावना होता है बारिश हो जाने के बाद, या कहीं बारिश हो जाए तो उसके बाद और क्षेत्रों में जब हवा चलती है तो ठंडा महसूस होता है। यही हुआ आपके
1: हाँ,
0: साथ?
1: यही हुआ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो समय है, मौसम विज्ञानियों का ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में मौसम थोड़ा सा खराब होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तो इसका फसलों पर क्या असर रहेगा?
1: जब कोई कभी बारिश हुई, ज्यादा तेज हुई है,

0: बाढ़ से तो कोई नुकसान ना हुआ है, जब हवाएं बहुत तेज चलती है ज्यादा नुकसान होता है।
1: सही बात। और इस मौसम में हवा तेज चलने यानी आंधी आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, भाई तेज हवा चलेगी नुकसान होगा ही होगा,
0: चाहे कम हो या ज्यादा हो।
1: राजू जी, बातचीत हुई आपसे और आपने अपने अनुभव साझा किए इस गर्मी को लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और ग्रामीण साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है साहब आपका?
2: मेरा नाम मूलचंद
1: जी। मूलचंद जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हम गांव पहुंचे हैं आपके, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप आए हमारे यहाँ
1: जी,
2: और हमारे यहाँ आने के बाद में आपका स्वागत है।
1: बिल्कुल,
2: हमारे गाँव कोई समस्या आए आप आए यहाँ देखेंगे आप।
1: गर्मी बहुत ज्यादा अब तक हो रही थी और रात से थोड़ा सा मौसम बदला है, तो अब तक का जो मौसम था गर्मी का कैसा महसूस कर रहे
2: थे? बहुत महसूस कर रहे थे उसे। हाँ। बच्चे भी परेशान थे, जानवर भी परेशान थे, और भी सब लोग परेशान थे गर्मी की वजह से, और 10 बजे के अंदर हो गए, फिर उसके बाद सारे दिन निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी गर्मी की वजह से।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: बच्चों को भी संभाल के रखना था, अपना भी सुरक्षित रखना, पशुओं को भी रखना, और अब यह है रात में से थोड़ी सी राहत मिली है।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज आंधी और बारिश और साथ में ओले भी गिरे हैं, तो आपके इधर कैसा रहा मौसम?
2: नहीं साहब, हमारे यहाँ ओले ओले नहीं गिरे, हल्की बारिश भी हुई है।
1: अच्छा,
2: हवा तो चली है खैर, लेकिन खास ऐसे नुकसान वाली कोई सौदा हमारे यहाँ नहीं हुई।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की जब समस्या बढ़ जाती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
2: नुकसान होता है
1: ना
2: जी।
1: जो पिछली बार आंधी आई थी, क्या आपके क्षेत्र में आई थी?
2: बिल्कुल आई थी, हमारे यहाँ नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है उससे।
1: अच्छा
2: जी, 29 तारीख को आई थी आंधी, और 29 तारीख से आज तक लाइन नहीं जुड़ पाई है बिजली की।
1: अच्छा,
2: खम्भे गिर गए, टूट गए, लाइन नीचे पड़ी है, अभी तक कोई उसमें नहीं है, फसलें खड़ी सूख गई। एक भैंस जो पेड़ का जो मतलब जो था वो गिर गया था भैंस के ऊपर, वो भैंस बेचारी अजल है बिल्कुल।
1: अच्छा,
2: और उसकी इलाज भी हो रहा है, डॉक्टर लोग इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भैंस खड़ी नहीं हो पा रही है, और भैंस थलक रही है, गाभिन भैंस भी आने के लिए है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, उसे खड़ा करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, न खड़ी हो पाती है ढंग से, न कुछ खा पा रही है चारा।
1: जब लाइट की व्यवस्था सही नहीं हो पाई है, बिजली ठीक से नहीं आ पा रही, तो फसलों को भी तो नुकसान है।
2: फसलों को नुकसान है साहब, बहुत फसल खड़ी सूख गई।
1: अच्छा,
2: बिल्कुल सूख गई, मक्का खड़ी सूख गई, जानवरों का चारा था, चरी थी, वो सब सूख गई खड़ी।
1: अच्छा,
2: कोई कुछ नहीं है, अब पौधों में डाला है, उन्हें करें कुछ भी नहीं, उनका कोई इंतजाम नहीं है आगे वाली फसल का, क्योंकि बत्ती नहीं है, तो साहब उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसी ऐसी लोग बैठे हैं अभी।
1: सही बात है, इस ओर तो ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो भी संबंधित विभाग है, उसके अधिकारी हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखिए, जो एकदम से स्थिति बनती है, मौसम की दशाएं बिगड़ती हैं, तो उस पे तो किसी का भी कोई बस नहीं है, लेकिन एक महीना बीत जाना और उसके बाद भी अभी तक बिजली की व्यवस्था सही नहीं हो पाना, किसान साथियों के लिए तो काफी नुकसान हो ही जाता
2: नहीं,
1: है।
2: एक बात और भी थी कि इसके बारे में हम लोगों ने ये भी कहा था कि मिलके हम लोग भी साथ देंगे उन लोगों का।
1: हाँ।
2: लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई तवज्जा नहीं दिया है।
1: अच्छा।
2: हम लोग खुद राजी थे उसमें कि हमारा भाई फसल दुख रही है, चलो हम लोग भी इनके साथ में लग जाएंगे, ये हम जानते हैं कि एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता, 10 जगह नहीं कर सकता काम के हिसाब से, बोले हम लोग भी लग जाते उसे करने के लिए, जिस तार खींचना है कहीं पर हम लोग खिंचवा लेंगे, गाँव वाले अपने मिलके, उनमें से एक दो आदमी आ जाए, भाई ये चीजें करने के लिए हम लोग तैयार थे, फिर भी कोई इसकी सुनवाई नहीं।
1: बिल्कुल बात सही है।
2: अब इससे तो मान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान है, अब जिसने फसल करी है अपनी इस टाइम पे, बीज बल्लल डाला, सब कुछ किया है, मक्काएं खड़ी हैं, देखो आप देख लेना खुद जाके मोबाइल में, आप देख लेना नजर से देखना जाके कितनी खड़ी फसलें सूखी है, और लाइन भी आपको दिखाई देंगे टूटी पड़ी है लाइन, 29 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, आज तक लाइन नहीं चली है।
1: तो हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे आप सब गाँव के लोगों के माध्यम से कि जो व्यवस्था बिगड़ी है बिजली ठीक से नहीं चलने की, विद्युत की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामवासी किसान साथी अपना सभी काम ठीक समय पर कर सकें। आपसे बातचीत हुई मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ग्रामीण साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका?
3: डॉक्टर सुरेश चंद्र
1: जी। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, क्या काम मुख्य रूप से देखते हैं आप?
3: हम अपना खेती बाड़ी भी करते हैं और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं।
1: बहुत बढ़िया, तो पशु चिकित्सा का जो काम देखते हैं, कब से कर रहे हैं इस काम को?
3: हो गए लगभग 10 साल।
1: 10 साल, ठीक है। तो आपने इस कार्य को जब शुरू किया तो प्रशिक्षण कहाँ से लिया था?
3: प्रशिक्षण डेयरी विभाग से लिया।
1: तो आपसे महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इस समय हमारे पशु भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम सभी चाहे तो छायादार स्थान पर बैठकर या बिजली के पंखे चलाकर या कूलर चला करके अपना समय काटते हैं, लेकिन पशुओं को एक सीमित

0: ही संसाधन होते हैं उन्हें सुविधाएं देने की, कौन कौन समस्याएं पशुओं को हो जाती हैं?
1: पशुओं को गर्मी में समस्याएं अधिकतर गर्मी से होती हैं और किलनी वगैरह भी ज्यादा होती है इस समय। पशु स्ट्रेस में रहता है गर्मी की वजह से, इसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं
0: जी।
1: तो इसके लिए किसानों को अधिकतर पशु को छायादार जगह पर रखना चाहिए, समय पर नहलाना चाहिए और हवादार जगह पर उसको रखना चाहिए।
0: जो बात आपने बताई है कि बाह्य परजीवी उनके हो जाते हैं, किलनी हो जाते हैं, जूं हो जाते हैं, तो इनसे रोकथाम के लिए क्या तरीका किसान साथियों को अपनाना चाहिए?
1: किलनियों के लिए बाहर से साबुन भी है, ऊपर से लगाने वाली दवा है और इंजेक्शन भी आते हैं इसके लिए, जो देखरेख में लगवाने चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, पशु चिकित्सक की देखरेख में लगवाएंगे तो फायदा ही होता है, नुकसान की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। तो अब ये बात आती है कि पशु को जब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है या उसको लू लग जाती है तो उसके लक्षण किस तरह के दिखते हैं पशु में?
1: पशु बेचैन सा रहता है, हांफना भी शुरू कर देता है पशु और दाना चारा छोड़ देता है, तो ये सारे लक्षण पशु में आते हैं गर्मी में।
0: कितनी बार पानी उसको पिलाना चाहिए?
1: कम से कम 3 बार तो पानी उसको दिखाना चाहिए पशु को,
0: या फिर जब जैसी उसकी आवश्यकता है। हम सब जब पशुपालक हैं तो समझते हैं उसकी भाषा को, तो जब भी वो पानी की इच्छा प्रकट करे तो उसे पानी
1: पिलाना चाहिए।
0: एक बात डॉक्टर जी जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में हरे चारे की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो पशु स्वस्थ बने रहें इसके लिए क्या उनको आहार में देना चाहिए?
1: हरे चारे की तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए गर्मियों में विशेष तौर से।
0: हाँ।
1: अगर ना हो पाती है तो पशु के लिए थोड़ी जैसे मिनरल्स मिक्सचर वगैरह है, उसको नमक भी देना चाहिए थोड़ा बहुत, और विशेष तौर से उसको यही सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से रखनी चाहिए।
0: कई बार ये देखा जाता है कि पशु ब्याह जाता है ठीक ठाक, और जो भैंस हैं या फिर गाय हैं, या तो दूध कम बनता है या फिर उनके अपने स्वभाव की बात होती है, दूध देने में आनाकानी करते हैं पशु। तो ऐसी कुछ व्यवस्था रहती है, कुछ दवाइयां हैं जिनसे पशु को सुई न लगाना पड़े? कुछ किसान साथी सुई लगा करके दूध उतारते हैं जो कि गलत है, तो क्या कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं?
1: हाँ, कुछ दवाइयाँ आती है, होम्योपैथी में भी आती हैं, आयुर्वेदिक भी हैं कुछ दवाएं, कुछ एलोपैथी में भी आती हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: जो बिना इंजेक्शन लगाए पशु दूध दे सकता है, उसका स्ट्रेस कम हो सकता है।
0: तो बिल्कुल ग्रामीण साथियों और पशुपालक भाइयों यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की समस्या आती है, पशु दूध नहीं देना चाहता है किसी भी कारण से, तो जो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पशुओं को काफी समस्याएं होती हैं, उससे बच करके आपको उनको कुछ दवाइयां देनी चाहिए,
1: अन्य तरीके अपनाने चाहिए। इंजेक्शन देना घातक होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक है, पशु स्वास्थ्य के लिए भी घातक है, इसलिए इंजेक्शन को ना लगाएं, बेहतर होगा।
0: तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सलाह आपने दी है पशुपालक भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साथी है, ग्रामीण साथी, अंगूठा डाले बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: रामपाल।
0: रामपाल जी इसी गांव के निवासी हैं, मोहम्मदपुर पथरा के। ठीक है, अवस्था कितनी हो चुकी है आपकी?
2: 62 साल।
0: 62 साल। क्या काम धंधा देख रहे हैं मुख्य रूप से इस समय?
2: इस समय तो कोई काम धंधा नहीं है, भैंस है उसको चारा ले आते हैं।
0: अच्छा।
2: वो भी सूख रहा है, लाइट आ नहीं रही है।
0: तो लाइट कब से खराब है?
2: 1 महीना हो गया, 29 तारीख को आंधी आई है।
0: हाँ।
2: जब से आज तक किसी कर्मचारी ने गिरे हुए खम्भे नहीं खड़े करे हैं।
0: अच्छा।
2: न लाइन जोड़ी है।
0: तब तो बहुत बड़ी समस्या है।
2: चलो, मैंने फसल नहीं की है, मक्का वगैरह जिन लोगों ने मक्का किया है, मेंथा किया है, उनसे पूछो, उनकी लागत ना लौट रही है, सूख गई फसल, बीज मेरा रखा है
0: धान के लिए,
2: अब बताओ लाइट नहीं आएगी, पौध कैसे डालेंगे?
0: बिल्कुल, मूलचंद जी ने भी यही बात बताई थी और आप भी बता रहे हैं, बात में बिल्कुल सच्चाई है, जब समस्या है तो है। और इस तरह की वही बात है कि समस्याएं मौसम की दशाएं उन पे तो किसी का बस नहीं है, लेकिन जो चीज खराब हो जाती है उसको सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की रह जाती है ना, जो भी जिम्मेदार है इसके लिए। तो अब ये बताओ कि पौध डालने का विचार है, लाइट सही हो जाएगी आने वाले दिनों में, तो कौन सा बीज आप लेकर के आए धान?
2: हम लाए बसंती धान।
0: अच्छा।
2: आरष्टन।
0: तो
2: करते हैं,
0: तो हर साल करते हैं आरष्टन।
2: पैदावार
0: कैसी रहती है इसकी?
2: उसकी 4 क्विंटल, 4.25 क्विंटल, कभी खराब हो जाए तो 3.5 क्विंटल, इतना पैदावार दे देता है ये धान।
0: तो अगर बात करें इसके भाव की, हाँ। तो किस रेट बिक जाता है?
2: अब इसका तो रेट इस साल तो अच्छा रहा।
0: अच्छा।
2: हाँ।
0: कितना रहा था
2: इसका? 2000 से चलकर 3200 पे रुका जाके।
0: तो 3200 तक का तो अच्छा रेट था फिर?
2: हाँ, हमने तो 2400 को बेच दिया।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, उसके बाद 3200 हो गया
0: जी।
2: हाँ, हमें जरूरत थी।
0: हाँ।
2: इसलिए बेच दिया।
0: भाई, किसान कोई भी हो, जब उसे जरूरत होती है, कई बार यही देखा जाता है कि उसका जो माल होता है वो उसके हिसाब से नहीं बिक पाता है, जरूरत होगी तो वो बेचेगा। अच्छा, अब ये

0: बताओ कि कितने बीघा धान करेंगे आप?
1: हम करेंगे करीब 20 बीघा धान करेंगे।
0: 20 बीघा धान करेंगे। अच्छा, धान के लिए जो आपके क्षेत्र की भूमि है वो कैसी है,
1: बढ़िया है।
0: और जो फसलें और हैं, जैसे मक्का की फसल भी अच्छी होती है?
1: मक्का की फसल सबकी अच्छी थी सर, मगर क्या करें, जब लाठी धोखो देगी तो फिर फसल क्या करेगी।
0: अच्छा, एक बात बताइए कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक आध दिन में मौसम खराब हो सकता है या वर्षा हो सकती है, तो अगर वर्षा होती है सामान्य और आंधी वगैरह नहीं आती है तो फसलों पर उसका कुछ फायदा दिखेगा आपको?
1: आंधी नहीं आती है तो फसलों को फायदा है, और आंधी आती है तो फसल को नुकसान है।
0: देखिए, बस यही है कि भाई बारिश हो जाए और बहुत तेज आंधी ना आए तो
1: हाँ
0: किसान साथियों के लिए ज्यादा अच्छा है। रामपाल जी, बातचीत हुई आपसे और आपके अनुभव हम जान पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बस आज की इस बातचीत को यहीं संपन्न करते हैं और वापस चलते हैं आकाशवाणी बरेली। बहुत अच्छी बातचीत हुई साथियों से आकर के यहाँ पर, और ये जाना कि बहुत ज्यादा गर्मी से किस तरह से परेशानी हो रही है, और जो मौसम बदलता है तेज आंधी बारिश से, उससे भी कहीं ना कहीं किसान साथी ग्रामवासी परेशान हैं। तो यही सब बातें आज जानी गांव में आकर के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुनी जो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। हम पहुंचे हैं ग्राम मोहम्मदपुर पथरा, और यहाँ जाके हमने अपने साथियों से करी बातचीत। और साथियों, बातचीत के बाद अब समय है कि आपको एक लोकगीत सुनवाएं, लेकिन बात से पहले कुछ फरमाइशी कमेंट्स आपके पहुँचे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद सनोज, अमन और केशव यादव। आप हैं करता चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 है पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैला, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं नबी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से, साथ में हैं सहनाज अब्बासी, नबीद हसन, रसीद बारसी, सुहेल हसन, अनम और यशफ अब्बासी। एक पत्र हम तक पहुंचू है। आप हैं जिला बदायूं के ग्राम दूने नगर से, ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। एक और पत्र हम तक पहुंचू है, ग्राम पोस्ट सैजना तहसील बजला संभल से। आप हैं रामाशंकर यादव, राजवाला यादव, सुधीर कुमार, लक्ष्मी यादव, विनीता यादव, रविता, अमन कुमार, वैष्णवी और सुनंदा यादव। तो आप सबको सुनवा रहे हैं जो मधुर गीत।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और साथियों, अब बिल्कुल समय ना है कि कोई और बातचीत आज के कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सबसे करें। आज को कार्यक्रम कैसा लगा आप सबको जरूर बताइए अपने पत्र के माध्यम से। और अब अपने साथी कृष्णवीर सिंह को दी अनुमति, करो स्वीकार मेरी राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत 104 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं परिचर्चा, जिसका विषय है खेती बाड़ी एवं उन्नत पशुपालन। प्रतिभागी हैं श्री लीलेंद्र कुमार और आकाश कुमार। संचालन कर रहे हैं कृष्णवीर सिंह।
1: किसान भाइयों, राम राम। आज हमारे साथ हैं दो किसान साथी और आज ये आए हैं आकाशवाणी बरेली के स्टूडियो। करेंगे इनसे बातचीत, जानेंगे कि ये किस तरह की खेती बाड़ी करते हैं, कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से अपने खेतों में उगाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी सर, आपका भी धन्यवाद।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम लीलेंद्र कुमार, ग्राम ठिजकुर, तहसील मीरन, जिला बरेली से हूँ सर।
1: जी,
3: मेरा नाम आकाश पटेल है।
1: और आप कहाँ से आए हैं?
3: मोहनपुर रामनगर बरेली से।
1: तो आप दोनों ही किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप हमें लीलेंद्र जी, सबसे पहले कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
2: सर मैं MA BEd हूँ।
1: जी, कब किया था आपने बीएड?
2: बीएड मेरा फाइनल इस बार ही हुआ है और MA 2018 का था।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी आगे तक गए हैं और आपका शिक्षक बनने का मुझे

0: लगता है सपना है। बीएड
1: जी
0: जब किया है आपने, तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
1: मैंने इंटर तक किया है
0: जी, तो इन दिनों आप दोनों ही लोग कौन-कौन से काम मुख्य रूप से कर रहे हैं?
1: सर। अभी तो खेती को बहुत मुख्य रूप है और ध्यान से हम करते हैं, जिससे कि अपनी धरती माता, जिससे कि अपना किसान साथियों के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिलें और हम कुछ उनसे सीख सकें और हम उन्हें कुछ सिखा सकें। सर
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, खेतीबाड़ी कितनी है आप दोनों लोगों के पास?
1: मेरे पास है लगभग 10 बीघा खेती है, उसमें अभी तो अभी कुछ में गन्ना है लगा हुआ।
0: अच्छा,
1: हाँ, बाकी अभी तो कुछ खाली भी पड़ी है, उसकी हमने जुताई करके डाल दी है धान के लिए अपने।
0: और आप बताओ।
1: सर ज़्यादा तो नहीं, 3 एकड़ खेती मेरे भी पास है, कुछ इसमें कुछ गन्ना गेहूं और धान, तीन और लाई लड्डा भी समय समय पर किया
0: करते
1: करते हैं।
0: हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस फसल का जब समय होता है तो उस
1: जी
0: फसल को आप
1: हाँ,
0: अपने खेतों में करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं जी।
0: जी, इस समय जो खेत खाली हैं
1: हाँ जी,
0: उन खेतों में कौन सी फसल आप लोग करेंगे?
1: हम तो उसमें अभी धान करेंगे उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: और आप क्या करेंगे?
1: हाँ सर अभी तो धान ही लगेंगे, अभी तो पौध फरने का समय है, लगभग पौध पर ही रही है। कुछ हमारे किसान साथी जो पौध डाल भी चुके हैं और कुछ डालने की तैयारी में हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो एक
0: जी
1: महीने
0: जी
1: 20 से 25 दिन में हमारी पौध लगभग तैयार हो ही जाती है, जब तक कि बारिश का मौसम भी आ जाता है।
0: बिल्कुल, बात सही है आपकी। तो कौन से धान आप लोग करते हैं मुख्य रूप से?
1: मुख्य रूप से तो सरबती लगाते हैं 15-09 और PR 126, जो धान आया है पैदावारों में अच्छा है और खाने में भी अच्छा है।
0: आकाश जी, आप बताइए कौन से धान करते हैं?
1: मैं तो अपना ज्यादातर सरबती है और एक ताज है,
0: ये करते हैं,
1: यही दोनों धान ज्यादातर हम लोग करते
0: बहुत
1: हैं।
0: बढ़िया। तो शरबती तो हर साल करते होंगे,
1: हाँ,
0: है ना?
1: क्योंकि ज्यादातर खेती हमारे पास ज्यादा है नहीं, परिवार हमारा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो अपने लिए ही हो पाता है।
0: अच्छा, खाने के लिए
1: हाँ,
0: करते
1: खाने
0: हैं।
1: के लिए करते हैं, ज्यादातर हो ही नहीं पाता ज्यादा लोगों के लिए, क्योंकि वो खाने में सबसे स्वादिष्ट है।
0: बिल्कुल, बात सही है आपकी। शरबती जो है किसान साथियों की पहली
1: हाँ,
0: पसंद है खाने में।
1: अगर किसान साथी अपने बेचना भी चाहेंगे, अगर ज्यादा उसमें मात्रा में करेंगे तो उसमें बेचना भी चाहेंगे तो उसे हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। थोड़ी उसमें जो है लागत ज्यादा लगती है, लेकिन उसमें मुनाफा हमें अच्छा मिलता है। अगर हमने बेचनी है तो तुरंत बिक जाती है।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सरबती धान की। अच्छा, आप जो धान करते हैं तो इस बार कितने धान करने का मन है आपका?
1: इस बार सर 2 एकड़ धान है अभी।
0: करेंगे,
1: जी बिल्कुल,
0: पौध डाल दिया आपने कि डालेंगे?
1: हाँ पौध कल डालेंगे सर, अभी डालने की पूरी तैयारी है। उसमें दवा जो धान लाए थे उसमें दवा से किया, उसे भिजा दिया है, और उसके बाद जो पौध डालने के बाद में 2-3 दिन बाद उस पर घास की जो दवा है वो डाल देंगे पानी के साथ साथ, जब हम पानी देंगे उसके लिए पानी में दवा डालेंगे, जिससे क्या खरपतवार उसमें अधिक ना जमे।
0: अच्छा,
1: जी
0: हाँ, बात सही है, क्योंकि अगर खरपतवार जब जम जाते हैं, चाहे वो हमारे पौध में जमे या फिर मुख्य फसल में,
1: हाँ, तो
0: तो फसल अच्छी नहीं हो
1: जी
0: पाती
1: जी
0: है। जी,
1: बिल्कुल।
0: दिक्कत होती
1: तो
0: है
1: क्या
0: उसमें।
1: ध्यान रखेंगे आप आकाश जी पौध में घास न तो
0: जमे इसके लिए?
1: उसमें तो अभी हम फिलहाल में जब उसमें जब कीटनाशक दवाई है वो डाल देंगे
0: ठीक है, इसलिए
1: कि
0: कि उसमें
1: उसमें,
0: कीट ना लगे।
1: हाँ, उसमें कीट ना लगे। और बाकी उसमें अभी हम उसमें दवाई लगाने के बाद में अपने जो कंधार करेंगे, कंधार करने के बाद में अपनी जो उसमें अपनी बीज है वो डालेंगे, उसके बाद में 20 दिन के बाद वो हमारी तैयार हो जाएगी।
0: हाँ, वैसे तो 20 दिन तक तैयार हो जाएगी,
1: हाँ
0: सही से ध्यान रखा जाएगा
1: हाँ जी,
0: तो बिल्कुल। वो खेत के ऊपर निर्भर करता है, खेत
1: हाँ,
0: आपका कितना अच्छा है।
1: खेत तो हमारा अच्छा है ही, क्योंकि हमने उसमें खाद अपना देसी, जो देसी खाद है वो लगा दिया है।
0: पौध के लिए विशेष रूप से पानी का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ट्यूबवेल से ना अपने इंजन से लगा सकते हैं, और जो गर्म पानी पड़ जाता है पौध के लिए हमें शाम के टाइम पानी लगाना चाहिए, जिससे कि पौध को पानी से नुकसान ना हो, और गर्म पानी अगर पड़ जाए तो सुबह में जाके उसमें 10 या 9 10 11 बजे जाके उसको पानी को निकाल दिया जाए, जिससे कि पौध को हानि ना हो।
1: जल्द से
0: बिल्कुल,
1: जल्द पानी लगाना पड़ता है उसमें, 2-3 दिन के अंदर अंदर पानी लगाना ही पड़ता है।
0: तो जैसा ये बता रहे हैं, लीलेंद्र जी बता रहे हैं कि पौध में पानी शाम के समय लगाना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: जी,
0: आप लोग जब शाम के समय पानी लगा देते हैं तो उसका फायदा यही रहता है कि रात भर पानी जो
1: पानी
0: होता है वो
1: उसमें
0: सोख लेती है
1: सोख लेती
0: जमीन,
1: जी
0: और हमारा जो पानी है सूरज की जो गर्मी से वो गर्म नहीं होता है, हमारे पौध को नुकसान नहीं होता
1: और
0: है,
1: 1-2 दिन के लिए उसमें नमी बनी रहती है
0: बनी
1: अच्छी तरह
0: रहती है।
1: से।
0: बिल्कुल, बात सही है आपकी। अच्छा, जो खेत इस समय खाली हैं आप लोगों के, क्या आपने उनकी जुताई करवाई है अब तक? नहीं कराई?
1: जी जी 2-3 जुताई सर कर चुके उसमें हम
0: हैं।
1: लोग दो दो तीन बार जुताई हम भी कर चुके हैं उसकी, बाकी उसमें अपना फिर बाकी देसी खाद डालेंगे उसमें।
0: अच्छा, तो किस हल से जुतवाया है आपने अपने खेतों को?
1: हमने तो अभी उसे कल्टीवेटर से जुतवाया है। जी हाँ, कल्टीवेटर से जो जुतवा देते हैं किसान साथी हमारे, कुछ हैरों से जुतवा लेते हैं, कुछ रूटावेटर से, जैसा जिसका अच्छा लगता है। उसके बाद में जो कदहर है वो कल्टीवेटर या रूटावेटर से ही करा जाता है, जिससे कि हमारा पानी आराम से धानों के लिए रुका रहे और अच्छी नमी बनी रहे।
0: अच्छा, एक बात बताओ, दोनों जने कई बार किसान साथी ये जिक्र करते हैं कि हैरों हल से खेत खराब हो जाते हैं,
2: तो क्या हल इसलिए बनाया गया कि खेत खराब हो जाएंगे अगर जुताई उनसे होगी?
1: जी सर, ऐसा है कुछ लोग जुताई पर भी निर्भर करता है, जैसे किराए वाले जो जोतते हैं वो जल्दबाजी में जोतते हैं, कहीं घुमा फिरा के उन्हीं की

0: जल्दी जल्दी इनका काम होना चाहिए। जिसके खुद के बहाने वो तो अपना ठीक ठाक काम कर लेते हैं और किराया भी सोचते हैं कि ज्यादा समय लग रहा है इन खेत में, तो जल्दी से अपने उठान वाली है उनसे खेत खराब अपना हो जाता है। जैसे कि धानों में बड़ी दिक्कतें आती हैं, मतलब कहीं पानी ज्यादा हो
1: पानी
0: जाता है कहीं कम हो जाता है, तो इससे हमारा किसान साथियों को अधिक पैदावार नहीं मिल पाती इसी कारण।
1: बिल्कुल
2: धान में भी खराबी आती है उसमें।
1: जी, तो बात ये है लीलेंद्र जी कि कोई भी हल जिसका आविष्कार हुआ वो खेतों को खराब नहीं
0: नहीं
1: करता
0: करता जी।
1: है, वो निर्भर करता है उस व्यक्ति पर जो कि उसको जुताई कर रहा है खेत
0: जी
1: की, है ना।
0: जी
1: आप हल को ठीक से चलाएंगे, ट्रैक्टर सही चलाएंगे तो आपका खेत सही रहेगा। आपने उसकी सेटिंग को कैसा कर रखा है,
0: जी
1: ठीक स्थिति में अगर हल है तो वो खेत खराब
0: नहीं
1: नहीं
0: होगा।
2: होगा।
0: कंप्यूटर लेवलिंग भी आ गए हैं, और चाहे तो कंप्यूटर लेवलिंग भी करा सकते हैं, जिससे कि धानों की पैदावार अच्छी तरीके से मिल सके उनके लिए।
2: खेत हमारा एक सा रहे उसके लिए।
1: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि
2: हाँ,
1: उससे
2: क्योंकि
1: पानी
2: जब
1: की भी
2: हमारा
1: बचत होती है।
2: हमारा खेत एक सा रहेगा तो हमें पानी भी उसमें एक सा लगेगा और हमारी फसल भी एकदम एक जैसी होगी। क्योंकि अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा होगा तो फसल भी हमारी ऊंची नीची होगी, कहीं पे धान कहीं पे उसमें
0: छोटा होगा कहीं बड़ा होगा, तो इस
2: हाँ
0: चक्कर से किसान साथियों को पैदावार ठीक ठाक नहीं मिल पाती।
1: हाँ बात सही कह रहे हो, क्योंकि कहूं पे पानी पहुंचेगा
2: हाँ
1: कहूं ना पहुंचेगा,
0: जी
1: कहूं ज्यादा पानी भर जाएगा,
2: हाँ
1: है ना। तो जिस
0: जी
1: सब
0: सर,
1: दिक्कतें होतेंगी जब हमारे खेत एक सार ना होते
2: ना
1: तब।
2: होते
0: इससे हमें पानी की भी बचत होती है। कहीं पानी चढ़ जाता है 2 घंटे में लग रहा है, तो कभी 4 घंटे में लग रहा है, और उस समय जब लेवल होगा तो बराबर 2 घंटे में, 3 घंटे में खेत में पानी लग रहा है तो 2 ही घंटे में लग जाएगा बस,
1: बिल्कुल बिल्कुल बात
0: और
1: सही है।
0: एक साथ ही नमी बराबर खेत में पूरी
2: उससे
0: बनी
2: हमारा
0: रहेगी।
2: काम बहुत जल्दी हो जाता है
1: बात सही
2: जब
1: है
2: हमारा खेत लेवल होता है तो।
1: जी। अच्छा जब बताओ कि खेती बाड़ी तो आप लोग कर ही रहे हो, उसके
0: जी
1: साथ साथ पशुपालन हो रहा है घर पे, नहीं।
0: जी जी पशुपालन है, 2 गाय 1 भैंस हैं, 3 जानवर हमारे पास भी हैं, उनके 2 लावारे भी हैं। उससे जो रहता है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रहता है, दूध है, मट्ठा है, दही है, और अपने जो उसकी गोबर की खाद है वो भी है, गड्ढे बना लिया, उसमें गड्ढे में अपने इकट्ठा करके समय पर खेतों में डाल देते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: हमारे पास भी 2 भैंस हैं, उससे यह है कि अपना बच्चे भी दूध दूध पी लेते हैं, बाकी अपना जो घर का खर्चा छोटा मोटा वो भी उससे चलता रहता है।
1: सही
2: हाँ
1: बात
2: जी,
1: है।
2: और जो उसका गोबर है उससे अपनी खाद बनती रहती है, खेत में पड़ जाती है, और उसके बाद में अपना जो
0: जिससे फसलों के
2: मवेशियों,
0: लिए अच्छा लाभ हो सके।
2: हाँ
1: बिल्कुल। और पशुपालन अगर हम करेंगे तो देसी खाद की जो बात आप लोग कह रहे हैं वो तभी संभव है जब पशुपालन करेंगे,
2: पशुपालन
1: है ना।
2: करेंगे। हाँ
1: जी।
2: जी
1: और आजकल ये देखा जा रहा है कि जो निर्भरता हुई है रासायनिक खादों पर, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी खेतों की मिट्टी है वो खराब हुई है।
2: वो तो बहुत ही बेकार खाद है, उसे तो
0: जी
2: लगाना ही नहीं
0: बिल्कुल।
2: चाहिए।
0: हमारे किसान जो साथ हुए हैं, मतलब जानवरों का पालना तो बहुत कम से कम हो गया, किसी के एक किसी के दो पास हैं। पहले ऐसा था कि जानवर भरपूर थे तो उर्वरक जो हमारे जो है ये खाद बहुत कम यूज हुआ करती थी, देसी खाद ही पर निर्भर ज्यादा थे। अब देसी खाद नहीं है सर, तो कुछ लोग धानों की रोपाई के लिए ढेंचा बो दिया है, उसकी देख रेख कर रहे हैं, हरी खाद बन जाएगी, उससे थोड़ा बहुत उर्वरक डाल देंगे, इससे कि धान को अच्छा लाभ मिले और पैदावार अच्छे से हो सके।
1: बिल्कुल। अच्छा आपके खेतों में दोनों ही किसान साथियों के
2: हाँ जी,
1: मक्का की फसल होती है क्या आपके क्षेत्र
2: क्षेत्र
1: में?
2: में कोई कोई लोग करते हैं जो
0: बहुत
2: लोग,
0: कम मात्रा में,
2: हाँ
0: लगभग 10% लगभग लोग कुछ कर रहे हैं, हो रही है अभी
2: पसंद है
0: इससे।
2: जिसकी अपनी अपनी फसलों में भी अपनी अपनी पसंद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब ये बताओ कि जो पशुपालन आप लोग करते
2: हाँ
1: हैं,
2: जी
1: है ना, अब समय चल रहा है कि उनको संक्रामक बीमारी ना हो इसके टीकाकरण करवाया जाए,
0: जी
2: हाँ जी
1: तो क्या टीके लगवाते हैं आप अपने पशुओं
0: हाँ
1: के?
0: जी
2: टीके
0: बिल्कुल
2: लगवाते हैं।
0: लगवाते भी हैं, टीके लगवाने भी चाहिए।
2: हाँ
0: और उनकी जो है मतलब अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो
2: तो उन्हें
0: जानवरों के लिए नहलाना
2: नहलाना भी बहुत
0: और
2: जरूरी है।
0: खिलाना पिलाना भी समय समय के अनुसार से ठीक प्रकार से, और उनकी छाव में बांधना चाहिए, ज्यादा धूप में नहीं बांधना चाहिए, कोई पेड़ हो तो उससे
2: हाँ
0: जानवरों के लिए तरी बनी रहे और ज्यादा गर्मी महसूस ना हो
2: और
0: जाए।
2: दिन में कम से कम 3 बार तो पानी पिलाना ही चाहिए उन्हें।
1: बिल्कुल।
2: हाँ
1: आप कहाँ बांधते हैं उनको आकाश जी अपने
2: मैं
1: पशुओं
2: तो
1: को?
2: उन्हें बांधता हूँ, एक पेड़ है मेरे घर के पास में, वहीं बांधता हूँ उन्हें।
1: किस चीज का पेड़ है?
2: आम का पेड़ है,
1: बहुत बढ़िया।
2: उसी के नीचे बांधता हूँ, उसी के पास एक नल है और वहीं उसे अपने पानी पिलाता हूँ 3 टाइम।
1: अच्छा
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: जो आम का पेड़ है उस पे आम आए इस बार?
2: आम आएंगे उस पे।
1: अच्छा आप जो कह रहे हैं कि उस पे आम आएंगे,
2: हाँ
1: इसका मतलब अभी जो पेड़ है वो फल देने लायक नहीं हुआ
2: फल देने
1: है?
2: लायक नहीं हुआ अभी वो।
1: अच्छा
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: उसकी छाया इतनी हो गई कि उसके नीचे आपके पशु बंध जाते हैं?
2: मतलब ये है कि अभी इतना बड़ा नहीं है कि उसमें ये है कि छाई वाई
0: थोड़ी
2: अपनी
0: बहुत
2: रहती,
0: ठंड आ जाती है
2: थोड़ी
0: जिससे कि
2: बहुत रहती कि
0: थोड़ा
2: अब
0: धूप नहीं
2: जगह,
0: लगती
2: अब
0: है।
2: हर किसी के पास इतनी जगह भी नहीं है कि दूसरी जगह में बांध
0: कुछ
2: सकें
0: किसान
2: अपने।
0: साथियों के पास समस्या रहती है ये
1: जी
0: हवा
1: जी
2: में।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से आप ध्यान रख रहे हैं अपने पशुओं का, और ये गर्मी के मौसम में तो पानी उनको
2: हाँ
1: कई बार पिलाना बहुत
0: जी
1: आवश्यक हो जाता
2: पानी
1: है।
2: तो पिलाना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जब हम खुद भी इतना पानी पी रहे हैं तो उन्हें भी पिलाना ही चाहिए।
1: जी। अच्छा अब ये बताओ कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इन दिनों
0: जी
1: में, है
2: हाँ
1: ना,
2: जी
1: और सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रवासी की नौतपा करके हम सब लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं नौतपा, तो इन दिनों

0: चल रहा है,
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: तो किस तरह की गर्मी आप लोग जब आए हैं तो देखा आपने, बताइए।
1: गर्मी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे लू जो गर्म हवाएं चल रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे गाल पे या थपेड़े से चांटे से लगते
0: हाँ,
1: हैं, जो लू
0: आग सी
1: बहुत
0: बरस रही है बिल्कुल एकदम, बहुत
1: आपका गोला
0: ज्यादा।
1: सा ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा तपन सी पड़ रही है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर से निकलते हैं बहुत ज्यादा एकदम आग सी निकलती है।
1: इसके लिए किसान साथी हमारे जैसे खेतों पे काम करना पड़ता है, 10-11 बजे किसान साथी

0: सावट मिलती है, और जो गर्म लू में थोड़ा उससे राहत मिलती है हमारे किसान साथियों के
1: और
0: लिए। हाँ
1: आकाश जी ने तो आज टोपी लगा ली है इसी गर्मी को देखते
0: जी
1: हुए।
0: जी सर, उनकी तो सर बात ही अलग है और होना भी चाहिए। किसान साथियों को अपनी सुरक्षा का स्वयं विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो पशुपालन और हमारी खेती को सबसे संबंधित तो सबकी सुरक्षा कर सकें जिससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात चलते चलते ये जानना चाहेंगे आपसे
0: हाँ जी
1: कि खेती बाड़ी जो आज आप सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, तो आज मैं और जो अब से 8-10 साल पहले खेती लोग कर रहे थे, आपने भी वो दौर देखा है,
0: हाँ जी
1: तो इन 8-10 सालों में क्या अंतर आप देखते हैं खेती बाड़ी में?
0: अंतर यह था कि उस समय जो है इतनी व्यवस्थाएं इतनी सुविधाएं नहीं थीं, जिससे कि जो कि आज हम 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर रहे हैं। उस समय तो हल चलाते थे, भैंसे थे, अपने जो बैल थे उससे अपने खेत जोता करते थे, सुबह चले जाते दोपहर तक आते थे। तो उस खेती में पैदावार भी अच्छी थी, उस समय इतनी रासायनिक उर्वरक नहीं पड़ रही थी जितनी कि उस समय इतना प्रयोग अब हो रहा है। तो इसलिए इसमें विज्ञान से इसका अलावा इसका बदलाव आया है। किसान साथी हमारे उसको धीरे धीरे उसकी प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं और
1: हाँ
0: अपना
1: जी,
0: समय की बचत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बात सही है आप दोनों की। और आप दोनों ही किसान साथी जो कि अलग-अलग गांव से आए हैं,
0: हाँ जी
1: आज कार्यक्रम में शामिल हुए और आप अच्छी तरह से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जागरूक किसान साथी हैं। इसी तरह से आप खेतीबाड़ी करते रहिए अच्छे से और अपना विकास करिए। आप दोनों ही कार्यक्रम में आज शामिल हुए, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: हमारे किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: जो भी सुन रहे हैं श्रोता।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था खेती बाड़ी एवं उन्नत पशुपालन। प्रतिभागी थे लीलेंद्र कुमार और आकाश कुमार, संचालन कर रहे थे कृष्णवीर सिंह। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
3: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। सत्येंद्र पुत्र नेकपाल ग्राम पड़ौलिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूं से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी चांदनी 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें और बाल सामान्य, ये हरे रंग का सूट सलवार पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना। कस्बा रुदायन थाना इस्लामनगर जिला बदायूं से जितेंद्र गुप्ता पुत्र रामदास गुप्ता सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी रेखा 19 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 22 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत, बाल काले, एक हरा मजबूत शरीर, ये गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हैं। किसी को यदि इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीकी लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं

असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: मीडियम वेव 400.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
5: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से

0: वाराणसी का मार्ग फोर लेन का होगा। कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी। तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
1: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
2: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गाँव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
3: वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
5: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक

0: प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मुरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:31 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम अनुरोध गीत का। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पत्र जो हैं हम तक पहुंच चुके हैं, जिनमें आपने अपनी फरमाइश, अपने अनुरोध लिख भेजे हैं गीत सुनने के लिए। तो देर ना करते हुए आपके पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये पहला पत्र हमें मिला है अलीगंज सिरौली रोड ग्राम मोहलिया से, हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डालमिया, रईस बानो, नसरीन और निशा बानो का।

ये पत्र हम तक पहुंचा बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी से। लिखने वाले हमारे श्रोता विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। आप हैं पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, मेहरुन्निशा। नरियावल से हमारे श्रोता नाजमा अंसारी, तुफैल अहमद अंसारी, माजिद, नन्ने, शानू, ठिरिया, निजावत खान से आफ्ताब भाई और दानिश। आप हैं मोहल्ला तलैया और लजागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, गैगटा, काशी, धर्मपुर, बरेली से फहीम खान, सिद्दीक अली, साबिया, दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। आप हैं गांव चौहलदा बागपत से संजय ढेंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल। ये पत्र हम तक पहुंचा सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप हैं गड़ैया बरेली से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी। और ये पत्र हम तक पहुंचा हार्डमैन कॉलेज के पास छावनी अशरफ खां, होली चौक, बरेली से राम प्रसाद शर्मा का। आपके साथ हैं वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, कनिष्का और आपके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म पाकिजा का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल कैफी आजमी के हैं और संगीत निर्देशन गुलाम मोहम्मद का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत में ये पत्र हम तक पहुंचा भारद्वाज रेडियो श्रोता संघ फूलबाग किला छावनी बरेली से। विशन दत्त, भारद्वाज, शिवदत्त, गंगादत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी भारद्वाज और आपके साथ हैं श्री राम राठौर, संतोष और सूरज। औरंगाबाद से हमारे श्रोता राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, असलम सैफी। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बेला डांडी दातागंज से सुमित यादव, महेश बाबू, सौरभ, अमित यादव, अखिलेश यादव, आलिम खान और ठाकुर संदीप सिंह। ड्राइवर कॉलोनी निजामबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख बहाव, नूर जहां बानू। बदलापुर मुंबई से बंटी कमांडकर और सुभाष पोतेवार। वजीरगंज जिला बदायूं से प्रेम कमल वाष्णेय, सुशीला कमल, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाष्णेय। अपने ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन, बबलू कैप्टन, निसार और मस्तान बाबा। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है मुस्कान रेडियो क्लब ग्राम करेली से इंतजार भाई अंसारी, रहमान भाई अंसारी, सकाबत भाई इस्तगार, मोहम्मद दिलशाद, अब्दुल सेन, अख्तर रजा, शराफत, हिना। ये पत्र हम तक पहुंचा परौली जिला बदायूं से राम रक्षपाल मिश्र का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं एटा रोड गंज डुंडवारा से बीबी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या, ऐश्वर्या, श्रेय, कुश, रिंकू, टिंकू और रीना। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म काला पत्थर का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमारे नियमित श्रोता अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसामा जिला बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री और गुनगुन यादव। बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जयन निशा बेगम, अकरम सैफी और आवाद खान। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं नखासा रोड उसहत बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, अमन अब्बासी, करमवीर गोस्वामी, प्रवीण रावत, चंचला।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तानी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, आप हैं यादव मोहल्ला सनावद से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मारा, निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज, जिला बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेरा जहां, मुस्कान बी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा बी और मन्नत बी, आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। ये पत्र हम तक पहुंचा खान रेडियो क्लब कस्बा जादवपुर पोस्ट बहरपुरा बरेली से अनीस खान, मुनीस खान, आरिश, मुनाजिर, परवीन, अस्कारा, दरकसा और शाजी खान का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कस्मे वादे का ये गीत, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल गुलशन कुमार के, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसीन, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना, महजबी शेख आप हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाका, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, रियासत हुसैन सिद्दीकी, जसपुर उत्तराखंड से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और स्वीट बेबी काव्या। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दीवार का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, गीत के बोल साहिर के, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम। हिंदी।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है 29 मई। सुशील कुमार चड्ढा, जी हाँ, यही मूल नाम है सुप्रसिद्ध हास्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी का। आज आपकी जन्म जयंती है। 29 मई 1942 को गुजरावाला में आपका जन्म हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में बस गए और बाद में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपने शेष वर्ष बिताए। आपातकाल के बाद 1978 में रिलीज हुई आईएस जौहर द्वारा निर्देशित हिंदी व्यंग फिल्म नसबंदी के लिए भी आपने गीत लिखे। उन्होंने बंधन बाहू का, जो 1988 में रिलीज हुई, और संतोष 1989 में, इन फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में अभिनय भी किया। आपने हिज मास्टर्स वॉइस और टी सीरीज द्वारा निर्मित कई रिकॉर्ड बनाए हैं और वो विभिन्न कवि सम्मेलनों के लिए हांगकांग, बैंकॉक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मैनचेस्टर और अमेरिका भी जा चुके हैं। आपकी जो रचनाएं हैं उनमें इतनी ऊंची मत छोड़ो, क्या करेगी चांदनी, ये अंदर की बात है, त्रिवेणी, तथाकथित भगवान के नाम, मैं भी सोचूं तू भी सोच, दमदार और दमदार दोहे, जिगर से बीड़ी जला ले, हुल्लड़ की श्रेष्ठ हास्य व्यंग रचनाएं, अच्छा है पर कभी कभी, ये तमाम रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। आज के अंक में अपने आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से हिंदी जगत के इस महान हास्य कवि को शत शत नमन। आइए श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं एक हास्य काव्य पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री प्रवीण कुमार शुक्ला।
1: देखिए, आज परिवार में क्या चाहे पद बदने में कितना भी वो हो जाए, लेकिन घर का माहौल जो है, मतलब उसके बिना आदमी नहीं रह सकता है। देखिए, शांति आदमी ढूंढ रहा है। मैं घर से निकला गर्मी से बेहाल हो गया, मैं घर से निकला गर्मी से बेहाल हो गया, पेड़ के नीचे लेट

गया मुझे शांति मिली, पेड़ के नीचे लेट गया मुझे शांति मिली, मैं शांति के साथ घूमा, रेस्टोरेंट में एंटर हुआ, शांत के साथ ब्रेकफास्ट किया, उसने मुझे विस किया, वेटर को ट्रिप दिया, उसने मुझे सलूट किया, उसने मुझे सलूट किया, मैं शांत के साथ घूमकर जब थक गया मैं घर वापस आ गया, मैं शांत के साथ घूमकर जब थक गया मैं घर वापस आ गया, आते ही बीबी ने प्रश्नों का बौछार लगा दिया, आते ही बीबी ने प्रश्नों का बौछार लगा दिया, बच्चों ने फरमाइशों का डिमांड लिस्ट थमा दिया, बच्चों ने फरमाइशों का डिमांड लिस्ट थमा दिया, घर में मुझे शांत से बैठने भी ना दिया, घर में मुझे शांत से बैठने भी ना दिया, आते ही मुझे राशन लाने का पुलिंदा थमा दिया, आते ही मुझे राशन लाने का पुलिंदा थमा दिया, मेरा सर चकरा गया, मेरा सर चकरा गया, फिर शांत ढूंढने चल दिया, फिर शांत ढूंढने चल दिया, जब कई दिन शांत के साथ बिता दिया, जब कई दिन शांत के साथ बिता दिया, फिर मेरा मन बेचैन हुआ, फिर मेरा मन बेचैन हुआ, बच्चों की किलकिलाहट सुनने को, बच्चों की किलकिलाहट सुनने को, उनके बाल हट देखने को तरस गया, बच्चों की किलकिलाहट सुनने को, उनके बाल हट देखने को तरस गया, बीबी से मिलने के लिए व्याकुल हुआ, बीबी से मिलने के लिए व्याकुल हुआ, शांत और अशांत बहनों में वाकयुद्ध हुआ, शांत और अशांत बहनों में वाकयुद्ध हुआ, शांत हार गई अशांत जीत गई, इस माया मोह से अपने को न रोक पाया, मैं वापस घर लौटाया, मैं वापस फिर घर लौटाया। देखिए आज कंक्रीट वो हो गए, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नदियों में सब बहाया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण पे मेरी व्यंग रचना है कि कागजों में दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगा गांव दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगे गांव दिखा रहे हैं, हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं, हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही है उनको हम कागजों में दिखाई दे रहे हैं, अरे गंगा गोमती में सुबह शाम कचरा बहा रहे हैं, गंगा गोमती में सुबह शाम कचरा बहा रहे हैं, लेकिन कागजों पे पर उसे प्रदूषण मुक्त बता रहे हैं, लेकिन कागजों पर उसे प्रदूषण मुक्त बता रहे हैं, अरे जिनको ये नदियां प्रदूषण मुक्त नहीं दिखाई दे रही उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं, उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं, अरे कपड़े का थैला साथ ले जाने में लोग शर्मा रहे हैं, कपड़े का थैला साथ ले जाने में शर्मा रहे हैं, अरे पॉलीथीन का प्रयोग शौक से किए जा रहे हैं उसमें भी नहीं शर्मा रहे हैं, अरे मवेशियों के मरने पे जरा सा भी शोक नहीं मना रहे हैं, अरे पॉलीथीन प्रतिबंधित जिनको नहीं दिखाई दे रही उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं, पत्थरों के शहर में छांव दिखा रहे हैं, नकली पेड़ पौधे लगा गांव दिखा रहे हैं, हरियाली जिनको नहीं दिखाई दे रही उनको हम कागजों में दिखा रहे हैं। देखिए मैं अपनी पत्नी से एक खास कविता है, बहुत प्यार करता हूँ, जब मेरी शादी के 25 साल पूरे हुए तब मैंने देखे उनको देख के कहा है, तुम मुझे देखा करो मैं तुम्हें देखा करो, तुम मुझे देखा करो मैं तुम्हें देखा करूं, एटीएम मैं तुम्हारा, एटीएम मैं तुम्हारा समझ के मुस्कराया करो, तुम मुझे देखा करो मैं तुम्हें देखा करूं, एटीएम मैं तुम्हारा समझ के मुस्कराया करो, अरे किटी पार्टी करो चाहे शॉपिंग करो, किटी पार्टी करो चाहे शॉपिंग करो, पैसे चाहे जैसे खर्च करो, पैसा चाहे जैसे करो, बस यूं ही मुस्कराया करो, बस यूं ही मुस्कराया करो, और ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, ब्यूटी पार्लर में सजा सवरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, और बस यूं ही मुस्कराया करो,
ब्यूटी पार्लर में

0: सजा सबरा करो, अपनी उम्र को छुपाया करो, मुझको तुम वृद्ध बताया करो, बस यूं ही मुस्कराया करो। अरे जीवन की गाड़ी यूं ही चलाती रहो, जीवन की गाड़ी यूं ही चलाती रहो, प्रेम को यूं ही निभाती रहो, मैं तुम्हारा रहूंगा तुम हमारी रहो, बस यूं ही मुस्कराती रहो, बस यूं ही मुस्कराती रहो।
1: अपनी कुछ हास्य रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे श्री प्रवीण कुमार शुक्ला। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:10। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सआदत हुसैन खान की गाई नात एवं

उस्ताद सआदत हुसैन खान की गई नात और कव्वालियां अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको सुनवाने जा रहे हैं हेमलता का गाया अखियों से के झरोखे से इस फिल्म का गीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं किशोर कुमार, येसुदास और लता मंगेशकर की। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज

0: भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ।

0: जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।

मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

जाएंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको, 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था, लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक़ लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था, या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगेय राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी

0: कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं। और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं। और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही। और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र थे जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आप बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और वो शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें 6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था, अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद रहे।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।
2: दिल

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की तीन फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, द ब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

त्रिदेव फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा को दीजिए इजाजत।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है रात्रि के 10 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना छोटी सी बात, इस फिल्म का गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, मुकेश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म का गीत अभी आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा रहे थे मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन को चितचोर फिल्म के

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। इसी के साथ प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्ण चंद्र गुप्ता का राग जोग में विचित्र वीणा।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का राग जोग कौंस में विचित्र वीणा वादन, और इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की

आशीर्वाद से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।